0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6 बजने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar, National CT Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning with international efforts, and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, "The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism." He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said, as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister also engaged bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. It will undertake a comprehensive review of her operational preparedness at the military strategic level and engage with senior government functionaries through an institutionalized mechanism. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the Army Staff will also engage with naval commanders to foster tri-services synergy and integration. The FASTag annual pass has crossed the significant milestone of 1 crore passes issued after its launch on 15th August last year. Ministry of Road Transport and Highways said that the milestone reflects growing acceptance of the annual pass among private vehicle owners for providing a seamless and economical travel option on the national highways and expressways. It said that the pass is applicable on about more than 1,000 fee plazas on national highways and national expressways, which eliminates the need to frequently recharge FASTag through one-time fee payment of 3,075 rupees for one-year validity or 200 toll plaza crossings. India has dispatched about 3 tons of anti-tuberculosis medicines to Colombo to help support Sri Lanka's public health system. In a social media post, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar announced the dispatch and expressed India's commitment to supporting its neighbouring country. Dr. Jaishankar said, India remains committed to supporting Sri Lanka's public health system. About 3 tons of anti-tuberculosis medicines were dispatched to Colombo yesterday. India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashvir Singh won the silver medal with a personal best effort of 85.72 meters, while Rohit Yadav claimed bronze with a throw of 84.35 meters. In the men's long jump, Sri Shankar Murali secured the silver medal with a best effort of 8.07 meters. meters. Gulveer Singh also added another silver to his tally after finishing runner-up in the men's 1500 meters.

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

0: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। आज के चिंतन कार्यक्रम में प्रस्तुत है लघु वार्ता महिला सशक्तिकरण पर महादेवी वर्मा के विचार, वाचन स्वर और आलेख निधि भार्गव का।
1: महादेवी वर्मा का जीवन और कृत्य नारी सशक्तिकरण के सिद्धांतों का सजीव उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने साहित्य के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और उनके संघर्षों को स्वर दिया, बल्कि अपने निजी जीवन में भी एक स्वतंत्र और सशक्त महिला के रूप में समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। परंपरागत रूप से विवाहिता होने के बावजूद उनका जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक रहा। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से साहित्य, शिक्षा और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों की पैरवी की, जिससे उनका जीवन एक सशक्त नारी के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने शिक्षा को नारी सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन माना। वे स्वयं एक शिक्षिका थीं और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए अनवरत प्रयास किए। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे महिलाएं अपनी स्थिति को सुधार सकती हैं और समाज में सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने नारी शिक्षा के महत्व को आगे बढ़ाया। महादेवी वर्मा जब प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य थी, तब उन्होंने महिलाओं को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि उन्हें समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का भी कार्य किया। उन्होंने कहा, नारी को अपने जीवन की दिशा खुद चुननी चाहिए और समाज द्वारा लगाए गए बंधनों से मुक्त होना चाहिए। महादेवी वर्मा महिलाओं को केवल साक्षर बनाने में विश्वास नहीं रखती थी बल्कि उन्हें जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर देती थी। महादेवी वर्मा ने विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं की समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने इनके पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका जीवन नारी मुक्ति आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। उन्होंने महिलाओं को परंपरागत सामाजिक बंधनों से मुक्त करने के लिए साहित्यिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर कार्य किया। वे मानती थीं कि महिलाएं केवल पुरुषों की अनुगामिनी नहीं हैं, बल्कि वे भी समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना सकती हैं। एक प्रसंग में उन्होंने अपने एक परिचित महिला का जिक्र किया जो घरेलू हिंसा और पारिवारिक दबावों से त्रस्त थीं। इस घटना ने महादेवी वर्मा को नारी की स्थिति पर गहन चिंतन करने को प्रेरित किया और उन्होंने इस पर आधारित लेख लिखे जो आगे चलकर श्रृंखला की कड़ियों का हिस्सा बने। उनकी कविताओं में महिलाओं के दर्द, उनके दुख और उनकी वेदनाओं का मार्मिक चित्रण देखने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप उनकी कविता नीर भरी दुख की बदली में स्त्री मन की वेदना और जीवन की चुनौतियों को व्यक्त किया गया है। उनकी कविताएं एक स्त्री के आंतरिक संघर्ष और समाज में उसकी स्थिति पर तीव्र प्रश्न उठाती है। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अग्रसर होकर महिला कवि सम्मेलनों की शुरुआत की। उनका मानना था कि स्त्री केवल एक घर की सजावट नहीं है बल्कि वह समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। महादेवी वर्मा का मानना था कि नारी की स्थिति में सुधार के लिए केवल कानून और नीतियां पर्याप्त नहीं है, इसके लिए समाज की सोच में परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने

0: नारी सशक्तिकरण के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की भी वकालत की। महादेवी वर्मा ने नारी के अधिकारों के लिए समाज से संघर्ष करने और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने का संदेश दिया।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से अयोध्या कांड भाग 63।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती राम विरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आगाते।

0: वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमरीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CB George ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर POC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गीतो भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। देखो इस समय घड़ी में बजे हैं ठीक 7:30 और 44 सेकेंड। तो कुछ लोग अपने ऑफिस जा रहे होंगे और कुछ लोग रास्ते में होंगे, कुछ ऑफिस से घर आ रहे होंगे

और कुछ सुबह की चाय की चुस्की ले रहे होंगे। तो फिर कार्यक्रम सुनते रहिए और हम आपको सुनवाएंगे अच्छे अच्छे गाने और साथ में बताएंगे आपको कुछ जिंदगी जीने के तरीके। तो उससे पहले ये प्यारा सा गीत।

ये खूबसूरत सा गीत आपने सुना फिल्म चाहत से, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त निधि वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं, नहीं सबसे पहले हम आपसे एक सवाल करते हैं कि क्या आप सब या हम सब जिंदगी जी रहे हैं, पर क्या हम जीना सीख पाए हैं? हम कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं, हम ईएमआई भी भरते हैं, हम इंस्टाग्राम भी दिन भर स्क्रॉल करते हैं, पर क्या सच में इसको हम अपनी जिंदगी जीना कहते हैं? आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए क्या क्या जरूरी है, और हम अपनी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े काम करके ही जिंदगी को जिया जा सके। कुछ छोटे छोटे से काम भी होते हैं जो हम अपनी जिंदगी में अच्छे करके अपने दिन को ही शुरुआत कर सकते हैं। तो और भी जानेंगे बातें, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं एक और गीत।

जिंदगी में अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी किताब से सीखें। कुछ छोटे छोटे से नियम हैं जिसमें हम अपने दिन को बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह होती है कि अपनी जिंदगी में किसी और से तुलना करना अपनी बंद करें। आपके पास जो है उसमें खुश रहें और उसका ही ऊपर वाले का शुक्रिया करें, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम सामने वाले को देखते हैं, उसके पास ये चीज़ अच्छी है मेरे पास नहीं है, उसकी सैलरी अच्छी है मेरी कम क्यों है। तो जो ये सब चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, इन सब बातों को जब ज़्यादा आप सोचने लगते हैं ना, तो फिर वो हमारी खुशियों को छोड़कर वो हमारी तकलीफ़ का कारण बन जाती हैं। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि सामने वाले के पास कैसा है या हमारे पास कैसा है। हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो एक चीज़ ये देखिए कि ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, हमारी चाय गर्म है इस बात के लिए भी खुश होइए, हमारी सांसें चल रही हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब तो धीरे धीरे करके आ ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कल की फिक्र करना और आज का जिक्र करना। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम कल की फिक्र को देखते हुए हम आज को खो देते हैं। हमारी जो आज की खुशियाँ होती हैं उसको हम नहीं देखते, पर आने वाले कल के लिए हम सोचते रहते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब सी होने लगती है। इसलिए जो है आपके पास सामने, जैसी आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि अपने लिए जीना सीखो पर दूसरों के साथ लेकर चलो। जी हाँ, आप अपने लिए तो जियो पर दूसरों को भी आप साथ लेकर चलो। दिन में एक बार किसी एक अनजान या जिसको आपकी ज़रूरत हो उसकी हेल्प करो, आपको अपनी ज़िंदगी खुद खूबसूरत लगने लगेगी।

जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

देखो दोस्तों, जाते जाते बस मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसमें ट्रैफिक भी होता है, उसमें दिल भी टूटता है, लोग छोड़कर भी जाते हैं, पर इसी टूटी फूटी इन परफेक्ट जिंदगी में ही अपनी असली सुंदरता है। तो आज से एक खुद से वादा कीजिए कि रोज हंसना है, खुल के थोड़ा रो भी लेना है अगर आपका मन करे तो, और रोज किसी एक पल को बिना फोटो खींचे सिर्फ आंखों से जी लेना है। तो मैं हूं आपकी आरजे निधि और आपसे बहुत जल्द मिलूंगी आपके इसी कार्यक्रम में। तो अपने इस कार्यक्रम गीता भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि वर्मा को दीजिए इजाजत। छोड़े जाते हैं आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची।

0: अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
1: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित करने कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पहले नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण, सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है।

0: आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
1: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
2: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
1: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
3: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
1: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
4: हम है चुन्ना हल्दा, इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उलदार है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
1: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
0: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है। इस इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
7: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और उड़ीसा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
8: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ते ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विथ्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Supreme Court asks Centre to consider exempting Class 6 students from CBSE's 3-language policy this year. Indian Navy to host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. Delhi government prepares tougher action plan to control air pollution in the national capital during winter season. US waives tariff on specialty drugs imported from India and 19 other countries. And Indian men's cricket team advanced to the semi-finals at the Asian Games in Japan.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की तीन जबानों की पॉलिसी से छठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को खत्म कर दिया है। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE को हिदायत दी है कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को तीन जबानों के निजाम से वही रियायत देने पर गौर करें जो पहले ही सातवीं जमात के तलबा को दी जा चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमालिया बागची और वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज और CBSE की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर

0: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इस साल छठी जमात के तलबा को भी वही रियायत दी जाए जो सातवीं, आठवीं और नवीं जमात के तलबा को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को CBSE से कहा था कि वो छठी जमात के तलबा के लिए तीन जबानें, जिसमें दो भारतीय मुकामी जबानें शामिल हैं, पढ़ने की अपनी पॉलिसी 2027 से शुरू होने वाले अगले तालीमी साल से नाफिज करने पर गौर करे। CBSE के बयान के मुताबिक इस वक्त सातवीं, आठवीं और नवीं जमात में पढ़ने वाले तलबा को जब वो दसवीं जमात में पहुंचेंगे तो तीसरी जबान का बोर्ड इम्तिहान देने की जरूरत नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत आलिया को बताया कि तकरीबन 99% स्कूलों ने तीसरी जबान की पॉलिसी इख्तियार कर ली है और उन्हें इसके लिए ज़रूरी सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं, जबकि तकरीबन 1.2% स्कूलों ने अभी तक ये पॉलिसी इख्तियार नहीं की है। ताहम समात के दौरान मरकज़ ने मौकफ इख्तियार किया कि वो छठी जमात के मौजूदा तलबा को इस पॉलिसी से मुस्तस्ना करने के हक़ में नहीं है। मरकज़ का कहना था कि तलबा को मौजूदा तालीमी साल ही से जबान के नए निज़ाम पर अमल शुरू करना चाहिए। भारतीय बहरिया आज से जुमेरात तक नई दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के दूसरे एडिशन की मेज़बानी करेगी। तीन रोज़ा ये कॉन्फ्रेंस मरकजी मुकाम से बाहर तैनात ऑपरेशनल और एरिया कमांडरों समेत सीनियर बहरी क़यादत को यकजा होने का मौका फराहम करेगी। इस दौरान फौजी स्ट्रेटजिक सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों का जामे जायजा लिया जाएगा और इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए सीनियर हुकूमती अमले के साथ तबादले ख्याल किया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के दौरान तवानाई के तहफ्फुज़ समेत भारत के बहरी मफादात की हिफाजत में भारतीय बहरिया के रोल को भी नुमाया करेगी। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कौमी बहरी नज़रियात और भारतीय बहरिया से तवक्कुआत के मौजू पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर जनाब भूपेंद्र यादव ने कौमी राजधानी दिल्ली में फिजाई आलूदगी में कमी के एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। कल मुनक़िद हुई इस मीटिंग में पहले से किए गए इकदाम, जमीनी सतह पर हासिल की गई पेशरफ्त और मौसम सरमा से कबल और इसके दौरान किए जाने वाले इजाफी इकदाम का जायजा लिया गया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एक्शन प्लान के तहत बेदारी और कानून के निफाज के जरिए ऑटोमेटिक नंबर प्लेट शनाख्त से लैस तमाम पेट्रोल पंपों पर PUCC नहीं तो ईंधन नहीं का उसूल नाफिज किया जाएगा। यकुम नवंबर से 31 जनवरी तक धूल उड़ाने वाली इन्हदामी सरगर्मियों और खुले मकामात पर शहरी तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सफ़े आखिर तक रबते को मजबूत बनाने के लिए एक अवामी मुहिम के जरिए दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को फ़रोग दिया जाएगा। हुकूमत शनाख्त किए गए बंजर इलाकों में शजरकारी और हरियाली बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेगी। मौसम सरमा से मुतालिक प्रोटोकॉल में आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, पार्किंग फीस में इजाफा, दफातर के औकात में मरहलावार तब्दीली और घर से काम करने के इंतजाम शामिल होंगे। EV पॉलिसी 2026 और परिवर्तन स्कीम को भी रजिस्ट्रेशन मुहिम और जन भागीदारी कैंपों के जरिए फ़रोग दिया जाएगा। मीटिंग के दौरान माहौलियात के मरकजी वजीर ने दिल्ली के 37 शनाख्त शुदा हॉटस्पॉट पर आइंदा महीने की 10 तारीख तक जन भागीदारी प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया। दिल्ली की वजीर आला ने इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया कि लिए गए फैसले और निशानजद किए गए इकदाम ज़मीनी सतह पर मौसर अमल आवरी में तब्दील हों। रिशु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम तस्करा कर रहे हैं कि मिशन लाइफ के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह बरुएकार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: झारखंड की रियासत जो मुल्क के तकरीबन 40% मादनी वसायल का मरकज है, सनअती तरक्की के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के चैलेंज का सामना कर रही है। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से शुरू किया गया मिशन लाइफ अब रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अमली शक्ल इख्तियार कर रही है। झारखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां नौजवानों में माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के लिए तमाम कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट सतह पर 10 हफ्तों और 2 क्रेडिट पर मुश्तमिल लाजमी कोर्स मुतारफ कराया गया है। वज़ीर आज़म मोदी इस तहरीक के पीछे

0: फरमा नजरिए की वजाहत कर रहे हैं।
1: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
0: वजीर आजम का ये नजरिया कोडरमा जिले की जरगा पंचायत में भी अमली इकदाम की सूरत में नजर आ रहा है। खजाटन गांव में कम्युनिटी की शिरकत से बंजर जमीन को सरसब्ज इलाके में तब्दील कर दिया गया है। पानी की बचत की कारकुन पार्वती देवी की क्यादत में गांव वालों ने पानी की बचत और पानी को जखीरा करने के लिए हजारों खाई नुमा बंद तामीर किए। इन कोशिशों के एतराब में सदर जमहूरिया ने उन्हें एजाज से भी नवाजा। इस इकदाम से कोडरमा में जेर जमीन पानी की सतह बेहतर बनाने में मदद मिली है। साहिबगंज के कबायली इलाकों में इस साल 5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं जिससे पानी जंगलात और वाइल्ड लाइफ के तहफ्फुज़ में मदद मिल रही है। इस मुहिम से मकामी कबायली बिरादरियों के लिए रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं और पत्तों और बांस के जरिए इजाफी आमदनी भी हासिल हो रही है। स्कूलों में कायम इको क्लब बच्चों को कम उम्र से ही पानी और तवानाई की बचत की तरगीब दे रहे हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से होने वाली शदीद बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से कई जिलों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। तफसील हमारे नामानिगार से।
0: शाहजहांपुर में रामगंगा नदी और बाराबंकी अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गोंडा में कुआनो और कुशीनगर में गंडक दरिया भी खतरे की सतह से ऊपर बह रहे हैं। कुशीनगर जिले में नारायणी दरिया के किनारे बना हुआ एक पुश्ता तमकुही राज तहसील के इलाके से गुजरता है, कल रात पानी के शदीद बहाव के बायस टूट गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी और बचाव कार्रवाइयां अंजाम देने की हिदायत दी गई है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने आज भी रियासत के बाज़ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। हुक्काम मुतासर अजला की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
2: उत्तराखंड में मौसमी हालात में बेहतरी के बाद चार धाम यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने बताया कि मुतालिका जिले मजिस्ट्रेटों को जरूरी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मौसम की पेशगोई और यात्रियों की हिफाजत के मद्देनजर चार धाम यात्रा 26 सितंबर की दोपहर से 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई थी। इस दौरान चिरबासा के करीब केदारनाथ धाम ट्रेकिंग रूट पर मरम्मत और दीगर तामीरी काम जारी है। चिरबासा के करीब शदीद बारिश के बाद मलबे और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से गुरी कुंड के ऊपर बने तकरीबन 2.5 किलोमीटर के इस रास्ते को नुकसान पहुंचा था। उड़ीसा में हीराकुंड डैम के बालाई इलाकों में जारी शदीद बारिश और डैम से छोड़े जा रहे पानी में इजाफे से महानदी के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। हीराकुंड डैम के 28 दरवाजे खुले हैं जिनसे तकरीबन 5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। कटक के नज़दीक मुंडली में छोड़े जा रहे पानी की मकदार बढ़कर तकरीबन 8 लाख क्यूसिक हो गई है जिस पर करीबी नज़र रखी जा रही है। फिक्की फ्रेम्स 2026 आज से मुंबई में शुरू होगा। इस साल के फिक्की फ्रेम्स का उन्वान है भारत में मीडिया का दौर, लामहदूद कंटेंट के दौर में अखदार की तश्कील। तफसील हमारे नामानिगार से।
3: सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स 2026 में इफ्तिताही खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के एम्बेसडर और अदाकार आयुष्मान खुराना भी तकरीब से खिताब करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के इफ्तिताही इजलास के दौरान फिक्की के साबिक सदर और जियो स्टार के नायब चेयरमैन उदय शंकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम दिया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान भारत की स्क्रीन मईशत, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, स्पोर्ट्स वीविंग, मसनूई जहानत और कॉपीराइट के अलावा दीगर मामलों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
2: अमरीका, भारत और दीगर 19 मुल्क ममालिक से गैर मामूली तिब्बी हालात के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनसे मुतालिक अज्जा की दरामद पर किसी तरह का महसूल आयद नहीं करेगा। अमरीका के कॉमर्स के महकमे ने विफाकी रजिस्टर में इन ममालिक की फहरिस्त शाये की है क्योंकि वो कुछ पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स दरामदात और उससे मुतालिक अज्जा पर

0: सितंबर से 100% महसूल आयद करने की तैयारी कर रहा है। सिफर महसूल वाली मसनूआत में गैर मामूली बीमारियों के इलाज की सभी दवाएं, बांझपन के इलाज, खुलियात की थेरेपी, जेन थेरेपी, एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स और जानवरों की दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं के अज्जा पर भी कोई महसूल आयद नहीं होगा। भारत के अलावा सिफर महसूल के ज़ुमरे में यूरोपीय यूनियन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, जनूबी कोरिया, स्विट्ज़रलैंड, ताइवान, थाईलैंड, बरतानिया और वियतनाम शामिल हैं। ये इस्तिस्ना ट्रंप के अप्रैल ऐलान पर अमलावरी का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने तजारती तौसी के कानून की दफ़ा 232 के तहत फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स अज्जा की दरामदाद को तरतीब देने की बात कही थी। भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम मैदान में उतरे बगैर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आईसी नागोया में ख़राब मौसम की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ इसका क्वार्टर फाइनल मुकाबला मनसूख कर दिया गया। इसके साथ ही जापान के आईसी नागोया में जारी एशियाई खेलों में भारत का तमगे जीतने का शानदार सिलसिला जारी है। खिलाड़ियों और निशानेबाजों ने मुल्क के तमगों की तादाद में कई तमगों का इजाफा किया है। एथलेटिक्स में भारत ने मर्दों के जेवलिन थ्रो में 2 तमगे जीते। यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर में बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। मर्दों के लॉन्ग जंप में श्री शंकर मुरली ने 8.70 मीटर की बेहतरीन कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा हासिल किया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया कली। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने UPI लेन देन पर चार्जेस से मुतालिक खबर को नुमाया किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR नाफिज करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। रोजनामा प्रताप ने आइंदा मौसम सरमा के पेश नज़र फजाई आलूदगी से निपटने के लिए दिल्ली हुकूमत की तैयारी के हवाले से शह सुर्खी लगाई है, फजाई आलूदगी से निपटने के लिए जंगी सतह पर तैयारी जारी, वर्क फ्रॉम होम, तामीरी व इन्हदामी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी समेत कई अहम फैसले। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म ने मोदी ने लता मंगेशकर को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया और कहा कि उनकी आवाज़ नस्लों तक गूंजती रहेगी। अखबार की एक दिगर सुर्खी है, वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन कतर के दौरे पर पीर की सुबह दोहा पहुंची।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा है कि वो इस साल CBSE की 3 जबानों की पॉलिसी से 6ठी जमात के तलबा को मुस्तस्ना करार देने पर गौर करे। भारतीय बहरिया आज से आइंदा जुमेरात तक नई दिल्ली में दूसरी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 की मेजबानी करेगी। दिल्ली हुकूमत ने मौसम सरमा के दौरान कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अमेरिका ने भारत और 19 दीगर मुल्कों से दरामद की जाने वाली खसूसी दवाओं पर आयद महसूलात को ख़त्म कर दिया है और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भव्या शाराश्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे थे भव्या सारस्वत से ध्रुपद गायन राग हिंडोल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब प्रस्तुत है विज्ञान पत्रिका।

नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज पर्यावरण केवल पेड़ पौधों या जंगलों का विषय नहीं है। वायु प्रदूषण, जल संकट, प्लास्टिक कचरा, जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, ग्लेशियरों का पिघलना और जैव विविधता का नुकसान सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आज पर्यावरण संरक्षण पूरी दुनिया के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका है। बढ़ता प्रदूषण, जल संकट, वनों की कटाई, प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हमारे जीवन और भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में केवल सरकार या पर्यावरण संगठनों की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है, आम नागरिकों की भागीदारी भी आवश्यक है। ऐसे समय में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने और उन्हें समाधान का हिस्सा बनाने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को जागरूक करने और उन्हें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीडिया समाज का आईना होने के साथ साथ बदलाव का प्रभावशाली माध्यम भी है। मीडिया केवल समाचार देने का माध्यम नहीं, टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो, वेबसाइट, सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मीडिया लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों के द्वारा पर्यावरण से जुड़े संदेश बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाए जा सकते हैं।

तरीके भी बताए तो लोगों के लिए उस संदेश को अपने जीवन में लागू करना आसान हो जाता है। मीडिया की एक और महत्वपूर्ण शक्ति कहानियां और वास्तविक उदाहरण है। जब किसी किसान, विद्यार्थी, संस्था या समुदाय की पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सफलता की कहानी सामने आती है तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसी कहानियां ये विश्वास पैदा करती हैं कि छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस प्रकार मीडिया समस्या बताने के साथ साथ समाधान का रास्ता भी दिखा सकता है। रेडियो इस क्षेत्र में विशेष भूमिका निभा सकता है। रेडियो की पहुंच व्यापक है और इसे लोग अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ सुन भी सकते हैं। रेडियो कार्यक्रमों में विशेषज्ञों की बातचीत, स्थानीय लोगों की कहानियां, प्रश्नोत्तरी और श्रोताओं की भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों को सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे पर्यावरण संरक्षण केवल एक गंभीर विषय न रहकर रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बन सकता है। आज सोशल मीडिया ने पर्यावरण जागरूकता को एक नया मंच दिया है। एक छोटा वीडियो, पोस्ट या कुछ अभियान कुछ ही समय में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन सोशल मीडिया की वास्तविक सफलता केवल किसी संदेश के वायरल होने में नहीं बल्कि लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने में है। किसी पोस्ट को लाइक या शेयर करने के साथ साथ यदि लोग अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, तभी डिजिटल जागरूकता वास्तविक परिवर्तन में बदल सकती है। युवाओं की भागीदारी भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण है। युवा सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वीडियो और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके पर्यावरण से जुड़े संदेशों को रचनात्मक तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। स्कूल और कॉलेज स्तर पर पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक कम करने और ऊर्जा बचाने जैसी छोटी छोटी पहले भी समाज में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती हैं। मीडिया की जिम्मेदारी केवल पर्यावरणीय समस्याओं को उजागर करना नहीं बल्कि सही और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराना भी है। पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को सनसनीखेज बनाने के बजाय तथ्यों और व्यावहारिक समाधानों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को केवल किसी विशेष दिवस तक सीमित न रखकर नियमित रूप से चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो वहां पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को मीडिया ने बड़े स्तर पर जनता तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के विषय को देखें। यूरोप और अमेरिका में समाचार चैनलों, अखबारों और डिजिटल मीडिया ने हीट वेव, जंगलों की आग, बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर जैसी घटनाओं को लगातार रिपोर्ट किया। इससे आम लोगों के सामने ये सवाल आया कि इन घटनाओं का संबंध बदलती जलवायु से किस प्रकार है। इसी तरह कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की पर्यावरण संबंधी डॉक्यूमेंट्री और रिपोर्टों ने जंगलों, समुद्री जीवन, वन्य जीवों और जलवायु परिवर्तन के विषयों को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए वन्य जीवों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री में जब दर्शक किसी विलुप्ति के खतरे में पड़े जानवर या नष्ट होते जंगलों को देखते हैं तो पर्यावरण का मुद्दा केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वो एक भावनात्मक और वास्तविक अनुभव बन जाता है। सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को और बढ़ाया है। किसी जंगल की आग, समुद्र में प्लास्टिक प्रदूषण या किसी घायल वन्य जीव का वीडियो कुछ ही घंटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इससे लोगों में चर्चा, जागरूकता और कई बार जन अभियान भी शुरू होते हैं। विदेशों में पर्यावरण से जुड़े जन आंदोलनों को भी मीडिया ने व्यापक मंच दिया है। उदाहरण के लिए ग्रेटा थनबर्ग और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन को लिया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर शुरू हुआ ये आंदोलन सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यमों के जरिए बहुत तेजी से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचा। यहाँ मीडिया ने केवल घटना की रिपोर्टिंग नहीं की बल्कि युवाओं की आवाज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी प्रदान किया। हालांकि मीडिया का काम केवल किसी आंदोलन का प्रचार करना नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो वैज्ञानिक तथ्यों, अलग अलग दृष्टिकोणों और उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर लोगों को जानकारी दे। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ भी मीडिया ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन इसका एक अच्छा उदाहरण है। सरकार द्वारा स्वच्छता, खुले में शौच की समस्या और कचरा प्रबंधन को लेकर अभियान चलाए गए। टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इन अभियानों के संदेशों को गांवों और शहरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा मन की बात जैसे रेडियो कार्यक्रमों में भी स्वच्छता, जल संरक्षण, स्थानीय पर्यावरण और जन भागीदारी से जुड़े उदाहरणों को सामने लाया गया। इससे यह संदेश पहुंचा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि नागरिक भी इसमें योगदान दे सकते हैं। एक अन्य उदाहरण नमामि गंगे कार्यक्रम का है। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण को लेकर सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। मीडिया ने नदी में प्रदूषण, सीवेज, औद्योगिक

0: कचरे और गंगा की स्थिति से संबंधित रिपोर्टों के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार चर्चा में बनाए रखा। इससे आम लोगों में यह समझ विकसित करने में मदद मिली कि नदी केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि हमारे जल संसाधन, स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह अनेक सरकारी योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जमीनी स्तर पर उतारने में मदद मिली है। भारत में अनेक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। इनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाने में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उदाहरण के लिए WWF इंडिया वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कार्य करता है। मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे संगठनों के अभियान और जागरूकता कार्यक्रम बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट यानी CSE पर्यावरण, प्रदूषण, जल और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध और रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जब इन रिपोर्टों को समाचार माध्यमों में जगह मिलती है तो पर्यावरण से जुड़े विषय केवल विशेषज्ञों तक सीमित नहीं रहते बल्कि आम नागरिकों और नीति निर्माताओं के बीच भी चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज के समय में पर्यावरण जागरूकता का सबसे तेज माध्यम सोशल मीडिया भी बन गया है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोग प्लास्टिक कम करने, पेड़ लगाने, पानी बचाने और कचरे को अलग अलग करने जैसे अभियानों को साझा करते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी शहर में लोग मिलकर किसी झील, बावड़ी, कुएं आदि जल स्रोतों की सफाई करते हैं और उसकी तस्वीरें तथा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं तो दूसरे लोग भी उसे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में ऐसा अभियान शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, नदी में प्रदूषण या अवैध कचरा फेंकने जैसी समस्या का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन का ध्यान भी उस समस्या की ओर आकर्षित हो सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया एक तरफ जागरूकता का माध्यम है तो दूसरी तरफ नागरिकों को अपनी स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं की आवाज उठाने का मंच भी देता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, मीडिया का प्रभाव जितना बड़ा है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। पर्यावरण से जुड़ी खबरों में केवल सनसनी फैलाना पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए यदि किसी शहर में वायु प्रदूषण बहुत अधिक है तो मीडिया को केवल ये बताने के बजाय कि प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या हैं, वैज्ञानिक आंकड़े क्या कहते हैं और नागरिक तथा प्रशासन क्या कदम उठा सकते हैं। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन जैसे जटिल विषयों पर वैज्ञानिक तथ्यों को सरल भाषा में जनता तक पहुंचाना आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार, वैज्ञानिकों या पर्यावरण कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझाने में मीडिया एक सेतु का काम कर सकता है। सरकार और जनता के बीच, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के बीच तथा पर्यावरणीय समस्याओं और उनके समाधानों के बीच एक अच्छी पर्यावरणीय खबर केवल हमें समस्या के बारे में नहीं बताती बल्कि हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम उस समस्या के समाधान में क्या योगदान दे सकते हैं। आज आवश्यकता ऐसे मीडिया की है जो पर्यावरणीय समस्याओं को सही तथ्यों के साथ सामने लाए, सफल प्रयासों को लोगों तक पहुंचाए, वैज्ञानिक जानकारी को सरल भाषा में समझाए और नागरिकों को जिम्मेदार भागीदारी के लिए जागरूक करे। क्योंकि जब सही जानकारी करोड़ों लोगों तक पहुंचती है तो जागरूकता पैदा होती है और जब जागरूकता के साथ जन भागीदारी जुड़ती है तभी पर्यावरण संरक्षण एक वास्तविक जन अभियान बन सकता है। अंततः ग्रीन संदेश तभी सार्थक है जब वो ग्रीन कार्य में बदल जाए। मीडिया के पास लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करने की शक्ति है। यदि इस शक्ति का उपयोग सही जानकारी, प्रेरक कहानियों और व्यवहारिक समाधानों के साथ किया जाए तो मीडिया पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मजबूत सामाजिक आंदोलन को बढ़ावा दे सकता है। हमें केवल ये कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि धरती बचाइए, हमें ये भी समझाना होगा कि धरती को बचाने के लिए हम आज क्या क्या कर सकते हैं। एक छोटा पौधा लगाना, पानी बचाना, बिजली की अनावश्यक खपत रोकना या प्लास्टिक का उपयोग कम करना, हर कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बदलाव केवल संदेश से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब संदेश हमारी आदत और हमारी कार्रवाई बन जाता है। आलेख था विज्ञान लेखक डॉक्टर नवनीत कुमार गुप्ता का।
1: सितंबर का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने में भौतिकी, रसायन, औषधि और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युगांतरकारी योगदान देने वाले कई दिग्गज वैज्ञानिकों का जन्म हुआ। आइए उनके योगदान को याद करें। भारत के महान सिविल इंजीनियर और राजनेता सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को हुआ था। उनकी दूरदर्शी जल प्रबंधन और बांध तकनीकों के सम्मान में भारत प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाता है।
2: महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे का

0: जन्म 22 सितंबर 1791 में हुआ। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस के नियमों का जनक इन्हें माना जाता है। इनके आविष्कारों ने आधुनिक इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की नींव रखी। जॉन डाल्टन का जन्म 6 सितंबर 1766 को हुआ था। इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत यानी एटमिक थ्योरी के प्रणेता और वर्णांधता यानी ब्लाइंडनेस या डेल्टोनिज्म पर पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक के तौर पर याद किया जाता है। आइए अब उन महान वैज्ञानिकों को याद करते हैं जिनकी पुण्यतिथि सितंबर माह में है। सितंबर का महीना न केवल महान वैज्ञानिकों के जन्म के लिए जाना जाता है, बल्कि इस महीने में विज्ञान जगत ने कई ऐसी विभूतियों को खोया है जिन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। भारत के प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना का निधन 24 सितंबर 2004 को हुआ। वे 1974 में भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के मुख्य रणनीतिकारों और सूत्रधारों में से एक थे। उन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
1: सूक्ष्म जैविकी के जनक लुई पाश्चर का निधन 28 सितंबर 1895 को हुआ था।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर। 9:30 हुए हैं, ये सुनते कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजिर हाँ शमिंदर कलेर। अज के इस प्रोग्राम असी सुनांगे कविता पाठ ते इस तों इलावा कुछ गीत भी सुनाए जाणगे। अज कौमांतरी दिल दिहाड़ा मनाया जा रहा है जो हर साल 29 सितंबर नूं पूरी दुनिया च मनाया जाता है। ये दिन दिल दीआं बीमारियां प्रति लोगों नूं जागरूक करन दे लई मनाया जाता है। असी कई बार छोटियां मोटियां बीमारियां प्रति अवेसले हो जाने हां। अज दी भज दौड़ भरी जिंदगी च हर पासे काली जी मची पई है ते इस काहल करके असी बाहरों भोजन फास्ट फूड ते प्रोसैसड फूड नूं तरजीह दिंदे हां ते असी खुद ही बीमारियां नूं बुलावा दिंदे हां। यही कारण है कि अज दिल दे रोग बहुत ज़्यादा वध गए ने ते इस दे शिकार बजुर्ग नौजवान ही नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी दिल दे दौरे वर्गियां बीमारियां दे शिकार हो रहे ने। दुनिया भर च हर साल 205 मिलियन तो वध लोग दिल दीआं बीमारियां कारण मरदे ने। दिल दीआं बीमारियां विच स्ट्रोक जमांदरू दिल दे नुक्स दिल दा रोग ते होर कई कारण हो सकते ने। अजिहे च लोकां नूं इन्हां बीमारियां प्रति जागरूक करन दे लई इस दिवस नूं मनाया जांदा है। दिल दीआं बीमारियां वधन दा मुख कारण गलत जीवन शैली ते खाण पीण दीआं गलत आदतां शामिल हन। दिल दीआं बीमारियां वधन दा मुख कारण गलत जीवन शैली ते खाण पीण दीआं गलत आदतां साडे जीवन ते बुरा प्रभाव पाउंदियां ने जिस करके साडा दिल कमज़ोर हो रहा है ते असी दिल दे रोगां दे मरीज़ बन रहे हां। कौमांतरी दिल दिहाड़े दे जे इतिहास की गल की जाए तो पहली बार 24 सितंबर 2009 यह दिवस मनाया गया सी। WHF के सबका प्रधान एंटोनी बर्डी लूना दे मंच इस दिवस नूं मनाउण दा विचार आया सी। बाद विच 2012 तो 2025 तक विश्व मौत दर 25% तक घटाउण लई 29 सितंबर नूं कौमांतरी दिल दिवस मनाउण दा फैसला किया गया। इस लई दिल दा खास ख्याल रखना चाहीदा है जो इंसान दे शरीर दा सब तो महत्वपूर्ण अंग है। गायक बबू मान आखिर दिल नूं पागल क्यों कह रहे ने आओ सुनते हाँ इस गीत च। इस गीत नूं संगीतबद्ध किया है जयदेव कुमार ने।

0: गीत तुसी सुन रहे सी गायक बब्बू मान की आवाज़ च, इसलिए दिल भी उत्थे ही लाउणा चाहीदा है जिते तुहाडे प्यार की कदर होवे। इस गीत नूं सुन तो पहला असी गल कर रहे सी कौमांतरी दिल दिहाड़े की। जे तुसी अपने दिल नूं बीमारियां तो बचाउणा चाहुंदे हो तां तुहानूं कुछ छोटियां छोटियां गल्लां दा ध्यान रखना पवेगा। हर रोज़ घट्टो घट 40 मिनट लई तेज़ तेज़ सैर करना, साइकिल चलाउणा, तैराकी करना ते योग करन दे नाल साडा दिल मजबूत बनता है। यह करन नाल साडे शरीर दा ब्लड प्रेशर, कैलोस्ट्रोल ते मोटापा कंट्रोल च रहिंदा है। यही नहीं, लिफ्ट च जाण दी बजाए पौड़ियां चढ़न दीआं चाहीदीआं ने। इस तों इलावा घंटियां बद्दी बैठन दी बजाए तुरन फिरन नूं तरजीह देनी चाहीदी है। इस नाल दिल शरीरक तौर ते सरगर्म ते मजबूत होवेगा। इस तों इलावा खाने दा वी साडे शरीर ते बहुत प्रभाव पैंदा है ते कहा वी जांदा है जैसा खाइए अन्न ते वैसा होवे मन। इसलिए दिल नूं सदा सेहतमंद रखण लई घट चर्बी, घट नमक, घट चीनी वाली खुराक लैनी चाहीदी है। फल सब्जियां ड्राई फ्रूट खाण नूं तरजीह देनी चाहीदी है। आखिर दिल दा मामला है, ख्याल तां तुहानूं ही रखना पवेगा, सो मर्जी हुण तुहाडी है। प्रभजोत कौर सबरवाल सानू अपने कविता पाठ राही जीवन दे केड़े पहलुआं दी गल कर रहे ने, आओ सुनदे हां कविता पाठ च।
1: पहली कविता है तुर पैंदी हाँ। टुटना जां जुड़ना मेरे वस नहीं, टुटना जां जुड़ना मेरे वस नहीं, फर्क तां पैंदा है मेरे

मैं होंच, मेरी दुनिया मेरी मंजिल वल, मेरी दुनिया मेरी मंजिल वल, हर वेले सी तक दी सा पर दी ने एक दिन, सा पर दी ने एक दिन उस वल सहज जिया सी तकिया। बस तकिया सी मैं, बस तकिया सी मैं उस हर लिया मैनू, पैरां हेठ फुल बिछा के, पैरां हेठ फुल बिछा के राह मेरा उस मलिया। हाथ मेरे हुन घर दियां कुंजियां ते घर च टंगियां कुछ तस्वीरां हन, तस्वीरां च हन मेरे सुफनियां दे रंग। रंग कदे कैद होए, रंग कद कैद होए नहीं जांदी, पर ओ जिउंदे ने, पर वो जिउंदे ने, तुरदे ने नज़र तो नज़रिए तक। मैं इन्हां रंगा नाल भावें चुप बैठी करदी हाँ बातां, पुछ लैंदी हाँ सवाल, जवाब मिले ना मिले, साहां च रंग भरी लभदी पछाणदी तुर पैंदी हाँ नवें रंगां च डुबे, तुर पैंदी हाँ नवें रंगां च डुबे बुरश ते कैनवस वाल। मेरी अगली कविता है सौखा नहीं। कई बार मनुख तुरदा मुड़ जांदा है उन्हां राहां वल जो ना अपने ना पछाते। कई बार मनुख तुरदा मुड़ जांदा है उन्हां राहां वल जो ना अपने ना पछाते। रोशनी जां हनेरा कुछ भी भरमाउण लई नहीं, रोशनी जां हनेरा कुछ भी भरमाउण लई नहीं, खौरे किस लई क्यों। तुरदा राह भी बदलना पैंदा, चुप दी वाट कुछ ना सोचदा, सब वेखदा नज़र अंदाज करी। चुप दी वाट कुछ ना सोचना, सब वेखदा नज़र अंदाज करी। तुरदा चली जांदा खौरे किस वल कदों तक नहीं जांदा। मैं जद तुरी सां मैं सोचिया सी मेरे राह मेरी मंजिल रब वल दी है जिस्म रिश्तियां तो पार। मैं सोचिया सी मेरे राह मेरी मंजिल रब वल दी है जिस्म रोश रिश्तियां तो पार। उस धड़कते दिल दी उस बात पाई, उस धड़कते दिल दी सी बात पाई। मैं कहा सी उसनू समुंदर दी प्यास बुझदी नहीं, बाहर कुछ नहीं टुटदा, बाहर वल तां हर कोई तुरदा, अंदर मुड़ना सौखा नहीं। रुकदा खुरदा फिर टुटदा मनुख मगरों कुछ नहीं पुछदा। रूह दिल चुप दी पहन चादर, सुनदी आवाज लब के तुर पैंदे ने खामोश हो। मेरी अगली कविता है रंगना चाहुंदी हाँ। मैं मिट्टी हो हवा होई तुरदी हाँ, उड़दी हाँ ख्याल एहसास पर बाहां च। ना राह मेरे ना ख्वाब कोई, परछावें दे देश च कुछ रुखां इमारतां दी छां हेठ। ना राह मेरे ना ख्वाब कोई, परछावें दे देश च कुछ रुखां इमारतां दी छां हेठ बैठ मैं तकिया जिस्म रूह दे गारे च अजे भी तड़फदे ने कुछ साज कुछ रंग। रूह खाक होई मोती दी पसम हो उड़दी नहीं, साम रखी जांदी है डिब्बियां च दवा हो दुआ वांग। जिंदगी दी रंगत नूं अपना बनाउण लई ज्यों लैण दे मैनू मर जाण तो पहलां। जिंदगी दी रंगत नूं अपना बनाउण लई ज्यों लैण दे मैनू मर जाण तो पहलां। मैं रंगना चाहुंदी हाँ मिट्टी अपनी नूं रूह दे रंग अंदर। मेरी अगली कविता है हुन होर नहीं। मैं पत्थर नहीं इंसान ही हाँ, मैं पत्थर नहीं

0: इंसान ही हाँ, प्यार एहसास नू हर रंग च वेख्या मैं। लहू तो जन्म समाज ते धर्म, लहू तो जन्म समाज तो धर्म, लाज हो शर्म हर करम। रूह कदे मिट्टी च रंगया फब्बे, रूह कदे मिट्टी च रंगया फब्बे, अखां तेरिया च, अखां तेरिया च जिंदगी दी झलक दिसी तां सी। पर प्यार जां इश्क जां जो भी सी, पर प्यार जां इश्क जो भी सी, मैनू दोस्त तां बैठा दिसिया सी। तू भी तकिया मैनू रज के सी, तू भी तकिया मैनू रज के सी, पर रूह तक चात ना पाई तू। मैं रंगी इश्क हकीकी सां, मैं रंगी इश्क हकीकी सां, तकदी रही हर शब्द तेरा, लभदी रही हां ओस दे फुल, लभदी रही हां ओस दे फुल, हवा च पानी दे तुबके नू अक्स अपने नू। लभदी रही हां ओस दे फुल, हवा च पानी दे तुबके नू अक्स अपने नू। ओ जो गुआच गया है, वो जो गुआच गया है, रिश्तियां फर्जां दियां पत्रां हेठ, हुन होर नहीं धर्म शर्म, बस हुन मेरे नहीं। ख्वाब एहसास भी नाल ही सन, जद तकिया मैनू तू रज के सी। राह नहीं राह नहीं ख्वाब तहन, झरने तो समुंदर वल, हुन होर नहीं मैं इंसान ही हाँ, पत्थर दी ओ दुर्गा ना। मेरी अगली कविता, मैं गुआची फिरां तुरां पगडंडियां ते, हाथ ला तक्कां नाल तुर दे रा। मैं गुआची फिरां तुरां पगडंडियां ते, हाथ ला तक्कां नाल तुर दे रा। कदे फुल कदी कंडे, कदे फुल कदी कंडे, कदे कच्च कदी रेत हाथ आउंदी। तुरदी फिरा मैं भी फरेब जही जिंदगी, एहसासां दे नाल जद कदे, एहसासां दे नाल जद करे कदे, फड़ बैठा जो भी हाथ आवे। परतां च लुकिया मेरा खालीपन ओ हनेरा, चात मार मेरे वल। परतां च लुकिया मेरा खालीपन ओ हनेरा, चात मार मेरे वल। हस पुछ लैंदा क्यों फलोरदी ऐं, क्यों फलोरदी ऐं, की लब्भे तू इस राहे कुछ ना तेरा, इस राहे कुछ ना तेरा। सब कहानियां ने शब्दां दा राग जो दिसदा, सब कुछ पसारा। सब कहानियां ने शब्दां दा गारा जो दिसदा, सब झूठ पसारा। छड उसे पल परत आउंदी हां अपने वल, जित्ते हुन मेरा दम घुटदा। मेरी अगली कविता है रोज़ कायदा करना। जिंदगी दी राहे तुरना इकल्ले, जिंदगी दी राहे तुरना इकल्ले, कोई पुछ ना पुछे सच तुरदा हवा च। जिंदगी दी राहे तुरना इकल्ले, कोई पुछे ना पुछे सच तुरदा हवा च। ना हासे ना बोले, ना हसे ना बोले, ओ वसदा फिजा च। दुख जां सुख, दुख जां सुख, सब दुनिया इसे च, ए घेरे च तुरदी ना बारी ना बूहा। दुख जां सुख, सब दुनिया इसे च, ए घेरे च तुरदी ना बारी ना बूहा। कुछ भी ना मेरा, कुछ भी ना मेरा, साहां दी माला कद पुरदी कद टुटनी, साहां दी माला कद पुरदी कद टुटनी। कुछ वस ना मेरे हाथ डोरी खुदा दे, ओही मालक सबना दा छड डोरी हाथ उस दे। जद कुछ हाथ ना पल्ले, जद कुछ हाथ ना पल्ले, फिर कैसा भुलेखा इकल्ले है तुरना, फिर किस वल है तकना। रोज कायदा करना, मापे ना बचपन, मापे ना बचपन, सब छड तुर है जाना। जो अज मेरा ओ कल किसे दा, जो अज मेरा ओ कल किसे दा। शुक्रिया।
1: कविता पाठ तुसी सुन रहे सी प्रभजोत कौर सबरवाल तो। आओ हुण प्रोग्राम दे सिलसिले नूं अगे तोरदे होए सुनदे हां गायक बलकार सिद्धू दी आवाज़ च ये गीत दो गल्लां करिए बैजा। गीत दे बोल लिखे ने भूषण दुआ ने ते संगीत बद कीता है तेजवंत किट्टू ने।

सच ही कह रहे ने गायक बलकार सिद्धू, गल करन वाली बनती है। आस है कि मिट्टी की महक प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। इस दे नाल ही मिट्टी की महक प्रोग्राम का समा हुण खत्म हुंदा है। हुण शमिंदर कलेर नूं इजाजत दिओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को भी कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को काफ़ी हद तक कम करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल एक चुनौती है, लेकिन प्रौद्योगिकी के साथ इसका समाधान भी निकलेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है।
1: The comprehensive economic partnership
2: व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को 4 साल हो गए हैं। हमने इस द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 100 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है और मैंने 2032 तक इसे दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। संयुक्त अरब अमीरात को भारत पर भरोसा है। उन्होंने पहले ही 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और वे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ वे सबसे बड़े स्रोत हैं। आने वाले वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात से निवेश को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। $100 billion
0: इन द इयर्स टू कम। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक एक्स हैंडल ADGPI पर पोस्ट में इस मुलाकात की जानकारी दी गई है। ADGPI ने पोस्ट करते हुए लिखा, इंडिया US फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाना। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों को लगाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने आज महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। इससे शूटिंग में देश के मेडलों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education or CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Suryakant, Justices Joy Mallya Bakshi and V. Mohana asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Classes 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. On September 17th, the top court had asked the CBSE to consider implementing its policy mandating the study of three languages, including two native Indian languages, for Class 6 students from the next academic session starting 2027. According to CBSE's statement, the current batches studying in Classes 7, 8 and 9 would not be required to give board examination in third language when they progress to Class 10th. Indian Navy will host second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation, operational and area commanders. The conference will be pivotal in underscoring Indian Navy's contribution towards safeguarding India's maritime interests, including security of energy, amidst the ongoing conflicts in West Asia. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the Air Pollution Mitigation Action Plan in the national capital. The meeting held yesterday reviewed the measures already undertaken, progress achieved on the ground and additional interventions required before and during the winter session. Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition enabled fuel stations through awareness and enforcement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 trade ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The government has said that the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 1,46,000 kilometers in March this year from over 91,000 kilometers in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. The US will not charge any tariff on certain specialty drugs and associated ingredients used for treatment of rare medical conditions imported from India and 19 other countries. The US Commerce Department published the list of countries in the Federal Register as it prepares to impose a 100% tariff on certain patented pharmaceutical imports and their associated ingredients from September 29th. Eligible products for the 0% tariff rate include all drugs designated for rare diseases, infertility treatments, cell therapies, gene therapies, antibody drug conjugates, and animal pharmaceuticals. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of northeast India, Andaman and Nicobar Islands, south interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to IMD, thunderstorms, lightning and gusty winds is expected to prevail over Madhya Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala, Mahi, Konkan, Goa and Odisha today. Meanwhile, IMD has said that the line of withdrawal of southwest monsoon continues to pass through Gurdaspur, Chandigarh, Muzaffarnagar, Aligarh, Dholpur, Udaipur, Disa and Nalia. Indian men's cricket team advanced to the semi-finals without taking the field. Their quarter-final against Afghanistan was abandoned due to inclement weather in Aichi, Nagoya. Meanwhile, India continued its impressive medal-winning run at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, with athletes and shooters adding several medals to the country's tally. And that is the end of this news bulletin. Thank you.
4: ये आकाशवाणी है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 10:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा ठहरिए। आज रेडियो सुनते हुए आप हैं कहाँ? घर में हैं, रास्ते में हैं, ऑफिस में, या फिर वो वाली जगह जहाँ आप काम तो कर रहे हैं लेकिन कान पूरे के पूरे रेडियो पर हैं। खैर, जो भी कर रहे हैं, जरा एक काम कीजिए, आज के अगले कुछ मिनट हमारे साथ ऐसे बिताइए जैसे सामने कोई अपना बैठा हो और बस बातें चल रही हो। क्योंकि आज आपकी पसंद में सिर्फ गीतों की बारी नहीं है, थोड़ी आपकी बात होगी, थोड़ी हमारी, और बीच बीच में वो गीत होंगे जिनके लिए रेडियो का वॉल्यूम आप अपने आप थोड़ा बढ़ा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश सारस्वत, और चलिए बिना किसी लंबी बात के सीधे चलते हैं उस आवाज पर, उस गीत की ओर, जहाँ से हम शुरुआत करेंगे और आते ही माहौल कुछ सुरमई कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

हो। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी रेडियो ऑन किया है तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। और अगर आप पहले से सुन रहे हैं तो बताइए, आवाज कितनी है रेडियो की? धीमी है तो थोड़ा और बढ़ा लीजिए। हाँ, अब ठीक है। वैसे एक बात बताइए, आप रेडियो सुनते हुए गाने पूरे सुनते हैं या बीच में ही कभी फोन आ जाता है? कभी कोई आवाज देता है और कभी कोई काम याद आ जाता है और फिर हम कहते हैं, अरे यार गाना छूट गया। इसीलिए आज कोशिश यही रहेगी कि आप जितनी देर हमारे साथ हैं उतनी देर कोई ना कोई बहाना बनाकर रेडियो के पास ही रहें। और अब लेते हैं गीत से पहले आप लोगों के संदेश, जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। जी हाँ दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है जब आप अपने प्यारे प्यारे संदेश हमें भेजते हैं। तो चलिए उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं ये पहला संदेश जो हमें आया है। आदाब अर्ज संदेश, गांव कुमार हेड़ा, सहारनपुर, सैयद मसरूर जी का। शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, इन्होंने एक गीत की फरमाइश के साथ हमें ये संदेश भेजा है। लेते हैं अगला संदेश। फिल्म ताजमहल जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़।

शल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन जी ने ये संदेश हमें भेजा है। अगला संदेश भेजा गया है तेलंगाना निजामाबाद से, शेख अलाबख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना जी ने हमें संदेश भेजा है। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जी झज्जर हरियाणा से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है, नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मिला है। मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरज जहानाज, रिफा जहानाज, नुजत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदेश भेजने के लिए। गाँव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचित खुराना, केशव रिधाना, रिधान खुदाना जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश हमें मिला है वो मिला है धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का, भोपालगढ़ राजस्थान से, और सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी, चंडीगढ़ सिटी से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी भी गांव फरासी जिला हिसार से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, भिलाई छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। इनकी फरमाइश शहनाई फिल्म के किसी गीत की है जी। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके गीतों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आप हमें लगातार अपने संदेश भेजते रहिए। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। और इसी कड़ी में अगला संदेश हमें मिला है जयपुर राजस्थान से दीक्षा उपाध्याय जी का। अपने ये इन्होंने गीत भेजा है अपने पति के लिए जी। हम कोशिश करेंगे आपके संदेश को आपके पति तक पहुंचाने की, संदेश के थ्रू आपके गीत को आपके पति तक पहुंचाने की। तो चलिए सुनते हैं ये कॉल गीत।

दोस्तों, अभी जो आपने गीत सुना उसके बाद मुझे लगता है आपसे मुझे एक बात पूछनी चाहिए। और वो बात ये है कि क्या लगता है आपको, गाने सुनने का सही तरीका क्या है? काम करते हुए गीत सुनने चाहिए, सफर में, चाय के साथ, या रात में जब आसपास की आवाज़ें थोड़ी कम हो जाएं? देखिए, मेरी तरफ से जो जवाब है वो कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना तरीका है। लेकिन अगर आप इस वक्त कोई काम कर रहे हैं तो काम करते रहिए, हम बीच बीच में आपका ध्यान थोड़ा चुरा लेंगे। और अब बढ़ते हैं अगले संदेश की तरफ, जो हमें भेजा है दतरंगी भाटापाड़ा से। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोके लाल वर्मा जी ने हमें ये संदेश भेजा है। शरफुद्दीन अंसारी बक्सर बिहार से, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जी हमें संदेश भेजे हैं डुमराव बिहार से। डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम मदीबा और दानिश अंसारी जी भी हमें ये संदेश भेज रहे हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सरिमपुर बक्सर से राजेश जी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा अगला जो संदेश हमें मिला है, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो है हमारे पास संदेश, ये संदेश हमें मिला है किशन सपकाल, सपकाल आशा, सपकाल सोनिया, सपकाल साईराज, सपकाल विशाल, सपकाल जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और शास्त्री नगर बीड शहर से ये संदेश हमें भेजा गया है। अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में कोई गीत सुनने की फरमाइश रख रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो वंडिंग केड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी हमें संदेश भेज रहे हैं। और रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया जी हमें संदेश भेज रहे हैं। भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी हमें संदेश भेज रहे हैं। होस्ट दुर्गेश सारस्वत जी, गुड मॉर्निंग, किसी भी गीत में मेल ले लीजिए, थैंक्स। ये हमें बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन जी ने संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना, प्रियल प्रियांशी विश्वकर्मा जी हमें ग्राम ममना, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। जी, बहुत सारे संदेश ऐसे हैं जिन्हें हम ले चुके हैं और बार बार आपके संदेश आ रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने संदेश एक बार ही हमें भेजें। आपके संदेश हमें मिल जाते हैं और हम कोशिश करते हैं पूरी पूरी कि हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके संदेश इतनी तेज़ी से लगातार हमारे स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं कि बहुत सारे संदेश बार बार आते हैं, तो जो संदेश जिनके हम नहीं ले पाते हैं उनके संदेश छूट जाते हैं। चलिए संदेश की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। जिला नांदेड़ येताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल जी हमें संदेश भेज रही हैं। स्वीटी रवि और इंदर नई दिल्ली वेस्ट से हमें संदेश भेज रहे हैं। कमला रानी बोधराज कोलवार, भानु प्रकाश, गीतिका कोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। चलिए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

वैसे दोस्तों, रेडियो की दुनिया में ना एक चीज बड़ी दिलचस्प होती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी आवाज इस वक्त किस किस जगह पहुंच रही है। किसी घर में शायद कोई चाय बना रहा हो तो सुन रहा हो, कहीं कोई गाड़ी चलाते चलाते सुन रहा हो, किसी दुकान पर रेडियो बज रहा हो, और शायद कोई ऐसा भी हो जिसने रेडियो सिर्फ इसलिए चलाए हो कि कमरे में थोड़ी रौनक बन जाए। तो जहां भी हैं, एक छोटी सी मुस्कान हमारी तरफ से रख लीजिए, और बदले में हम आपको देते हैं एक खूबसूरत गीत। लेकिन उससे पहले लेते हैं आपके संदेश। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल।

काल जी किसी गीत के साथ अपना संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हमें संदेश मिला है वो मिला है हमें श्रीमती शीतल राजेश, राशि राजेश, राजदीप राजेश, राजेश साबले पाटिल, छत्रपति इस संभाजी नगर से पार्थ रेडियो क्लब के थ्रू हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे जी का, शाहजी नगर देगलुरु जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया जी भी किसी भी गीत में शामिल करने की फरमाइश के साथ हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और सेक्टर 67 से मल्होत्रा फैमिली हमें ये संदेश भेज रही है। इसके अलावा मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडे बुलंद शहर से हमें संदेश भेज रहे हैं। और आपके जो संदेश हैं उसमें अगला संदेश हमें मिला है और अगला संदेश, दोस्तों आपके संदेश बार बार एक ही नाम से रिपीट हो रहे हैं। अगला संदेश हमें मिला है अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और समस्त राजपूताना परिवार गांव कलमंडी खुर्दा जिला झालावाड़ राजस्थान से हमें संदेश भेज रहे हैं। सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजे जाधव, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वद, हर्षता सानवी और प्रणाली देशमुख, सुंदर नगर औरंगाबाद रोड जलाना शहर से हमें संदेश भेज रहे हैं। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफो की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान हमें गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हमें संदेश भेज रहे हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, हिमाक्ष जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है हमें प्रकाश गोगिया जी का, इन्होंने हमें मेहर अरोड़ा दिग्दर्शन बोधराज खोरवाल की फरमाइश भी, माफ कीजिएगा ये संदेश, अगला संदेश ले लेते हैं। अगला संदेश जो हमें मिला है जाकिर मुलाड़ी, सुमैया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी और सलमा मुलाड़ी जी, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचा चाची और पूरा मुलाड़ी परिवार हमें मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली पंडरपुर तालुका गांव से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पौरुष जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो अगला संदेश मिला है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर से गाइड फिल्म से ही हमें किसी गीत की ख्वाहिश के साथ संदेश भेज रहे हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से हमें संदेश भेज रहे हैं लावारिस फिल्म के गीत के लिए। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है हमें शिकोहाबाद से, ये संदेश हमें भेज रहे हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, कृपया गाइड फिल्म से आज पर जीने की तमन्ना की ख्वाहिश के साथ पुष्पेंद्र यादव, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। चलिए आप लोगों की फरमाइश के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्लेलिस्ट बना ली है और उसी प्लेलिस्ट में सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
4: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
4: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
4: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
6: तो दोस्तों, वैसे आज की इस महफिल में एक चीज तो तय है, आप ना हमें सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आपका ये साथ हमारे साथ बना रहता है। सामने कोई चेहरा नहीं, फिर भी बातचीत जैसी महसूस

होती है। और इसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अपना अगला संदेश। दोस्तों, संदेशों की भीड़ में अगला संदेश जो हमें मिला है वो मिला है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा जी का दतरंगी से। अगला संदेश हमें मिला है श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजनाया बॉर्ड लड्डू जी का हमें संदेश मिला है। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, और रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का जी हमें संदेश भेज रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा जी संदेश भेज रहे हैं। अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषी अश्रिका, आरवी जंगेल, अंजलि जंगेल, तमदा ग्राम सुकरी कला छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश मिला है दिग्दर्शन जी और कविता गौर जी का, मेरठ कैंट शोभापुर से हमें संदेश मिला है। मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतास बिहार से, सोनम सिंह, अनामिका सिंह जी हमें समस्तीपुर बिहार से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो हमें मिला है उड़ी सेक्टर 5 से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और पोतरे गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह जी गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मोहाली पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है हमें महाराष्ट्र जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी से, रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई व पूरा संघई परिवार हमें संदेश भेज रहा है। रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान जी हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से संदेश भेज रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, तनवीर, रक्ष, सोनी, मोनी, ऋतिक, रामदूलापुर उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से हमें संदेश भेज रहे हैं। जगदीश जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इंद्रप्रस्थ दिल्ली से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। और अगला जो संदेश हमें मिला है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी का मिला है। भारत भूषण जी हमें संदेश भेज रहे हैं। जाकिर मुलानी जी हमें संदेश भेज रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों के संदेशों की फरमाइश पर और आप ही के दिए हुए गानों की लिस्ट प्लेलिस्ट में से सुनाते हैं आपको ये एक और प्यारा सा गीत।

और चलते हैं अगले संदेशों की तरफ जो हमें मिला है गंज टुंडवारा से। शमसुल कुमार राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है वो मिला है हमें स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमें इन्होंने संदेश भेजा है। आपका संदेश हमें मिलता है और हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं हमें जो संदेश मिला है ये मिला है डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से। हमें इन्होंने संदेश भेजा है डोल राणा जी ने। अगला जो संदेश हमें मिला है अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा जी हरियाणा से हमें संदेश भेज रहे हैं। अनिल मोहन, उषा मोहन, टेल्लू नायक, मधु नायक जी हमें पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें संदेश भेज रहे हैं। और पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से हमें ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहान जी भी हमें, हरदीप संदीप जी मक्कड़ जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी अस्तुपुरा जिला मऊ से हमें संदेश भेज रहे हैं। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली

वह रिजवाना परवीन जी हमें संदेश भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी जी, सिमरन मुखी जी हमें शांति नगर सोनीपत से हमें संदेश भेज रही हैं। कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, गुलाब दास मानिकपुरी, लेवाई छत्तीसगढ़ से संदेश भेज रहे हैं। और नूतन संदीप गोगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जग्गी दुआ जी राम राम के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन संदीप जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। और इसी कड़ी में लेते हैं और बहुत ढेर सारे संदेश जो हमें आपके मिले हैं। अनिल मोहन जी, उषा मोहन, टिल्लू नायक जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। सो दोस्तों, आपकी फरमाइश के हिसाब से और प्लेलिस्ट में जो गीत आपने हमें दिए हैं उसके हिसाब से सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चला और हमारी मुलाकात अपने आखिरी हिस्से में आ पहुंची है। तो आज के दिन में अपना वो छोटा सा अच्छा पल जरूर ढूंढेगा और हमारी तरफ से उस पल के नाम एक आखिरी गीत। और इसी गीत के साथ आज की आपकी पसंद में मैं दुर्गेश सरगुट आपसे इजाजत लेती हूँ, लेकिन अगली बार मिले तो एक काम जरूर कीजिएगा, अपनी पसंद का कोई एक गीत मन में तैयार रखिएगा, क्योंकि हो सकता है अगली बार सवाल आपका हो और जवाब कोई गीत। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेडियो से दोस्ती बनाए रखिए। बने रहिए इस गीत के साथ, आप सुनते रहिए कार्यक्रम आपकी पसंद का ये

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे राष्ट्रीय समुद्री हितों और नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और सेनाध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेना के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की फ्रेम्स 2026 की शुरुआत आज मुंबई में होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष का विषय है इंडियाज मीडिया मूवमेंट और क्रिएटिंग वैल्यू का निर्माण।
1: केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। फिक्की फ्रेम्स के अम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र में फिक्की फ्रेम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाएगा, जो फिक्की के पूर्व अध्यक्ष और जियो स्टार के वाइस चेयरमैन उदय शंकर को दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारत की स्क्रीन अर्थव्यवस्था, सिनेमा, डिजिटल क्रिएटर्स, खेलों में दर्शक अनुभव, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कॉपीराइट सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अन्वेषण निदेशक ओम प्रकाश सिन्हा ने कहा है कि E20 पेट्रोल आयात को काफी हद तक कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद कर सकता है। श्री सिन्हा ने अहमदाबाद में ONGC जलाशय अध्ययन संस्थान में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2027 के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसाइटी के दुर्गा पूजा से पहले के कार्यक्रम में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामले में कोलकाता में 15 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। ये छापेमारी धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की जा रही है। निदेशालय के अनुसार मास आर्ट ने खुद को यूनेस्को द्वारा प्रायोजित संस्था बताकर लोगों से फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में

0: पैसा इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया। पूर्व मंत्री इंदिरा नील सेन और उनके करीबी सहयोगी सहित कई लोग और संस्थाएं इस मामले से जुड़ी हुई हैं। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल, डिप्टी कमांडिंग जनरल USARPAC ने कल जनरल धीरज सेठ COAS से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की और कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी बातचीत की। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ाने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। एशियाई खेलों में भारतीय तीरंदाज धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहोद अनिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों की रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला रिकर्व के प्री क्वार्टर फाइनल में कुमकुम मोहोद अनिल ने बांग्लादेश की साइमा सलाहउद्दीन को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टुकड़ी ने कल महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में रजत पदक जीता। शूटिंग में देश के पदकों की संख्या 13 हो गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Supreme Court has directed the Centre and the Central Board of Secondary Education CBSE to consider extending the exemption from the three-language framework to the current Class 6 students as well. A three-judge bench headed by Chief Justice of India Justice Surya Kant asked Solicitor General Tushar Mehta and Additional Solicitor General Aishwarya Bhatti, appearing for the Centre and the CBSE, to grant the same relaxation granted to students of Class 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. The Enforcement Directorate, ED, is conducting searches at 15 premises in Kolkata, West Bengal, in connection with alleged financial irregularities committed by Mass Art Mahanirban Road Mass Art Society in running its Durga Puja preview shows. The searches and seizures have been conducted under Prevention of Money Laundering Act 2002. According to ED, Mass Art allegedly collected huge sums from the public at large by falsely claiming to be UNESCO-sponsored entity, and the funds collected were utilized for personal gains. Various individuals and entities, including former minister Indra Nil Sen and his close associates, have been associated in this case. Union Environment, Forest and Climate Change Minister Bhupendra Yadav chaired a high-level meeting with Delhi Chief Minister Rekha Gupta to review the Air Pollution Mitigation Action Plan in the national capital. The meeting held yesterday reviewed the measures already undertaken, progress achieved on the ground and additional interventions required before and during the winter session. Under the action plan, no PUCC, no fuel will be implemented at all automatic number plate recognition-enabled fuel stations through awareness and enforcement. There will be a complete ban on dust-generating demolition activity and outdoor civil construction activity between 1st of November and 31st of January. The winter protocol will include restrictions on polluting vehicles, higher parking charges, staggered office timings and work-from-home arrangements. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. The US will not charge any tariff on certain special

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमश्री के कार्यक्रम में अनुजा झा का सितार वादन, राग है मियां की तोड़ी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुरमश्री के कार्यक्रम में अनुजा झा का बजाया सितार वादन, राग था मियां की तोड़ी। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। जापान में एशियाई खेलों में नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किया। भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चीन पहले और कुवैत तीसरे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत कुल 47 पदकों के साथ 11वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ADGPI पर पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी। अमेरिकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा हालात पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सऊदी अरब भारत का भरोसेमंद और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। उन्होंने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, संस्कृति और पारस्परिक आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने दोहा में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 2026 वार्षिक बैठक के दौरान सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान से मुलाकात की। श्री जदान ने भारत के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन और बेहतर निवेश माहौल के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाई दी। वित्त मंत्रालय के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत के सफल समापन का स्वागत भी किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य

घर आंगन। कुछ रिश्ते घर की चौखट पर मिलते हैं, कुछ रिश्ते बातों बातों में दिल तक उतर जाते हैं। कभी किसी हंसी से घर में उजाला हो जाता है, तो कभी कुछ छोटी सी बात देर तक सोचने पर मजबूर करती है। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच कुछ पल अपने लिए, अपनों के लिए और उन बातों के लिए निकालने पड़ते हैं जो मन को थोड़ा थाम लें, थोड़ा समझाएं और कभी चुपचाप मुस्कुरा दें। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं अपना और हमारा प्यारा प्रोग्राम घर आंगन, और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए आज फिर इसी अपनापन लिए सजाते हैं अपने और आपके बीच का यह छोटा सा आंगन, जहां बातें होंगी जिंदगी की, रिश्तों की, समाज की और उन एहसासों की जो हम सबको कहीं ना कहीं छू जाते हैं, जोड़ जाते हैं।

फिल्म जवानी दीवानी, आवाज किशोर कुमार के साथ आशा भोसले। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम की, जो हमने की थी इस प्यारे से गीत के साथ। दोस्तों, आज है 29 सितंबर और आज एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है।

हृदय महासंघ के अनुसार 2026 की मुहिम का जो संदेश है वो है डोंट मिस अ बीट। जी हाँ, यानी दिल की धड़कन और उससे जुड़े संकेतों को नजरअंदाज ना करें। हृदय रोग कई बार बिना किसी साफ चेतावनी के भी सामने आ सकते हैं दोस्तों, और ना जो उच्च रक्तचाप है वो भी एक ऐसा ही जोखिम है जिसकी शुरुआती लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते। इसलिए ना नियमित जांच, संतुलित खान पान, रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि और ना धूम्रपान से दूरी, ये सारी चीजें हमारे दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ अपनी आदतें बदलने की नहीं है। सीने में दर्द होना, सांस फूलना, अचानक बहुत कमजोरी या असामान्य थकान जैसे अगर कोई संकेत आपको मिले ना, तो उसे कभी भी हल्के में नहीं लें। खासकर महिलाओं में हृदय रोग के लक्षण हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो ऐसे में आपको बहुत जरूरत है अपने बारे में पूरी तरह से सारी जानकारी रखने की, मेडिकली अपने आप को पूरी तरह से तंदुरुस्त रखने की और बार बार अपनी जांच कराते रहने की। तो इस विश्व हृदय दिवस पर अपने दिल की सुनिए। जी हाँ, थोड़ा चलिए, खान पान पर ध्यान दीजिए, अपनी जांच कराइए और किसी भी चेतावनी को, मतलब अगर आपका शरीर किसी भी तरह की सामान्य तरीके की बातों से अलग हटके कुछ और कर रहा है, तो उन चेतावनियों को, उन संकेतों को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि दिल की सेहत का ख्याल रखना किसी एक दिन का काम नहीं, रोज की छोटी छोटी आदतों से जुड़ा ये एक फैसला होता है। क्योंकि दिल की धड़कन सिर्फ जिंदगी की आवाज नहीं, ये हमें याद दिलाती है कि अपनी सेहत को भी हमें थोड़ा वक्त देना बहुत जरूरी है।

फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना, आवाज किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की। आपके दिल की बातें भी हम जान पाते हैं किसके जरिए, जी हाँ आपकी ईमेल्स के जरिए। तो आप हमें आपकी ईमेल जिसमें किसी भी तरह की बात हो सकती है तो आप हमें कहाँ भेजते हैं, जी हाँ आप हमें भेजते हैं fmgoldga@gmail.com। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले एक बात आपसे जरूर करना चाहूंगी। अच्छा दोस्तों, आज हम विश्व हृदय दिवस मना रहे हैं, तो आज ही के दिन हम अपने दिल की इतनी ज्यादा क्यों सुनेंगे, हर दिन हमें अपने सेहत के बारे में भी तो सुनना चाहिए ना। तो जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे थे कि स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आप लोग भी अपनी तंदुरुस्ती के लिए क्या करते हैं? आप पैदल चलते हैं, खान पान में सावधानी बरतते हैं, या फिर आप किसी भी तरह की कसरत करते हैं? क्या करते हैं आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? चलिए आज हम इस बारे में आपसे बात करते हैं। तो आप जानते हैं आपको हमसे कहाँ जुड़ना है, fmgoldga@gmail.com। अच्छा दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसी सहेली हो जो आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हो, जिसे आप अपने मन की उलझन समझा सकें, जो किसी मुश्किल काम को आसान बनाने में आपकी मदद करे और जरूरत पड़ने पर नए नए रास्ते भी सुझाए। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, हाय काश ऐसी कोई सहेली हो या फिर कोई ऐसा दोस्त हो, कितना अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन है ना एक ऐसी सहेली, आप जानते हैं कौन है, वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ हद तक ना ये हमारी एक ऐसी डिजिटल सहेली बन सकती है। अब देखिए, सुबह की दिनचर्या बनानी हो, किसी विषय को आसान भाषा में समझना हो, बच्चों के लिए पढ़ाई की सामग्री तैयार करनी हो, कोई मैसेज लिखना हो, या किसी काम के लिए नए विचार चाहिए हो, AI आपका साथ दे सकती है और देती भी है, है ना। और इसकी खासियत यह है कि आपको ना इससे झिझकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप बिंदास कुछ भी बात आप इनसे कर सकते हैं। एक ही सवाल बार बार पूछना हो या किसी बात को और आसान तरीके से समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। यही बात सुनकर उसी हिसाब से जो हम आपकी AI है वो उसी हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करती है। लेकिन एक अच्छी सहेली की तरह इसका साथ भी समझदारी से लेना जरूरी है। जी हाँ, अब देखिए, बहुत बार ये होता है कि जो हमारी सहेली होगी या हमारा दोस्त होगा वो बहुत बार ना हमारी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करते हैं, और वो हमारे मूड के हिसाब से भी बहुत बार हमारे साथ चलने की कोशिश करते हैं। और ये बात बहुत बार AI के साथ भी आपने देखी होगी, आप उन्हें जो भी बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, वो घूम फिर कर आपकी बातों में ही आपके साथ उस बात को समर्थन करते हैं या आपकी बातों को मानते हैं और उसी हिसाब से अपनी सारी चीजों को बदल देती हैं। लेकिन आपको समझदारी दिखानी जरूरी है। AI से मिली हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि जानकारी की जो पुष्टि है ना वो विश्वसनीय स्रोतों से आप जरूर करें, और अपनी निजी या बेहद संवेदनशील जानकारी साझा करने से हमेशा बचें। तो AI को आप अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली नहीं, बल्कि काम आसान करने वाली एक डिजिटल सहेली बनाइए। आखिर अच्छी संगत तो वही है ना जो हमारा हाथ थामे, लेकिन कदम हमारे अपने साथ, हमारे कदम हमारे हिसाब से अपने साथ रहें और हम उसी हिसाब से चलें, है ना। देखिए, बहुत बार ये भी होता है कि सहेली को वो बातें भी अच्छी लगती हैं जो हमारे लिए बुरी हो सकती हैं, या वो बुरी बात को भी बहुत बार छुपा जाती है। लेकिन नहीं, एक अच्छा दोस्त वही है जो आपको सच्चाई बताए और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए।

फिल्म आए दिन बहार के इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। देखिए हम आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें हमारे सवाल के जवाब में हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हैं हमारे साथ नवीन भाटिया जी, ये मोतीनगर से लिखते हैं कि वो मॉर्निंग वॉक करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर ये हमारे साथ हैं महेश अग्रवाल जी बहादुरगढ़ हरियाणा से लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार, हमारी सेहत का राज है एफएम गोल्ड पर गाने सुनना और गाने सुनकर अपना काम करते रहना, एक्टिविटी ज़्यादा करता हूँ आराम कम करता हूँ। अभी आपने एआई के विषय में बताया है तो अच्छा है तो अच्छा, लेकिन हमने कभी अपना दोस्त नहीं बनाया अच्छा, और हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं महेश जी, आपने इसे अभी तक अपना दोस्त नहीं बनाया, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको कभी ज़रूरत लगे तो आप पता कर सकते हैं कि एआई आपका किस तरह से मददगार और अच्छा दोस्त बन सकता है। फिर हमारे साथ हैं उमेश कुमार ख्याला से लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, मैं तो पैदल चलता हूँ और खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, प्रोग्राम और गाने एआईआर साथ साथ और साथ साथ जानकारी भी हमारे प्रोग्राम में इनको मिलती है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लग रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे ही हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल है कि आप अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। आइए अब एक ऐसे बारे में बात करते हैं जिससे हम अपने परिवार में हमेशा कहीं ना कहीं इस बात से दो चार होते रहते हैं। देखिए क्योंकि एक ही घर में बड़े होते हैं बच्चे, कभी अगर अकेला हो तो कोई बात नहीं, पर एक से ज़्यादा होते हैं तो कभी एक दूसरे के बिना उनका मन नहीं लगता, तो कभी छोटी सी बात पर ऐसे लड़ते हैं जैसे दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो गई हो। और सच में दोस्तों कभी खिलौनों के लिए झगड़ते हैं, कभी माँ की गोद में पहले बैठने की होड़ होती है तो कभी इस बात की शिकायत कि मुझे कम प्यार मिला है। तो भाई बहनों के बीच ना ऐसी नोकझोंक और थोड़ी बहुत जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन कई बार यही छोटी सी होड़ जो होती है ना वो धीरे धीरे मन में तुलना जलन या फिर ना हीन भावना पैदा कर सकती है। ऐसे में जो माता पिता हैं उनकी भूमिका जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। अक्सर माता पिता अनजाने में बच्चों की तुलना कर बैठते हैं, देखो तुम्हारी बहन ने कितना अच्छा किया या भाई से कुछ सीखो, ऐसी जो बातें होती हैं सहज तो लगती हैं लेकिन बच्चे इन्हें दिल पर ले लेते हैं बहुत बार। तो ऐसे में ना हर बच्चे की अपनी खूबी और अपनी गति और अपनी पहचान होती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि हम सभी किसी एक जैसे नहीं हैं, सभी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए तुलना करने के बजाय उसके प्रयास की सराहना करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जब दोनों बच्चों के बीच में अगर झगड़ा हो तो आप ना बिल्कुल किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराने के बजाय दोनों की बात सुनिए। और फिर बराबरी का मतलब यह नहीं कि दोनों को हर चीज़ बिल्कुल एक जैसी मिले, असली बराबरी तो यह है कि हर बच्चे को उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्यार समय और भरोसा मिले, है ना। और क्योंकि भाई बहन आज भले एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करें लेकिन कल यही रिश्ता उनके जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है और बनता है, और उस रिश्ते की नींव बचपन में ही पड़ती है। तो जिम्मेदारी हमारी होती है, माता पिता की होती है कि हम अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी में उनका साथ एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें हर खुशी हर गम एक दूसरे के साथ बांटना है, जिंदगी को रंगीन बनाना है।

सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार, सपन चक्रवर्ती, भूपेंदर और राहुल देव बर्मन की आवाज में ये गीत। देखिए, हमारे सवाल का जवाब हमें हमारे एक और श्रोता ने भेजा है। आप हैं गौरी शंकर जी, नांगलोई से लिखते हैं। सोनाली बेटा राम राम। राम राम गौरी शंकर जी। आप लिखते हैं, उम्र हो गई 68 साल, मैं करीब 18 साल से रोजाना 1 घंटा योग करता हूँ, फिर भी 1.5 साल पहले घबराहट सी हो गई थी। डॉक्टर ने एक स्टंट डाल दिया दिल में, लेकिन योग मैं अभी भी नहीं छोड़ता, रोजाना करता हूँ। बहुत तसल्ली मिलती है, मन भी खुश होता है। बाकी आपका प्रोग्राम भी योग का काम करता है, यानी खुशी मिलती है। वह हमें जानकर भी बहुत अच्छा लगा गौरी शंकर जी कि आपका हमारे प्रोग्राम सुनकर अच्छा लगता है। हमेशा बने रहिए हमारे साथ। अच्छा दोस्तों, जरा अपनी छत की तरफ देखिए। अरे वजह है, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखिए, जरा अपनी छत की तरफ देखिए। दिन भर वहां पड़ने वाली धूप ना यूं ही चली जाती है, मानते हैं ना? लेकिन अब यही धूप आपके घर की बिजली बनाने में काम आ सकती है और बिजली के खर्च को कम करने में भी मदद कर सकती है। कैसे, बताती हूँ। देखिए, दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए नया पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है, है ना? और इस योजना में दिल्ली के ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उनके लिए 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम बिना शुरुआती भुगतान के लगाने की व्यवस्था की गई है, बशर्ते योजना की पात्रता और तकनीकी शर्तें पूरी होती हों। हाँ, अब इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 रुपये की सहायता है। दिल्ली सरकार भी अधिकतम 78,000 रुपये तक की पूंजीगत सहायता दे रही है, यानी दोनों को मिलाकर अधिकतम सहायता आपके पास कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1,56,000, है ना? और शायद यही सबसे राहत वाली बात है कि जो सोलर संयंत्र है उसको लगाने के बाद जो सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है वो है कि आप इसको लगाने के बाद में 5 साल तक उसकी सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी जो उसका अधिकृत विक्रेता होगा ना, उसकी

होगी, यानी इस अवधि में इसके लिए जो उपभोक्ता है उस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं डाला जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ना दोस्तों, तो दिल्ली सरकार की जो आधिकारिक सोलर पोर्टल है जो है solar.delhi.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप पंजीकरण कर सकते हैं। पोर्टल पर अपने बिजली कनेक्शन से जुड़ी जानकारी और मोबाइल सत्यापन के जरिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। आवेदन जो है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर हो रहे हैं, ये याद रखिएगा। हाँ, फिलहाल पोर्टल के मुताबिक इस चरण में पहले 2,20,000 पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिया जाना है और आवेदन की अंतिम तारीख जो है वो है 28 फरवरी 2027। तो आपके पास वक्त है, लेकिन बहुत वक्त नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों, अगली बार जब धूप आपकी छत पर उतरे ना, जैसे आज भी उतरी है, तो शायद उसे सिर्फ गर्मी की वजह ना समझिए, हो सकता है वही धूप आपके घर की बिजली का एक हिस्सा भी बना रही हो।

फिल्म दिल ने फिर याद किया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे इस गीत को। अब देखिए हमारे साथ हमारे एक और नियमित श्रोता जुड़ गए हैं, ये है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, कहाँ से, शांतिनगर सोनीपत से लिख रहे हैं। आदरणीय सोनाली जी स्वस्थ सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन। सुरीली वाणी, सुंदर बातें, सदाबहार गीत, सुहाना कार्यक्रम, सबसे बड़ी बधाई, शुक्रिया। और वो लिख रहे हैं कि बहुत अच्छे उन्होंने कुछ कोट्स लिखे हैं। देखिए, सादा खाओ स्वस्थ हो जाओ, पानी पियो स्वच्छ, सदा रहो।

स्वस्थ, क्यों क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बनी वाणी। वाह वाह क्या बात है, बिजी रहो इजी रहो, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया इतनी सारी प्यारी प्यारी बातों के लिए सुदर्शन जी। और आपकी इन्हीं प्यारी और प्रेरक बातों ने हमें याद दिलाया कि हम आपके साथ एक ऐसी प्रेरक शख्सियत की बातें साझा करना चाहती हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की। क्योंकि कभी कभी एक इंसान का काम सिर्फ इलाज नहीं करता, पूरी सोच बदल देता है। और डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 1945 में लेह में जन्मी डॉक्टर लैंडोल ने चिकित्सा की पढ़ाई श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से की और स्त्री रोग एवं प्रसूति में विशेषज्ञता हासिल की। वर्ष 1989 में लेह लौटकर उन्होंने लद्दाख की पहली महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम शुरू किया। उस दौर में ना लद्दाख की महिलाओं तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचना आसान नहीं था, तो उन्होंने अस्पताल के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में जाकर महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां देनी शुरू की। सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका काम बदस्तूर जारी रहा। और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान को देखते हुए पता है उन्हें 2006 में पद्मश्री और फिर 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सेरिंग लैंडोल की कहानी यही कहती है कि बदलाव हमेशा बड़ी साधनों से नहीं होते दोस्तों, कभी कभी एक समर्पित इंसान और उसका काम ही पूरे समाज को एक नई राह देता है।

फिल्म ममता में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अच्छा दोस्तों, कभी आपने सोचा है हमारी रसोई से रोज कितना खाना बिना खाए ही कूड़ेदान में चला जाता है? कभी ज्यादा बन गया

0: कभी सब्जी खराब हो गई, कभी फ्रिज में रखा खाना याद ही नहीं रहा। छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर खाने की बड़ी बर्बादी बन जाती हैं। हर साल 29 सितंबर को खाद्य हानि और अपव्यय के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसी बात के मद्देनजर मनाया जाता है। 2026 की जो थीम है वो है खाद्य हानि और अपव्यय कम करने की परिवर्तनकारी क्षमता। अब इसका सीधा संदेश यही है कि भोजन की बर्बादी कम करना हम सब की जिम्मेदारी है। तो शुरुआत अपने घर से कैसे करें? सबसे पहले जितनी जरूरत हो उतने ही खरीदारी करें। बाजार जाने से पहले रसोई और फ्रिज में मौजूद सामान देख लें और उसी हिसाब से सूची बनाएं। दूसरा, जरूरत से ज्यादा खाना ना बनाएं, फिर भी अगर बच जाए तो उसे तुरंत सही तरीके से रख दें। अगले दिन उसी खाने को थोड़ा नया रूप देकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बची हुई सब्जी से पराठा बना लिया, दाल से दाल का चीला या चावल से पुलाव बनाया जा सकता है ना। और तीसरा, फ्रिज में सामान इस तरह रखें कि पुरानी चीजें पीछे छुप कर न रह जाए। जो सामान पहले खरीदा है उसे पहले इस्तेमाल करें, नया सामान पीछे और पुराना सामने रखें ताकि कोई चीज भूल कर खराब ना हो जाए। एक छोटी सी आदत और डाल लें, थाली उतना ही लें जितना खा सकें। मन हो तो बाद में और ले सकते हैं, लेकिन थाली में बचा खाना सीधे कूड़ेदान में ना जाए, इससे आप जरूर बचें। याद रखिए, अन्न को बचाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, उसके पीछे किसान की मेहनत, पानी, मिट्टी, समय और बहुत से लोगों का श्रम जुड़ा है। तो इस बार संकल्प सिर्फ इतना ही, थाली में उतना ही आए जितना खाया जाए।
1: समझो और समझाओ थोड़ी।

दोस्तों आप सुन रहे हैं फिल्म ज्वारभाटा में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। और अब बस घड़ी मुझे और मौका नहीं देती आपके साथ बातों को जारी रखने का, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की फ्रेम्स 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, ये पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defense, security, trade, investment, energy, technology, healthcare, and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor Ambassador Pietro Lazzeri and discussed investment opportunities in India including through NIIF and GIFT IFSC. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 146,000 kilometers in March this year from over 91,000 kilometers in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals

श्रोताओं, पवित्र पापी राजेंद्र भाटिया द्वारा निर्देशित 1970 की एक भारतीय हिंदी भाषा की ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में बलराज साहनी पन्नालाल के किरदार में है, परीक्षित साहनी केदारनाथ के किरदार में है, तनुजा वीणा की भूमिका निभा रही हैं और नीतू सिंह विद्या यानी बेबी सोनिया के किरदार में शामिल हैं। ये फिल्म प्रसिद्ध लेखक नानक सिंह के एक पंजाबी उपन्यास पर आधारित है।

बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा को जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक

श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म पवित्र पापी की। आपको बता दें, प्रेम धवन ने इस फिल्म के लिए गीत और संगीत दोनों की रचना की है। इस फिल्म का गीत तेरी दुनिया से किशोर कुमार द्वारा गाया गया है। किशोर कुमार के निधन के समय ये गीत रेडियो और टेलीविजन चैनलों पर बजाया गया था। और रफ़ी साहब का एक अन्य गीत अल्लाह ही अल्लाह कर प्यारे हरियाणा के एक जिले जिंद में स्थित रानी तालाब नामक एक प्रसिद्ध स्थान पर फिल्माया गया था।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर, बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
3: RBI कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस फिल्म की कहानी केदारनाथ के इर्द गिर्द घूमती है, जो पन्ना लाल नामक व्यक्ति की जगह घड़ी मरम्मत की दुकान में नियुक्त होता है, जिसके कारण पन्ना लाल केदारनाथ को कोसता है और कहता है कि उसी के कारण उसका परिवार कंगाल हो गया है। पन्ना लाल केदारनाथ को पत्र लिखकर कहता है, तुम्हारे कर्मों ने मुझे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया है, क्योंकि ना तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं, ना तो अपनी बेटियों की शादी। इसके बाद पन्ना लाल अपनी पत्नी को बताता है कि वो पुराने मित्र से मिलने और धन जुटाने शहर जा रहा है और वहां से चला जाता है, फिर कई दिनों तक वापस नहीं आता। केदारनाथ को जब ये सब देखकर बहुत दुख होता है और वो पन्ना लाल की पत्नी माया को और दो बेटियों वीणा और विद्या की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो उनके घर में एक कमरा किराए पर लेता है और पन्ना लाल की पत्नी माया को पत्र लिखता है, जो पन्ना लाल के भेजे गए पत्रों की तरह माया तक पहुंचते हैं और इन पत्रों में पैसे भी होते हैं। इसी दौरान केदारनाथ को पन्ना लाल की बड़ी बेटी वीणा से प्रेम हो जाता है, पर वीणा को ये एहसास नहीं होता। केदारनाथ को ये बाद में पता चलता है कि वीणा की शादी पहले से तय थी और उसकी शादी में पैसे कम पड़ने की वजह से केदारनाथ अपने मालिक की दुकान से पैसे चुरा कर माया को दे देता है। बाद में जब पता चलता है कि वीणा की ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, तो वो उसे सुलझा कर वहां से चला जाता है। तो श्रोताओं, ये थे फिल्म पापी पवित्र की कहानी।

श्रोताओं, ये फिल्म भावनाओं, त्याग और इंसानी मजबूरियों के बीच उलझे शख्स की कहानी है जो झूठ और चोरी जैसे पाप तो करता है पर उसकी नीयत बिल्कुल निस्वार्थ और साफ रहती है। तभी इस फिल्म का टाइटल दिया गया है पवित्र पापी।

0: बिजली का खंबा ना वो मोटा ना वो।
1: इस अंतिम गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।
0: झूठी चल झूठी, कब देखा तूने? देखा हाँ देखा, उसे न देखा पर।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत दे चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। भारत ते साउदी अरब ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा ते टेक्नोलॉजी समेत वख-वख खेत्रां विच सहयोग दी समीक्षा कीती। चोण कमिशन ने अज 11 राज्यसभा सीटां लई 2 साला चोणां वास्ते नोटिफिकेशन जारी कर दित्ता है। शहरी हवाबाजी मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनने वाल काम कर रहा है। तीन निशानेबाजी च नीरू टांडा ने एशियाई खेडा च औरतों के ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा है। हुण खबरां विस्थार नाल। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दे चीन नाल संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। न्यूयॉर्क विच एशिया सोसायटी वल्लों कराए गए एक समागम विच बोलदियां डॉ जयशंकर ने कहा कि सरहदी रुकावट हल होण तों बाद संबंधां विच सुधार होना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय तो चीन नूं दसदा आ रहा है कि दुवल्ले संबंधां विच गिरावट किसी भी देश की मदद नहीं करती ते लंबी रुकावट किसी भी देश के हितां नूं पूरा नहीं करती। भारत अफ्रीका संबंधां ते व्यापार समझौते दी गलबात बारे बोलदिआं विदेश मंत्री ने कहा कि दोवें देश एक अजिही स्थिति विच पहुंच गए ने जिथे व्यापार समझौते ते इक समझ ए। उन्हां दस्सिआ कि भारत छोटे उत्पादकां, छोटे खेतीबाड़ी उत्पादकां ते छोटे कारखानियां दा समाज ए। उन्हां अगे कहा कि भारत ते अमरीका विचकार प्रति व्यक्ति भाड़े तों इलावा उत्पादन दी प्रक्रिया प्रकिरति अते समाज दी प्रकिरति बहुत वखरी ए। उन्हां कहा कि व्यापारक गलबात लई इस नूं देखण लई कुछ हद तक धीरज अते वेरवे दी लोड़ हुंदी ए। उन्होंने कहा कि टैरिफ ने पिछले साल संबंधा विच एक रुकावट पैदा की थी। डॉ जयशंकर ने दहशतगर्दी के मुद्दे से भी चलना पाया, कहा कि यह भारत लिए एक खास महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस बारे अमरीका वल्लों लोड़ींदी समझ जां हमदर्दी नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन ते ईरान खाड़ी टकराव दा आलमी दक्खण दी आर्थिकतावां ते विनाशकारी प्रभाव पे। उन्होंने ऊर्जा स्थिति बारे चिंता प्रगट करदे कहा कि बाजार बेहद तंग है। उन्होंने कहा कि जेकर लोग इस नाल राजनीति करदे ने तां इह बाजार दियां पेचीदगियां नूं वधाउंदा है अते अजिहे समें कीमतां नूं वधाउंदा है जदों लोकां नूं कीमतां नूं स्थिर करना चाहीदा है। भारत अते साउदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, सेहत संभाल अते सिक्ख्या दे खेत्रां विच सहयोग दी समीक्षा कीती है। दोहा विच एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक दी सालाना मीटिंग दे मौके ते साउदी अरब दे खजाना मंत्री मोहम्मद अल जदान नाल मुलाकात विच खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने साउदी अरब नूं इक भरोसेमंद ते रणनीतिक भाईवाल दस्सिया। उन्होंने भारत साउदी अरब दुवल्ले निवेश समझौते ते गलबात दे सफल सिट्टे दा स्वागत कीता जिसका उद्देश इक होर मजबूत अते भरोसेमंद निवेश सिलसिला प्रदान करना है। श्रीमती सीतारमन ने भारत विच निवेश दे मौकियां ते चर्चा करन लई स्विट्जरलैंड दे एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक दे गवर्नर पीटरो लाजेरी नाल मुलाकात कीती। उन्होंने हर तो बाद दे यतना अते दवल्ले प्रोजेक्टां ते चर्चा करन लई नेपाल दे खजाना मंत्री स्वर्णिम बागले नाल मुलाकात कीती। उन्होंने यूपीआई एनपीआई डिजिटल भुगतान एकीकरण दे जल्दी लागू करन ते भी चर्चा कीती। चोण कमिशन ने अज 11 राज्यसभा सीटां लई 2 साला चोणां लई नोटिफिकेशन जारी कीता है। इस विच उत्तर प्रदेश दीआं 10 सीटां ते उत्तराखंड दी 1 सीट शामिल है। भाजपा आगू अते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी दे नेता राम गोपाल यादव, बसपा दे रामजी अते छे होर 25 नवंबर नूं अपना कार्यकाल पूरा कर रहे ने। उत्तराखंड तों नरेश मानसल भी 25 नवंबर नूं अपना कार्यकाल पूरा कर रहे ने। कमिशन ने पश्चिम बंगाल विच राज्यसभा दी 1 सीट ते जिमनी चोण लई नोटिफिकेशन भी जारी कीता है। ए सीट टीएमसी संसद मैंबर रुकमणी मलिक दे इस्तीफे कारण खाली हो गई सी। नामजदगी अज तो शुरू हो गई है ते 16 अक्तूबर नूं वोटिंग होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने आज नवी दिल्ली स्थित पार्टी सदर मुकाम विखे सूबा इंचार्जा और सह इंचार्जा की मीटिंग की प्रधानगी की। ए मीटिंग हाल ही विच कीतियां गईयां संगठनात्मक नियुक्तियां तो बाद पार्टी के सूबा इंचार्जा और सह इंचार्जा

पहली मीटिंग सी। मीटिंग विच सारे सूबा इंचार्जा ते सह इंचार्जा ने शिरकत की थी ते इस विच पार्टी दिया संगठनात्मक तरजीहां ते ध्यान केंद्रित किया गया। एक खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो साडा xhandle@eir.in जलंधर। शहरी हवाबाजी मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि भारत एक प्रमुख आलमी हवाबाजी केंद्र वजो उभर रहा है और दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाबाजी बाजार बनने वाल काम कर रहा है। आज नवी दिल्ली विच रूट्स एशिया 2027 ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिया श्री नायडू ने कहा कि भारत का टीचा 2047 तक मुसाफर की गिणती नूं मौजूदा करीब 24 करोड़ तो 6 गुणा वधा के 130 करोड़ करन दा है। मंत्री ने इस गल ते जोर दिता कि देश विच संचालित हवाई अड्डिया की गिणती 2014 विच 74 तो वध के वर्तमान 160 तो वध हो गई है। खेतरी संपर्क योजना उड़ान नूं उजागर करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर विच हवाई यात्रा नूं वधेरे पहुंचयोग उपलब्ध ते किफायती बनाया है। मंत्री ने कहा कि भारत अगले साल 16 मार्च तो नवी दिल्ली दे भारत मंडपम विखे रूट्स एशिया 2027 दे 23वें एडिशन की मेजबानी करेगा। यह 3 दिन का प्रोग्राम खेतर दीआं एयरलाइनां हवाई अड्डिआं सैर सपाटा अधिकारियां अते हवाबाजी हिस्सेदारां नूं नैटवर्क रणनीतियां विकसित करन अते एशिया प्रशांत विच भविख दे रूट विकास नूं यकीनी बनाउण लई प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। भारत अते अमरीका विचकार रक्षा सहयोग नूं होर मजबूत करन वाल इक महत्वपूर्ण कदम चुक्या गया। इस बारे ऐलान भारतीय फौज के अधिकारित xhandle@ADGPI ते एक पोस्ट विच कीता गया सी। ADGPI ने लिखा है कि भारत अमरीका दोस्ती नूं अगे वधाउणा USA RPAC दे डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने 28 सितंबर नूं जनरल तीरथ सेठ नाल मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत विच विकसित हो रही सुरक्षा स्थिति अते कई खेतरां विच आपसी रक्षा सहयोग नूं अगे वधाउण दे मौकियां ते चर्चा की थी। भारतीय समुद्री फौज की साल 2026 की दूजी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज नवी दिल्ली विच हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने दस्सिया कि इस 3 रोजा कॉन्फ्रेंस विच समुद्री फौज के सीनियर अधिकारी वख-वख खेतरां दे संचालन मुखी अते खेतरी कमांडर हिस्सा ले रहे ने। कॉन्फ्रेंस विच फौजी अते रणनीतिक पद्धर ते समुद्री फौज की संचालन तैयारी की व्यापक समीक्षा की जाएगी। पश्चिम बंगाल विच महानिर्वाण रोड मास आर्ट सोसायटी दे दुर्गा पूजा तो पहला दे समागम नाल संबंधित कथित माली बेनेमिया दे संबंध विच इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोलकाता दिया 15 थावां ते छापेमारी कर रहा है। ए छापे मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून 2002 तहत मारे जा रहे ने। डायरेक्टोरेट मुताबिक मास आर्ट ने यूनेस्को सहायता प्राप्त संगठन होने का दावा करके धोखाधड़ी नाल व्यक्तियों तो वड्डी रकम इकट्ठी की थी अते फंडा दी वरतों निजी लाभ लई की थी। आज विश्व दिल दिवस है। यह दिन हर साल 29 सितंबर नूं दिल दीआं बीमारियां उन्हां दी रोकथाम अते विश्वव्यापी प्रभाव बारे लोकां विच जागरूकता पैदा करन लई मनाया जांदा है। इस मौके केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्री JP नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि यह दिन लोकां नूं बीमारी दे लक्षणां नूं पछाणन सेहतमंद जीवन जांच अपनाउण जोखमां नूं घटाउण अते समय सिर डाक्टरी सहायता लैण दी याद दवाउंदा है। यूनेस्को की अस्थाई सूची विच भारत दीआं 5 नवीआं थावां ते इक लड़ी अते अंतरराष्ट्रीय तजवीज शामिल कीते गए ने। इस नाल भारत तो इन्हां थावां दी गिणती वध के 78 हो गई है। नवीआं शामिल कीतीआं गईआं थावां विच बाग गुफा चित्रां ते बोधी कंध चित्रकारी चंबल घाटी दे मंदर समूह गुप्तकाल दीआं उदयगिरी गुफावां अते गिनौरगढ़ दा कबायली विरसा शामिल ने। इस विच सत्याग्रह स्थल भी शामिल है जो कि भारत अते दफनी अफ्रीका नूं जोड़न वाली एक लड़ी अते अंतरराष्ट्रीय तजवीज है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच सभ्याचार ते सैर सपाटा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नवीआं थावां भारत दे विरसे दी असाधारण भिन्नता नूं दर्शाउंदियां ने। निशानेबाजी विच नीरू ठांडा ने जापान विच एशिया खेड़ा च औरतों के ट्रैप मुकाबले विच भारत लई पहला व्यक्तिगत सोने का तमगा जीत के इतिहास रचा है। नीरू एशियाई खेड़ा विच इस मुकाबले विच सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय औरत निशानेबाज बन गई है। उन्होंने 28 अंकों नाल एक नवा एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया। इस तों पहला अज औरतों के ट्रैप टीम मुकाबले विच भी नीरू ठांडा आशिमा अहलावत अते मनीषा कीर ने चांदी का तमगा जीतिया। उधर मुक्केबाजी विच नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम तो वध भार वर्ग विच कांसी का तमगा अपने नां कीता। परवीन हुड्डा औरतों के 65 किलोग्राम भार वर्ग अते अंकुश पंघाल मर्दा के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल विच पहुंच गए ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमगा जेतुआ नूं वधाई दित्ती है। आखिर च खास खबरां।
विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत के चीन संबंध पिछले साल नालों मौजूदा समय विच बेहतर ने। भारत और साउदी अरब ने रक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा तकनालोजी समेत वख-वख खेत्रों विच सहयोग की समीक्षा की। चोन कमीशन

0: ने 11 राज्यसभा सीटा ली 2 साल 14 मास से नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। शहरी हवाबाजी मंत्री के रामन नायडू ने कहा कि भारत दुनिया का तीजा सब तो वड्डा हवाई बाजार बनने वाल काम कर रहा है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन ताल्लुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन का जायजा लिया। इंतखाबी कमीशन ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने तारीख रकम की है। उन्होंने खवातीन के इन्फिरादी ट्रैप मुकाबले में पहला इन्फिरादी एशियन गेम्स सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ पिछले साल के मुकाबले ताल्लुकात आज बेहतर हुए हैं। एक तकरीब से खिताब करते हुए, जिसका अहतमाम न्यूयॉर्क एशिया सोसाइटी ने किया था, डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जब सरहद से मुतालिक तातुल को हल कर लिया गया तो ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि भारत चीन को एक लंबी मुद्दत से बता रहा है कि दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी से मुल्क को कोई मदद नहीं मिलती और देरीना तातुल से किसी भी मुल्क के मफादात पूरे नहीं होते। भारत अमरीका ताल्लुकात और तिजारती समझौते पर मुज़ाकरात के बारे में वजीर खारिजा ने कहा कि दोनों ममालिक एक ऐसी सूरत हाल पर पहुंच गए हैं जहां तिजारती मुआहदे पर मुफाहमत कायम हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने यह कहते हुए दहशतगर्दी के मामले को उजागर किया कि ये भारत के लिए एक अहम मामला है। उन्होंने रायजनी की कि अमरीका की तरफ से इस सिलसिले में कोई वाफर मुफाहमत या हमदर्दी का इजहार नहीं किया गया। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारुफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का मकसद मुसाफिरों की तादाद को, जो फिलहाल 24 करोड़ है, साल 2047 तक 6 गुना करके 130 करोड़ करना है। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि मुल्क में जिन हवाई अड्डों पर परवाजें चलाई जा रही हैं, उनकी तादाद साल 2014 में 74 थी और अब ये तादाद 166 से ज्यादा हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, हिफ्ज़ाने सेहत और तालीम के मैदानों में तआवुन का जायजा लिया है। सऊदी अरब के वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान के साथ एक मीटिंग के दौरान, जो दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग मुनक़िद की गई, वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने सऊदी अरब को भारत का एक भरोसेमंद और काबिल कद्र अहम शराकत दार करार दिया। दोनों वज़राए खजाना ने भारत सऊदी अरब दो तरफा सरमायाकारी समझौते के बारे में मुज़ाकरात की कामयाब तकमील का खैर मकदम किया। इस समझौते का मकसद सरमायाकारी के लिए एक मजबूतर और मजीद काबिल एतबार फ्रेमवर्क फराहम करना था। मोहतरमा सीतारमन ने स्विट्जरलैंड के AIIB गवर्नर सफीर पियत्रो लाजेरी से भी मुलाकात की और NIIF, नीज, गिफ्ट, IFSC समेत भारत में सरमायाकारी के मौकों पर बातचीत की। उन्होंने नेपाल के वजीर खजाना स्वर्णिम वागले से सैलाब की सूरत हाल से बहाली और दो तरफा प्रोजेक्टों पर बातचीत की। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। बीजेपी के रहनुमाओं और मरकजी वजरा हरदीप सिंह पुरी, BL वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, BSP के रामजी और 6 दीगर अरकान की मुद्दत कार 15 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए जिमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये सीट टीएमसी की रुकने पार्लियामेंट रुक्मिनी मलिक के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी। नामजदगी का अमल आज से शुरू हो गया है और 16 अक्टूबर को वोटिंग होगी। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग हालिया तंजीमी तकर्रियों के बाद पार्टी के रियासती इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस की पहली मीटिंग है। इस मीटिंग में सभी रियासतों के इंचार्जेस और शरीक इंचार्जेस ने शिरकत की और इसमें पार्टी की तंजीमी तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। इस कॉरिडोर से मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के दरमियान बिना किसी रेड लाइट के कनेक्टिविटी फराहम होगी, जिससे मशरकी और जनूबी दिल्ली के दरमियान कनेक्टिविटी बेहतर होगी। वजीर मौसूफ ने 1,900 करोड़ रुपए से जायद मालियत वाले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। इफ्तिताही तकरीब में दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता, अवामी कामकाज से मुतालिक महकमे के वजीर प्रवेश साहिब सिंह, शहरी तरक्की के वजीर आशीष सूद और दीगर वजरा ने शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि किस तरह माइकोव प्लेटफॉर्म के जरिए ये विजन हकीकत में तब्दील हुआ।
2: वक्फ से मुतालिक 2025 का तरमीमी बिल एक अहम कानूनी कदम है, जिसके जरिए हुकूमत ने सदियों पुराने तसव्वुरात को ख़त्म करने की कोशिश की। इस कानून के जरिए न सिर्फ वक्फ इमलाक का बेहतर बंदोबस्त किया जा सकेगा, बल्कि इमलाक में ख़वातीन की विरासत भी यकीनी हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ से मुतालिक बिल की मंजूरी और मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी एक यकसर तब्दीली वाला लम्हा था। दाऊदी बोरा समाज के साथ बातचीत में उन्होंने जिक्र किया कि इस कानून पर अमल मुस्लिम ख्वातीन और मुसलमानों के दीगर अकलियती तबकों के साथ जारी नाइंसाफी का जायजा लेने के बाद किया गया।
3: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां, तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आए, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबत है, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
2: उस्मान गनी ने, जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक वकील हैं, कहा कि वक्फ में की गई तरमीम से मुस्लिम खवातीन को इमलाक में उनका हक मौसूल हुआ है।
4: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस हैं। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकअप बोर्ड और वाकअप काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकअप बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकअप काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
2: कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
1: यूनेस्को की आरिजी फहरिस्त में भारत के 5 नए मकामात और सिलसिलावार नीस बैनुलअक्वामी नामजदगियों की तजावीज़ शामिल की गई हैं, जिसके बाद इस फहरिस्त में भारत के मकामात की तादाद बढ़कर 78 हो गई है। नए शामिल किए गए मकामात में बागकारों की बुधमत से मुतालिक दीवारों पर बनाई गई तस्वीर शामिल हैं। एशियन गेम्स 2026 में नीरू ढांडा ने खवातीन के इनफरादी मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय शूटर बनकर तारीख रकम की है। आशिमा अहलावत और मनीषा कीर के खवातीन के टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने के बाद भारत को ये सोने का तमगा हासिल हुआ है। बॉक्सिंग में प्रवीण हुडा और अंकुश पंघल ने आज निशियो में अपने मुकर्रा वजन के जुमरों में सोने का तमगा हासिल किया है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरहद से मुतालिक तातुल को हल करने से भारत चीन तालुकात को बेहतर बनाने में मदद मिली है। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि मुल्क आलमी हवाबाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हवाबाजी मार्केट बनने की समत काम कर रहा है। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में AIIB सालाना मीटिंग से अलग दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में

0: AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Tanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोविल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में

0: के देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है, खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सब। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है। महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत

0: ये मास्ट कर दिया गया है कि वाका बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाका काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
2: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी सूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
3: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूँ कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
2: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
4: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
2: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
5: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरे 366.3 मीटर अर्थात 800

किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस वक्त दिन के 2:30 हुए हैं और आप प्रस्तुत है आपका मनपसंदता सेगमेंट एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज के जो हमारे कलाकार हैं वो एक हास्य कलाकार हैं। हास्य कलाकार के तौर पर किए गए अद्भुत अभिनय के लिए वे जाने जाते हैं और जाने जाते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद अली की। 3 दशक लंबे चले उनके करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। महमूद अभिनेता और नृत्य कलाकार मुमताज अली के 9 बच्चों में से एक थे। तो शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की हमारे आज के कलाकार, और इनके बारे में करेंगे खूब सारी रोचक बातें। फिलहाल सुनते हैं उनकी ही फिल्म से ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे और साथियों की आवाजों में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो है महमूद। इस शो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और हम बात कर रहे हैं कलाकार महमूद की। महमूद का जन्म 29 सितंबर 1932 को मुंबई में हुआ था। अपने माता पिता की 8 में से दूसरे नंबर की संतान महमूद ने शुरुआत में बाल कलाकार के तौर पर कुछ फिल्मों में काम किया था। उनकी भाषा में हैदराबादी जुबां का पुट दर्शकों को बेहद पसंद आया, और उनकी संवाद अदायगी और अभिनय के लाजवाब अंदाज ने जल्द ही करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। महमूद ने जिस वक्त फिल्मों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तब भारतीय फिल्मों पर किशोर कुमार की कॉमेडी का जादू छाया था।

श्रोताओं, एक बार की बात है, लेखक मनमोहन मेलविले ने अपने एक लेख में महमूद और किशोर के दिलचस्प किस्से को बयां किया था। इसमें कहा गया है कि महमूद ने अपने करियर में सुनहरे दौर से गुजर रहे किशोर से अपनी किसी फिल्म में भूमिका देने की गुजारिश की थी, लेकिन महमूद की प्रतिभा से पूरी तरह वाकिफ किशोर ने कहा था कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को मौका कैसे दे सकते हैं जो भविष्य में उन्हें चुनौती दे सके। इस पर महमूद ने बड़े दिलचस्प जवाब में कहा कि एक दिन मैं भी बड़ा फिल्मकार बन जाऊंगा और आपको अपनी फिल्म में भूमिका दे दूंगा। महमूद अपनी बात के पक्के साबित हुए और आगे चलकर अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म पड़ोसन में किशोर को रोल दिया। इन दोनों महान कलाकारों की जुगलबंदी ने ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे विलक्षण कॉमेडी फिल्म बनकर उभरी।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो, और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊं?
1: आओ ना।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता, अभिनेता के तौर पर महमूद पहले छोटे मोटे काम करते थे, वाहन चलाने का काम भी करते थे। उस जमाने में मीना कुमारी को टेबल टेनिस सिखाने के लिए उन्हें नौकरी पर रखा गया था। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी की। शादी करने और पिता बनने के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनय करने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने 2 बीघा जमीन और प्यासा जैसी फिल्मों में छोटे पात्र निभाए। महमूद को फिल्मों में पहला बड़ा ब्रेक जो मिला वो फिल्म परवरिश में मिला था। इसमें उन्होंने फिल्म के नायक राज कपूर के भाई का किरदार निभाया था। बाद में उन्होंने फिल्म गुमनाम में एक दक्षिण भारतीय रसोइये का कालजाई किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने प्यार किए जा, प्यार ही प्यार, ससुराल, लव इन टोक्यो और जिद्दी जैसी हिट फिल्में दी। बाद में उन्होंने कुछ फिल्मों में मुख्य भूमिका भी निभाई, लेकिन दर्शकों ने उन्हें एक कॉमेडियन के तौर पर ज़्यादा पसंद किया।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेश को पढ़ते हैं। पहला संदेश जो आया है वो है प्रकाश रंभाड़े का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से। इनके साथ है भारती, जानवी, वैष्णवी और हर्षल। स्वर्ण सिंह हमें संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल और अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से। अगला संदेश है नितेश देवांगन का है, और इनके साथ है दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तेलब, पुनराम देवांगन, कृष्ण देवांगन और दिग्दर्शन गौर हमें संदेश भेज रहे हैं, के साथ है कविता गौर, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं मेरठ कैंट से। अगला जो संदेश है वो है गुरमीत सिंह का, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं साउथ एक्सटेंशन, इनके साथ है मीता, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमें लिखकर भेज रहे हैं। ताज मोहम्मद का संदेश आया है, इनके साथ है गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से। हरजिंदर शिंदा में संदेश भेज रहे हैं पंजाब से, इनके साथ है जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगर जो संदेश है वो आर कुमार का, वंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, इंद्रभान सिंह हमें लिखकर भेज रहे हैं। और धर्मेंद्र छीपा का अगला संदेश आया है भोपालगढ़ राजस्थान से, इनके साथ है कपिल छीपा, ईशान कीपा, पूजा परिहार, फारूक अली खान हमें संदेश भेज रहे हैं, अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, और इनके साथ हैं प्रमिला भावसर। अगला जो संदेश है तुलसी मस्कीन का, और इनके साथ है वीना मस्कीन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्कीन, मेघल मस्कीन, चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और जो अगला संदेश है रवि कुमार, राहुल रवि, इनके साथ है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशत सिंह राहुल, और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं अम्बाला हरियाणा से। अगला जो संदेश है राजकुमार डूडी का है, और इनके साथ हैं प्रमोद कुमार डूडी, गांव फरांसी, जिला हिसार से। साथ ही अगला संदेश है प्रकाश वर्मा का, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। संजय ढींगिया हमें संदेश भेज रहे हैं, के साथ है नमन ढींगिया, पा ढींगिया, बागपत, उत्तर प्रदेश से। मस्कीन हमें लिख कर भेज रहे हैं, और जो अगला संदेश है सुदर्शन मुखी का, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर, सोनीपत से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला, श्री गंगानगर राजस्थान से। और जो श्रोताओ, अगला संदेश है वो हम ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

श्रोताओ, 23 जुलाई 2004 में नींद में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। हिंदी सिनेमा में वे एक महान हास्य अभिनेता, गायक, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्हें आज भी हम उतना ही याद करते हैं जितना उन्हें पहले किया करते थे, और वो प्यार और वो याद आज भी बरकरार है।

शुदा हमारे पास संदेश आया है पंकज शर्मा का और इनके साथ हैं संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर, जगी दुआ जी। और जो अगला संदेश है वो है अमर रमेश कुमार खत्री का और इनके साथ है टेलर मास्टर कृष्णलाल खत्री, शंकर गुल शर्मा। तो इसी के साथ ही हमारा ये आज का ये कार्यक्रम आज एक ही कलाकार यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगी ठीक दिन के 2:30 पर। तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे आगे के कार्यक्रमों में जो कि आप सुनेंगे दिन के 3:00 मिठनी मेलोडीज़।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त अपराह्न के 3 बज चुके हैं और वक्त है हमारे कार्यक्रम मैटिनी।

मेलोडीज का इस कार्यक्रम में मैं दीक्षा आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म कटी पतंग के गीत के साथ किशोर कुमार की आवाज़ में।

फिल्म करी पतंग से सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। इस फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी और सुरों से संजाया था आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, इस गीत को जिस मस्ती, शोखी और भावनात्मक अंदाज में गाया गया वैसे एक अलग ही पहचान बनाता है। उनकी आवाज़ में प्रेम की मासूमियत और बेफिक्री दोनों ही महसूस होती है। गीत की पंक्तियां प्रेम को किसी बंधन में ना बनने वाली भावना के रूप में प्रस्तुत करती है। तो श्रोताओ, आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार।

मेरे जीवन साथी से सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। किशोर दा ने इस गीत को बेहद मुलायम और भावपूर्ण अंदाज में गाया था। आर डी बर्मन ने इस गीत में मधुर और सहज संगीत का इस्तेमाल किया था और साथ ही मजरू सुल्तानपुरी ने प्रेमी के मन की भावनाओं को बेहद सरल शब्दों में पिरोया था। तो श्रोताओ, आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम के अगले पड़ाव में और सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म प्रिंस से।

श्रोताओं, फिल्म प्रिंस से सुन रहे थे ये गीत। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को अपनी खास रोमांटिक शैली में गाया है। उनकी आवाज़ में जोश, मस्ती और शरारत का अनूठा मेल सुनाई देता है। साथ ही शम्मी कपूर ने अपने खास डांस स्टाइल, चेहरे के भाव और ऊर्जा से गीत को बेहद आकर्षक बनाया है। शंकर जयकिशन ने गीत में आकर्षक लय और मधुर धुन का इस्तेमाल किया है। साथ ही गीतकार हसरत जयपुरी ने प्रेमिका की सुंदरता और उसके आकर्षण को सितारों के रूपक के जरिए व्यक्त किया है। गीत के बोलों में रोमांस के साथ साथ हल्की सी शरारत भी दिखाई देती है। तो श्रोताओ, आइए सुनवाती हूँ आपको अपना अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, गाइड फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसमें लता जी ने सुरीली और भावपूर्ण गायकी इस गीत में पेश की है और वो खुशी, उत्साह और आत्मविश्वास के भावों को जिंदा किया है। इस गीत में वहीदा रहमान की सहज अदाकारी और नृत्य रोजी की आंतरिक खुशी और स्वतंत्रता को खूबसूरती से निभाया है।

दिल अपना प्रीत पराई फिल्म से सुन रहे थे ये गीत। अजीब दास्तां है ये गीत के बोल प्यार की ऐसी उलझन को दर्शाती है जिसमें इंसान खुद नहीं समझ पाता कि उसकी प्रेम कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होगी। लता जी ने इस गीत को जिस नज़ाकत और भावुकता से गाया है वह इसके दर्द और रोमांस को एक साथ उभारती है। श्रोताओं, इस गीत की मधुर धुन और सुरीला संगीत इसे 1960 के दशक के यादगार फिल्मी गीतों में शामिल करते हैं। गीत में मीना कुमारी के चेहरे के भाव और उनकी सहज अदाकारी किरदार की भावनात्मक स्थिति को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं हम अगले

गीत की ओर, लेकिन इससे पहले पढ़ते हैं ये संदेश जो हमें भेजा है सुदर्शन मुखी ने, उनके साथ है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और आपका संदेश हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मस्कीन दादा हमें भेज रहे हैं। और उन्हीं उन्होंने भी लिखा है कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जब हमें इतनी दुआएं देते हैं तो हमारे अंदर का मनोबल और बढ़ जाता है। श्रोताओं चलिए बढ़ते हैं, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है और इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत भी हम आपको पेश करना चाहते हैं। मन तो नहीं है छोड़ कर जाने का, लेकिन इस गीत के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिलहाल आज के लिए। तो आइए सुनते हैं ये फिल्म हम दोनों से, ये गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की युगल सुरों में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये मैटिनी मेलोडीज कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तब तक ले मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त दिन के 3:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में मेरा यानी शाहनवाज हाशमी का और
1: मेरा फरहीन बाल का
0: पुरखलूस

0: आदाब
1: आदाब सामईन कराम, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम
0: सदाए सुखन।
1: तो सामईन कराम, इस प्रोग्राम में हम आपको उर्दू अदब के उन अकाबरीन के मुतल्लिक आगाह कराते हैं, उनके मुतल्लिक बताते हैं, और हम अपने उर्दू के अकाबरीन यानी शायर व अदीब को खराज अकीदत भी पेश करते हैं
0: जो इस माह में पैदा हुए या इस दुनिया से रुखसत हुए।
1: यह सामईन, तो हम लेकर हाजिर हैं ऐसे ही अदीबों को और शायरों को। तो सामईन, आइए हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं और आपको इस प्रोग्राम के पहले शायर से रूबरू कराते हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे या उनसे अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे जिन्हें उर्दू शायरी का खुदाए सुखन कहा जाता है।
0: बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं मीर तकी मीर की, जिनके बारे में खुद मिर्ज़ा गालिब ने एतराफ किया
1: कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था।
0: वाह क्या बात है। मीर के इब्तदाई दौर पर नजर डालें तो वो 1723 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद अली मुत्तकी एक
1: दरवेश सिफत इंसान थे। यही वजह है कि मीर के मिजाज में ही
0: दुनिया से बेजारी नजर आती है।
1: हाँ, ये बात तो है कि मीर की जिंदगी मसायब और मुश्किलात से भरी हुई थी। उन्होंने बचपन में ही वालिद का साया उठते हुए देखा। उन्होंने अपनों की बेईमानी और बेवफाई सही और फिर दिल्ली की तबाही के चश्मदीद गवाह भी रहे थे। यही वजह है कि उनकी शायरी में जो सोजो गुदाज मिलता है वो किसी और के यहाँ मुमकिन नहीं। मीर खुद कहते हैं, मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, मुझको शायर न कहो मीर के साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।
0: जी हाँ, बहुत खूबसूरत शेर। इसलिए मीर को कनौतियत यानी मायूसी या गम का शायर भी कहा जाता है। लेकिन उनका गम सिर्फ उनका ज़ाती गम नहीं था, बल्कि वो उनके अहद का गम था। जो दिल्ली को बार बार लूटा गया तो मीर तकी मीर ने दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख किया, जहां आसिफुद्दौला ने उनकी बहुत कदर की शानवाज।
1: दरअसल मीर की शायरी की सबसे बड़ी खसूसियत उनकी सहल मुमतना है।
0: हाँ, ये बात सही है।
1: यानी कि इतनी सादा जबान इस्तेमाल करना जो बज़ाहिर आसान लगे लेकिन वैसी शायरी करना नामुमकिन हो। उनके शेरों में एक खास किस्म का नुक्ता और मौसिकी होती है। जैसे उनका ये लाजवाल शेर है कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश
0: शराब किसी है,
1: क्या कहने हैं। और मोहतरमा, आपकी आंखों को देखकर फरीन साहिबा, मेरी जबान पर बेख्तियार ये शेर आ जाता है कि मीर इन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब किसी है।
0: बहुत खूब। मीर ने सिर्फ गजलें ही नहीं लिखी बल्कि उन्होंने मसनविया, तस्करे और अपनी आप बीती जिक्र मीर में भी लिखी।
1: जी,
0: उर्दू जबान को वो वकार चाशनी मीर ने दी, इसी ने आने वाले दौर के शोरा जैसे गालिब, जौक और हसरत मुहानी के लिए रास्ते हमवार किए।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने, गालिब जौक और हसरत मुहानी के लिए उन्होंने रास्ते हमवार किए। तभी तो गालिब ने कहा था कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। मीर ने तकरीबन 87 साल की तवील उम्र पाई और 20 सितंबर 1810 में लखनऊ की मिट्टी में आसूदा खाक हुए। लेकिन 2 सदियां गुजर जाने के बाद भी उनका कलाम आज भी उतना ही ज्यादा असर अंगेज है जितना के उनके जमाने में उस कलाम की अहमियत थी।
0: सही कहा शाहनवाज। मीर की यादें और उनका कलाम तो एक समंदर है
1: जी,
0: इसलिए उनके बारे में जितनी बात की जाए कम है। क्या खूबसूरत शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है,
1: जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।
0: बिल्कुल।
1: तो फरीन साहिबा, क्यों ना ये शेर हम किसी गुलूकार के आवाज में अपने सामईन को भी सुनवाएं?
0: ये तो बहुत अच्छी बात होगी शाहनवाज।
1: तो आइए सामईन इकराम, सुनते हैं ये मशहूर गजल, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है,
0: जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है।

0: वाह क्या बात है, बहुत खूब। इस खूबसूरत सी गजल के बाद फरहीन साहिबा हम अपने सदाए सुखन में किसे आवाज देने वाले हैं?
1: वैसे तो शाहनवाज बहुत हैं, लेकिन मैं नाम लूंगी रईस अमरोही का।
0: जी
1: उर्दू अदब की तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिनकी जगह सदियों तक पुर नहीं हो सकती। एक
0: मुमताज।
1: ऐसी ही हमजहत शख्सियत मुमताज शायर, मायानाज, सहाफी, दानिश्वर रईस अमरोही की है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, रईस अमरोहवी सिर्फ एक फर्द का नाम नहीं बल्कि वो अपनी जात में मुकम्मल अंजुमन और एहसास उस्ताद थे। रईस अमरोहवी की इल्मी और अदबी तरबियत एक ऐसे माहौल में हुई जहां इल्म और हुनर की फरावानी थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शेर कहना शुरू कर दिया था, लेकिन क्या कहिए कि एक ऐसा सानहा गुजरा कि हमारा मुल्क आज़ाद तो हो गया लेकिन एक ऐसी निशान खींच दी गई जिसका दर्द और जिसके निशानात आज भी हमारे दिलों पर मौजूद है, यानी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे में रईस अमरोही कराची चले गए।
1: सही कहा आपने, एक बहुत अच्छा शायर हमसे दूर हो गया। दरअसल उनकी सहाफती खिदमात को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने रोजनामा जंग से तवील अरसे तक वाबस्तगी बरकरार रखी। उनके लिखे हुए कतात रोजाना अखबार की जीनत बनते थे, जो न सिर्फ सियासी और समाजी सूरत हाल पर गहरा तंज होते थे बल्कि अवामी जज्बात के सच्चे तर्जुमान भी होते थे।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने।
1: उनके कतात का मजमुआ अलिफ उर्दू अदब का एक अनमोल असासा है।
0: बिल्कुल सही।

0: आपने। वैसे अगर फरहीन साहिबा हम उनकी शायरी की बात करें
1: जी जी
0: तो रईस अमरोही बुनियादी तौर पर नज्म और गजल के मुनफरिद शायर थे, अतात भी
1: जी
0: लिखा उन्होंने। उनके कलाम में फलसफियाना गहराई, तसव्वुफ और इंसानी नफ्सियात के गहरे रंग नजर आते हैं। उनके शेरी मजमुओं में मसनवी लिसानुल गैब, पसे गुबार, हिकायात ने और मलबूसे बहार को लाजवाल शोहरत हासिल हुई
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल, उनकी शायरी का खास पहलू ये भी तो था कि वो जितने अच्छे क्लासिकी शायर थे, इतने ही जदीद दौर के तकाजों से भी हमांग थे।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने फरहीन साहिबा। आपको और हमारे सामईन को भी ये बात सुनकर हैरानी होगी
1: जी
0: कि रईस अमरोही की शख्सियत का एक और हैरत अंगेज पहलू उनका माबादुद तबियात यानी मेटाफिजिक्स और नफ्सियात है।
1: अच्छा
0: नफ्सियात से उनका गहरा ताल्लुक था, इसलिए
1: जी
0: उन्होंने उर्दू दा तबके को एक बिल्कुल नई सोच और एक नई राह से रोशनास और हमकिनार करवाया,
1: अरे वाह, बिल्कुल
0: जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल जी हाँ, उनकी इल्मी वुसअत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है शाहनवाज, कि उन्होंने साइंसी और नफ्सियाती मौजूदात को इंतहाई सादा और आम फहम उर्दू में पेश किया।
0: बिल्कुल, लेकिन हम क्या करें, मौत बरहक है, लेकिन अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि 22 सितंबर 1988 को इल्म और अदब का ये चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए गुम हो गया, खो
1: अफसोसद
0: गया।
1: अफसोस
0: उनकी लाजवाल शायरी हमेशा हम सब के दिलों में जिंदा रहेगी।
1: उनका एक बहुत खूबसूरत शेर है,
0: जी,
1: सिर्फ तारीख की रफ्तार बदल जाएगी,
0: सिर्फ तारीख की रफ्तार बदल जाएगी।
1: नई तारीख के वारिस यही इंसान होंगे।
0: जी हाँ सामीन, इसी शेर के साथ हम अपनी पूरी टीम की जानिब से रईस अमरोहवी को खराज अकीदत पेश करते हैं। और सदाए सुखन में हम एक ऐसे इंसान के बारे में आपको हम बताएंगे, उनके बारे में आपसे हम गुफ्तगू करेंगे फरीन साहिबा, और अपने सामईन को
1: जी
0: भी बताएंगे जिसने एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में आज़ादी का परचम उठाया था। जी हाँ, मेरी मुराद है
1: हसरत
0: हसरत
1: मुहानी
0: मोहानी
1: से,
0: से।
1: बिल्कुल हसरत मुहानी सिर्फ एक शायर नहीं, मुजाहिदे आजादी भी थे। हसरत मुहानी एक अहद का नाम है शाहनवाज।
0: बिल्कुल, और उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि वो बैक वक्त एक सच्चे आशिके रसूल,
1: जी
0: एक इनकलाबी, एक सियासतदान, एक
1: बिल्कुल,
0: महबूब, एक आशिक और एक बेमिसाल गजल गो शायर थे। बिल्कुल,
1: हरफन मौला थे।
0: कह सकते हैं हम।
1: सही कहा आपने, उन्होंने गजल को रिवायती इश्क व आशिकी के बंधनों से निकालकर इसमें सियासत, समाज और आजादी का रंग भर दिया।
0: बिल्कुल सही कहा, और आप तो सही कहती ही हैं और सच भी है कि जो खातून होती हैं वो सही कहती हैं। हमारे सामईन भी बखूबी इस बात को समझते हैं कि खातून के सामने किसकी ज़बान चली है। बहरहाल, उनकी शायरी का जिक्र हुआ है और उनकी लाजवाल गज़ल याद ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। आपको मालूम है फरीन साहिबा वो कौन सी गज़ल है?
1: ये तो सबको ये पता है, शायद ये सब
0: जी
1: जानते हैं
0: जी
1: और मेरी पसंदीदा भी है,
0: क्या है?
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है।
0: जी, तो सामीने कराम, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना इन्हें भी याद है, और ऐसा लगता है कि ये गज़ल इन्हीं के लिए लिखी गई है, क्योंकि ये भी, अब आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो क्यों ना हम अपने सामईन को भी ये गज़ल सुना दें।
1: हाँ जरूर बिल्कुल।
0: तो लीजिए समाप्त कीजिए।

0: वाह, क्या कहने हैं, क्या गजल थी। और फरीन साहिबा, और इस गजल को सुनते हुए जब ये गजल चल रही थी, सुना
1: जी
0: रहे थे, गुलूकार गा रहे थे, तो आपके चेहरे का तासुर देखकर मैं ये समझ रहा था कि ये गजल शायद हसरत साहब ने आपके लिए ही लिखी थी और आप ही के लिए कलमबंद किया था, क्योंकि उस गजल के हर हर लफ्ज पर आप आह और वाह और आपकी जो इशारे और किनारे थे बिल्कुल आया थे।
1: नहीं शाहनवाज, सच में वो गजल बहुत अच्छी है और रूह की गहराइयों में उतर जाती है।
0: तो क्या बात है, लेकिन हसरत की

0: मत सिर्फ उनकी शायरी तक महदूद नहीं है,
1: हाँ ये तो है
0: बल्कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दिए हैं।
1: जी। हाँ इस बात से मैं इत्तफाक रखती हूँ आपकी, वाकिफ भी हूँ कि हजरत मोहानी ने हमेशा सच का साथ दिया। उन्होंने एक रिसाला उर्दूए मौला भी निकाला जिसमें अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लिखने पर इन्हें जेल भी जाना पड़ा।
0: जी हाँ फरीन साहिबा, मैं भी इस बात से वाकिफ हूँ कि उन्हें चक्की की मशक्कत की सजा भी मिली थी और उन्होंने उस सजा को भुगता भी था। इसके बावजूद भी उनके पैर इस्तकलाल में लग्जिश तक ना आई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अना को, अपनी ईमानदारी को, अपनी खुददारी को और अपने वतन मोहब्बत को हाथ से जाया नहीं होने दिया।
1: बहुत बड़ी बात है शाहनवाज, और इन्होंने उस पर एक शेर भी कहा।
0: अच्छा, किस पे, चक्की
1: जी
0: पे?
1: चक्की पर
0: जी जी
1: है
0: जी
1: मश्क़े सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी
0: क्या बात है,
1: है
0: मश्के
1: मश्क़े,
0: सुखन जारी, चक्की की मशक्कत भी,
1: एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत
0: क्या
1: भी।
0: बात है, वाकई हसद की तबीयत तो तुरफाए तमाशा ही रही है। तो चक्की पीसते हुए भी शेर व शायरी की जा रही थी और उनकी खासियत भी यही रही है।
1: हाँ ये तो है, वो इंतहाई दरवेश सिफत इंसान थे।
0: सूत का कुर्ता पहनते थे, सस्ते दर्जे में यानी लोकल में सफर करते थे, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाते थे।
1: हाँ बिल्कुल, उनकी जिंदगी सादगी सच्चाई और इनकलाब का एक हसीन इम्तिजाज थी। वो कृष्ण जी के भी मद्दाह थे शाहनवाज।
0: जी, और आपको ये भी बता दूं कि वो मक्का मुअज्जमा की हाजिरी के दीवाने भी थे। बिल्कुल
1: जी दोनों ही खूबियां थी उनके अंदर
0: सही
1: जो
0: कहा,
1: आजकल देखने को नहीं मिलती।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी शख्सियत में बला का तजाद था, मगर वो तजाद भी कितना खूबसूरत
1: बहुत
0: था।
1: खूबसूरत था
0: कभी उन्होंने मैं नोशी नहीं की, लेकिन उनकी शायरी में देखिए क्या गजब के
1: बिल्कुल,
0: बला
1: सही
0: के
1: बात
0: नोश
1: है
0: नजर आते हैं।
1: सही बात
0: और
1: है
0: इसी तरह से उन्होंने कभी हकीकी इश्क तो किया होगा,
1: जी।
0: लेकिन मिजाजी इश्क की तरफ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन मिजाजी इश्क के बारे में उनसे बेहतर कौन बता सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है, हसरत मोहानी ने साबित कर दिया कि कलम की ताकत को और सच्चाई की गूंज को जेल की सलाखें भी दबा नहीं सकती।
0: बिल्कुल। तो सामईन कराम, हम आपको ये भी बताते चले कि ये 13 मई 1951 को उर्दू अदब और सियासत का ये चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए गुरूब हो गया, लेकिन उनकी गजलें और उनका इनकलाबी जज्बा आज भी हमारे दिलों में मौजूद है, यानी इनकलाब जिंदाबाद। उनके इसी कौल के साथ हम अपनी पूरी टीम की जानिब से उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं।
1: शाहनवाज सदाए सुखन में अब किसको याद कर रहे हैं आप?
0: देखिए, हमने शायरों को तो याद कर लिया,
1: जी
0: अब अदीब को अगर हम याद ना करें तो बेईमानी होगी और अपने आप
1: बिल्कुल
0: से बेईमानी होगी, उस अदीब से नहीं, अपने आप से बेईमानी
1: जी
0: होगी।
1: जी
0: तो राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अफसाने का एक दरख्शंदा सितारा है। उन्होंने उर्दू अफसाने को एक नई जबान, एक नया मिजाज और एक अनोखा उसलूब दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जैसा कहा जाता है कि अदब जो है क्या है, समाज का आईना है, और जो कुछ भी अदब पे अक्स करता है यानी समाज का अक्स अदब में आता है। उन्होंने जितनी चीज़ों को अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और अपने एहसासात के साथ महसूस किया, उसे कलम के जरिए अपने लफ्ज़ों में हूबहू कागज़ पर उतार दिया, जिसे रहती दुनिया कभी फरामोश नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल सही, क्योंकि अदब हर दौर का अक्कास होता है।
0: जी
1: राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अदब के बेताज बादशाह हैं।
0: बिल्कुल,
1: बेदी साहब का जब भी जिक्र आता है तो जहन में एक ऐसे फनकार की तस्वीर उभरती है जिसने इंसानी नफ्सियात, खास तौर पर मुतवस्सित तबके के दुख दर्द और औरत के जज्बे को बहुत गहराई से महसूस किया है शाहनवाज।
0: बिल्कुल, औरतों के जज्बात को, औरतों के एहसासात को, औरतों की महरूमी को। औरत क्या है, उस औरत को औरत की तरह सोचकर जिस तरीके से, जिस सलीके से राजेंद्र सिंह बेदी ने पेश किया है, कोई और शायद पेश नहीं कर
1: ये बहुत
0: सकता।
1: बड़ी बात है।
0: ये बात तो है कि वो तरक्की पसंद तहरीक के 4 सुतूनों में से एक माने जाते हैं,
1: जी
0: जिनमें
1: जी
0: किशन चंद जो पहला नाम लिया जाता है, इसमें चुगताई और सआदत हसन मंटो के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है।
1: राजेंद्र सिंह बेदी।
0: जी
1: बिल्कुल दरुस्त कहा आपने। बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। उनकी अदबी जिंदगी का आगाज तो अखबारात से हुआ, लेकिन उनका पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम 1936 में मंजरे आम पर आया,
0: और उसने अदबी हलकों में तहलका
1: तहलका
0: मचा
1: मचा
0: दिया
1: दिया।
0: था।
1: उनके अफसाने महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि उनकी जिंदगी तल्ख सच्चाइयों का आईना भी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे समाज की जिंदगी का तल्ख आईना भी उनके अफसाने हैं। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो बहुत कम लिखते थे, लेकिन जो लिखते थे वो लाजवाल हो जाता था। उनका एक मजमुआ है ग्रहण, और उनका शोहरा आफाक नावलट है एक चादर मैली सी। इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि एक चादर मैली सी में उन्होंने पंजाब के देही मुआशरे और वहाँ की औरत की बेबसी और कुर्बानी को जिस तरह पेश किया था वो उर्दू अदब में एक संगे मील है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि एक चादर मैली सी पर एक फिल्म भी बनी थी और वो फिल्म भी बहुत कामयाब हुई थी।
1: वो फिल्म बहुत अच्छी है, मैंने देखी भी है, वो बहुत अच्छी फिल्म है। बेदी के अफसानों का शाहनवाज एक अहम पहलू ये भी है कि वो अपने किरदारों को बहुत सादगी के साथ पेश करते हैं। वो इंसान को इंसान की तरह दिखाते हैं, खामियों और खूबियों के साथ। उनका एक मशहूर अफसाना है लाजवंती,
0: बिल्कुल
1: तकसीम हिंद के पस मंजर में लिखा हुआ। ये अफसाना दिल को झिझोड़ कर रख देता है कि किस तरह एक औरत अपनों के बीच रहकर भी पराई रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा कि इस अफसाने में सिर्फ औरत की कहानी नहीं बल्कि समाज का वो चेहरा भी दिखता है जो चेहरा अपनी नाकामियों को किसी एक लफ्ज़ के पीछे, एक पर्दे के पीछे छुपा देता है। और औरत को वो रद्द तो करता है लेकिन इस अंदाज में रद्द करता है कि लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कि वो उसे रद्द कर रहा है। इस अफसाने में उन्होंने अपनी औरत को देवी तो बना दिया, बीवी का दर्जा, यही कर्ब यही दर्द उनके अफसानों में झलकता है। एक चादर मैली सी में भी जो किरदार है वो किरदार हमारे आसपास आपको नजर आ जाएंगे, देही इलाकों में आज भी ऐसे किरदार हमें जा बजा भटकते हुए मिल जाएंगे। और यही कमाल राजेंद्र सिंह बेदी का है कि उन्होंने जिन किरदारों को अपने अतराफ में देखा, जिन किरदारों को समझा, जिन किरदारों के तई उन्होंने कोई एहसास उनके दिल में पैदा हुआ, उस एहसास को लफ्जों के जरिए कागज या यूं कहिए अपने ख्याल के कैनवस पे उतार दिया जो रहती दुनिया तक फरामोश नहीं की जा सकती।
1: पर बिखेर दिया उन्होंने।
0: बिल्कुल फरीन साहिबा, एक बात और बताता चलूं कि बेदी साहब सिर्फ अफसाना निगार नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी थे। रेडियो से भी उनकी वाबस्तगी रही है और बता दें आपको कि फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, फिल्में भी बहुत सारी उन्होंने लिखी है, ये कमाल उनका है। आखिर में मैं आपको ये भी बताता चलूं और अपने सामेईन को ये बताता चलूं कि बेदी के खिदमात के एतराफ में हमारी हुकूमत ने उन्हें
1: पद्मश्री और साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी नवाजा।
0: वो इस दुनिया में नहीं है पर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और उर्दू अदब उन्हें कभी फरामोश नहीं करेगी। तो सामईन कराम, हम आपके साथ साथ अपनी टीम की जानिब से इनकी खिदमत में भी खराज अकीदत पेश करते हैं।
1: सामईन, ये था हमारा प्रोग्राम सताए सुखन।
0: हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ किस तरह के और प्रोग्राम आपके खिदमत में लेकर हम हाजिर होते रहेंगे,
1: तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
0: लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतजार सैफी ने। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी, हम दोनों को यानी शाहनवाज हाशमी और
1: फरहीन इकबाल को दीजिए इजाजत।
0: खुदा हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस वक्त शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार

0: समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक के अवसर पर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल की वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में जारी है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दे रहे हैं। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करने और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों के साथ बैठक की। हाल ही में हुई संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद इन पार्टी पदाधिकारियों की पहली बैठक थी। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर के विकास और उसे मजबूत बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सांख्यिकी व्यवसाय रजिस्टर एक केंद्रीय और नियमित रूप से अद्यतन किए जाने वाला डेटाबेस है। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीता। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रवीण हुडा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य सहित 48 पदक के साथ 11वें स्थान पर है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिरकर 72,529 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 64 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर बंद हुआ। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Ulad and Masoor at minimum support price with the

0: arrangements to ensure payments are made within 48 hours. The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The second meeting of the Joint Parliamentary Committee, JPC, examining the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 is currently underway at Parliament Annexe in New Delhi. The officials from the Ministries of Home Affairs and Law and Justice are expected to brief members on various provisions of the proposed legislation. The panel will also hear the views of domain experts and stakeholders, including State Bank of India Chairman Challa Srinivasulu Setty and additional Solicitor General of India for the Delhi High Court, Chetan Sharma. The committee has been tasked with examining the provisions of the bill and submitting its report to Parliament by the last day of the first week of the winter session 2026. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said that India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation.
1: We had long been telling the Chinese, I've been saying it personally at my level, that look, a standoff between us, a dip in our relationship actually doesn't help either of us. In fact, it is third parties who will take advantage of that. So we also maintained consistently a very elementary principle of statecraft, which is don't get locked into a problem which benefits others. And it took a little while, I think, the Chinese side to agree with that for whatever reason. But I don't think that long standoff served our interests. It certainly didn't serve theirs. And to the extent there is an improvement in our relations, I think it certainly helps our position.
0: Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there's an understanding on the trade agreement. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for by-poll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmani Malik. Nomination has started from today and polling will be held on the 16th of October. Benchmark domestic equity indices declined for the second consecutive session today. The Sensex lost 243 points or 0.33% to close at 72,529. Nifty fell 64 points or 0.28% to settle at 22,716. In the Asian Games 2026, Neeru Dhanda has made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ehlawat and Manisha Kier. In boxing, Narinder Berwal today won bronze in men's boxing plus 90kg category after losing to reigning world champion Erbek Oralbey of Kazakhstan by a unanimous 0-5 decision in the semi-final. India has moved up to the 11th place in the 2026 Asian Games standings, bringing its total medals tally to 48. The current tally includes 5 gold, 21 silver and 22 bronze medals. And IMD has forecast heavy rainfall accompanied with thunderstorms, lightning and gusty winds over Andaman and Nicobar Islands and most of southern India. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. खोए हुए पुरुष का पूरा नाम रमेश सैनी है. ये स्वर्गीय रघुवीर सैनी के पुत्र हैं. इन्हें अंतिम बार ओडियन रोड थाना ब्रह्मपुरी मेरठ में 29 जून 2026 को दोपहर 1:30 पर देखा गया. इनकी आयु 61 वर्ष है. कद 5 फीट 10 इंच है. इखरा शरीर है एवं चेहरे का रंग गेहुआ है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना ब्रह्मपुरी मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम कुमारी संजना है। ये धर्मेंद्र की पुत्री हैं। इन्हें अंतिम बार 20 जुलाई 2026 को देखा गया, दिनांक 20 जुलाई 2026 को। इनकी आयु 18 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं चेहरे का रंग गोरा है। संजना अपने घर से गुस्सा होकर निकले, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना नौचंदी मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा युवती का पूरा नाम आयशा है। ये अकबर की पुत्री है। इन्हें अंतिम बार कस्बा हर्रा, दिनांक 17 जुलाई 2026 को, दिन शुक्रवार को देखा गया। इनकी आयु 22 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं रंग गोरा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उप निरीक्षक थाना शकरपुर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम कुमारी मंतशा है। ये रियाज की पुत्री है, निवासी गुलिस्ता गार्डन। इन्हें अंतिम बार इनके घर पर सुबह करीब 7 बजे देखा गया। इनकी आयु 20 वर्ष है, इखरा शरीर है, कद करीब 5 फीट है और इनके माथे पर तिल का निशान है। मंतशा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना लिसाड़ी गेट मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम पंकज वर्मा है। ये स्वर्गीय सुशील वर्मा के पुत्र हैं, निवासी द्वारकापुरी, फ्लैट नंबर B20, माधवपुरम। इनकी आयु 40 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। पंकज वर्मा अपने घर से गाड़ी और 1 लाख रुपए कैश लेकर कहीं चले गए हैं, फिर वापस नहीं लौटे। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुरी मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम नौराज सिंह है। इन्हें अंतिम बार 27 जून 2026 को सुबह 6 बजे इनके घर पर देखा गया। इनकी आयु लगभग 61 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 7 इंच है। इनके दाहिने हाथ पर की मध्यम उंगली पर चोट का निशान है और हल्की सी मुड़ी हुई है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना फलावदा जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम शिवानी कुमारी है। ये पंकज कुमार की पत्नी है, निवासी ग्राम फरकन, नगर थाना पहमुई, जनपद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 21 जुलाई 2026 को देखा गया। इनकी आयु 23 वर्ष है, शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट 1 इंच है। इनके माथे पर चोट का निशान है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना अध्यक्ष थाना पल्लवपुरम मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में गुमशुदा व्यक्ति का पूरा नाम संजय है। ये एक पुरुष है, निवासी गांव टिकली, थाना बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम। इन्हें अंतिम बार 21 जून 2026 को देखा गया। इनकी आयु 40 वर्ष है, कद 5 फीट 1 इंच है, रंग गेहुआ है, चेहरा लंबा है, शरीर हष्टपुष्ट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थाना बादशाहपुर गुरुग्राम से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: वक्त की इस रेलगाड़ी में हर स्टेशन एक कहानी है। कोई उतरता है, कोई चढ़ता है। ये सफ़र बस आना जाना है। पर कुछ स्टेशन ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जहाँ ठहर जाती है हर घड़ी, जहाँ बरसों बाद भी लौट आती है वही एक जज्बाती सी घड़ी। कहते हैं ना, कुछ कहानियाँ हमें पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं, और कुछ सुनकर लगता है अरे ये तो कहीं ना कहीं मेरी भी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपके फेवरेट यूथ प्रोग्राम युववाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट ईशा।
1: और मैं हूं आपका दोस्त दीपांशु। ईशा, आज मंगलवार है यानी ट्यूजडे, क्लासिक का दिन।
0: बिल्कुल दीपांशु, आज की थीम है आर्ट एंड लिटरेचर। तो आज हम बात करेंगे एक किताब की, कुछ गानों की, और एक ऐसी कहानी की जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया
1: कि क्या सपनों की भी कोई उम्र होती है। इसका जवाब हम आज साथ मिलकर ढूंढेंगे। तो ईशा, शुरू करें?
0: जी बिल्कुल दीपांशु, आज हमने जो किताब चुनी है उसका नाम है अक्टूबर जंक्शन। नाम सुनकर ही एक तस्वीर सी बन जाती है। अक्टूबर यानी एक महीना, और जंक्शन यानी वो जगह जहाँ रास्ते मिलते हैं।
1: सच कहूँ तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारी ज़िंदगी में कई जंक्शन आते हैं जहाँ तय करना पड़ता है कि किधर जाना है, किसे पीछे छोड़ना है और किसके साथ आगे बढ़ना है।
0: ये किताब दिव्य प्रकाश दुबे ने लिखी है। कहानी है चित्रा और सुदीप की, जो मिलते हैं और फिर हर साल एक खास दिन पर मिलने की एक अनोखी परंपरा बना लेते हैं।
1: मतलब रोज मिलना नहीं, हर वक्त साथ रहना भी नहीं, फिर भी रिश्ता बना रहता है। मुझे तो यही बात काफी अच्छी लगी इस कविता की।
0: हाँ, क्योंकि रिश्ते हमेशा दूरी से खत्म नहीं होते। कई बार कोई इंसान दूर रहकर भी आपकी जिंदगी में उतना ही करीब होता है।
1: और ये किताब एक सवाल भी छोड़ जाती है, हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है, और जो हम सच में करना चाहते हैं, या हम बस वही कर रहे हैं जो हालात ने हमसे करवा दिया।
0: ये सवाल तो आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। करियर चुनना हो, कोई रिश्ता हो, या कोई सपना, हमें लगता है कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन वक्त तो चलता ही रहता है।
1: इसलिए शायद सबसे मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड काम यही है कि अपने मन की आवाज को पहचाना जाए।
0: इसी ख्याल को आगे रखते हुए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं

0: कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये तो पहले से मेरे अंदर था।
1: बिल्कुल, शायद इसलिए कि लिरिसिस्ट वो बात लिख देता है जो हम खुद बोल नहीं पाते। वैसे दीपांशु, अपनी जिंदगी पर एक गाना चुनना हो तो कौन सा चुनोगे?
0: अरे ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, पर शायद ऐसा कोई गाना जो कहे कि चलते रहो क्योंकि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है।
1: तो लिसनर्स, आप भी सोचिएगा आपकी जिंदगी का थीम सॉन्ग कौन सा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं चला जाता हूँ।

0: दोस्तों अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का मन से माइक्रोफोन, जिसमें हम सुनेंगे सीबीएसई टॉपर हितेश्वर शर्मा को, जिनसे बात की है हमारी साथी आंचल पुंडीर ने।
1: हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक। टैलेंट और लक सक्सेस के लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वेल लेट्स एक्सप्लोर दिस थ्रू अ कन्वर्सेशन विद समवन हु हैज बीन अ सीबीएसई टॉपर, बिकेम अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, स्टूडेंट ऑफ द ईयर एंड नाउ अ लॉ स्टूडेंट। Today we have with us Hiteshwar Sharma. So welcome Hiteshwar. How have you been?
2: Hi, it's an honor to be here. Mera saubhagya hai aap se baat karna.
1: Hiteshwar, 2021 mein aap CBSE class 12th ke topper the. Aaj 5 saal baad aap khud ko dekhte kaha hai us ek achievement ke baad?
2: Agar main 2021 ki us achievement ki baat karun to wo mere liye behad khaas thi. क्योंकि उसको 5 वर्ष हो गए हैं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं उसको भूल पाया हूँ या जो उसकी लर्निंग्स है मैं उसको पूरी तरह से भूला हूँ। वो एक माइलस्टोन था जिसने मुझे प्रेरित किया आगे मेहनत करने के लिए। उसके बाद मैं कॉलेज गया, सेंट स्टीफन्स कॉलेज से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई की, अब मैं कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो एक ऐसा पल है मेरे जीवन का, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, टीचर्स बहुत प्राउड थे, जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं आगे निरंतर मेहनत करता जाऊँ। और आज भी वही मेहनत चल रही है, आज भी वो राह खोज रहे हैं जो भी एक बेस्ट ऑप्शन होगा एक स्टूडेंट के लिए या क्या करियर ऑप्शन बेस्ट है। आज मैं भी आम स्टूडेंट्स की तरह, सभी स्टूडेंट्स की तरह मैं अपने आप को स्थिति में पाता हूं, लेकिन बिल्कुल ये जो 5 साल पहले के जो पल हैं आज भी मेरे लिए बहुत खास है और आज भी बहुत प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए।
1: अच्छा एक बात बताइए, उस टाइम आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या था जब आपको ये सारी अचीवमेंट्स मिली, और आज सक्सेस का मतलब आपके लिए क्या है?
2: उस समय मैं कुछ 18 साल का था। अगर हम बात करें सक्सेस की, कामयाब होने की, तो किसी मटेरियल फॉर्म में या किसी रैंक के फॉर्म में मैंने सक्सेस इमेजिन नहीं की थी। उस टाइम पे मेरा जो टास्क था, मेरा जो कार्य था, मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने मुझे कहा था कि इतनी मेहनत करते रहिए, ये अगर आप कर लें, आज एक दिन का काम दिया है मुझे, कहा है कल तक आपसे ये उम्मीद है आप इतने अंक ले लें या टॉपिक समझ पाए, एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए, इन जनरल एक अच्छा इंसान बन पाए, मॉरल वैल्यूज भी सिखाना स्कूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आज के AI के दौर में हम देख रहे हैं, कैन AI रिप्लेस टीचर्स? तो बिल्कुल नहीं होता, मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि मेरे टीचर्स ने जो मुझे उस समय सिखाया आज भी काम आ रहा है। तो हम उसको एक रैंक की तरह ना देखें, बल्कि एक जर्नी थी जो उस समय मेरे एज अ स्कूल स्टूडेंट विच टर्न इनटू अ कॉलेज स्टूडेंट वाज वेरी वेरी स्पेशल, और आज भी उसी चीज को सीख के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और सक्सेस का उस समय भी मेरे दिमाग में आइडिया था वो यही था, एक अच्छा इंसान बने, सीखते रहें, शिक्षकों की, माता पिता की इज्जत करें, टेक वन डे एट अ टाइम एंड कीप लर्निंग, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस फॉर मी।
1: I assure you, our listeners are going to learn so much after this. As we have known about you that you have played with Haryana cricket as well. आप ये बताएं कि आपने sports, student politics, cricket इन सब के साथ ये manage कैसे किया?
2: तो मैं जब स्कूल में था, स्कूल में मेरे जो mentors थे जिन्होंने मुझे guide किया, उन्होंने मुझे कभी भी एक field पे limit नहीं किया। मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे शिक्षकों ने मुझे ये भी कहा कि खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। मैं स्टेज प्लेस करता था, थिएटर में मैं बहुत एक्टिव था, स्कूल में भी मैं स्टूडेंट लीडरशिप में रुचि रखता था। तो क्योंकि मेरे गाइड करने वाले लोग मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में इतने अच्छे थे कि वो मुझे प्रेरित करते गए कि आप अलग अलग फील्ड में सक्रिय हो जाइए। एक फील्ड को पकड़ना मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं, अच्छे कार्य करने में व्यस्त रख सकते हैं, चाहे वो खेल है, चाहे वो सोशल वर्क है, किसी भी चीज में अगर आप एक्टिव रहकर अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा सौभाग्य था कि मुझे हरियाणा अंडर 14 और अंडर 17 से खेलने का उस समय मौका मिला। पंचकुला से मैं आता हूँ, मुझे अपने शहर की कप्तानी करने का मौका मिला। तो भगवान ने चाहा और मेरी मेहनत थी, मेरे दोस्तों का जो साथ था और मेरे जो कोचेस थे उनके हार्डवर्क की वजह से दैट इज वेयर आई रीच्ड। एंड इवन कॉलेज में भी आफ्टर कोविड पैंडमिक मैं काफी समय तक क्रिकेट खेला नहीं था, तो वहां भी जो मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिस्ट्री के थे, क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था या मैं क्लास में रेगुलर था, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा कि आप क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे। तो मैंने उनको बताया कि सर कोविड पैंडेमिक हो गया, मैंने प्लस टू में ऑल इंडिया रैंक 1 टॉप किया है, तो मुझे लग रहा है क्रिकेट पीछे छूट गया है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं आपसे क्लास में बात नहीं करूंगा अगर आपने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि तुरंत क्रिकेट खेलना शुरू करो, कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो अभी भी क्रिकेट खेलना चल रहा है पढ़ाई के साथ साथ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है खेल के, सोशल मीडिया से और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर यदि आप खेलकूद में समय बिताएं तो आपको पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगता है। और पढ़ाई, खेल, ये सभी चीजें मैं नहीं मानता वॉटर टाइट कंपार्टमेंट है, अलग अलग चलती हैं। मेरा मानना है सभी साथ में चलती हैं और सबके लिए समय निकाला जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द विल पावर।
1: जैसे आपने बताया कि आपकी जर्नी में बहुत सारे लोग आपके साथ रहे हैं, यू हैव मेंशन योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, तो आपको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था?
2: सबसे बड़ा रोल अगर मैं अपने आगे बढ़ने में बताऊं तो वो मेरे परिवार का है, मेरे माता पिता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, नाना नानी, मेरी दादी। 2 महीने पहले ही माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अगर मैं उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन को आज बैठकर याद करता हूँ तो मैं शुरू से लेकर अपने जीवन में, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक, मेरी फैमिली ही है जो मेरी पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बनी रही, और वो आज भी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। मेरे परिवार के बाद जो मेरे अध्यापक रहे हैं, चाहे वो स्कूल में रहे हैं, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं बेस्ट लोगों से गाइड होता चला गया हूँ। मैं मानता हूँ मेरी किस्मत अच्छी थी, अपने आप को लकी मानता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश के जो बच्चे हैं उसी तरह से अपने शिक्षकों की, अपने माता पिता की इज्जत करें, उन्हें भी उसी तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसी तरह के मेंटोर्स मिले जैसे मुझे मिले थे। तो वहां पे लक ने मेरी बहुत सहायता की क्योंकि मुझे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे टीचर्स मिले।
1: बिल्कुल हितेश्वर, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से भी इन्फ्लुएंस्ड है, क्या आप भी थे? और अगर थे तो किस तरीके से? अगर नहीं थे तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा संभल के रहें, नहीं रहें?
2: आज भी जब मैं कॉलेज जाता हूँ, पहला सवाल जो मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं, कोई भी पूछता है, वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मांगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंस्टाग्राम पे आज भी नहीं हूँ, मैं 23 वर्ष का हो गया हूँ, सोशल मीडिया का उपयोग नहीं इतना करता हूँ। हाँ, मैंने ट्विटर अकाउंट जरूर बनाया था, वो इसलिए बनाया था क्योंकि कोई अगर किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई पब्लिक ऑफिस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको मेंशन किया जाता है, तो फॉर दैट पर्पस आई डिड यूज अ ट्विटर अकाउंट। मेरे लिए बिना सोशल मीडिया यूज किए मेरा काम चला है, और मैं व्यक्ति भी उस तरह का हूँ जो इन प्रेजेंट जीना प्रेफर करता है ओवर थिंकिंग इन फ्यूचर, और वो रील्स को स्क्रॉल करना टाइमलेसली आपकी आंखों पे प्रेशर पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले बात भी कही कि मैं व्यस्त इतना रहता था क्रिकेट खेलने में या अपनी पढ़ाई करने में कि समय नहीं मिलता था। जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि हम जब फ्री टाइम में बैठते हैं तो हम वो कल्चर भूल चुके हैं। हम पेरेंट्स के साथ बात करना, दोस्तों को मिलने की जगह कॉल करना हम आसान समझते हैं, तो वो ह्यूमन टच में सो जाता है लोगों का। इवन हम कॉलेज में बैठे हैं, कॉलेज के एक हॉस्टल के दूसरे कमरे में कोई आपका मित्र बैठा है, उसके रूम तक चलने में भी 2 मिनट का रास्ता होगा, लेकिन आप फोन करना प्रेफर कर रहे हैं। तो एक कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। तो मैं एज ए यंग स्टूडेंट ये मानता हूँ कि हाँ, आज के दौर में सोशल मीडिया जरूरी है। एक पॉइंट के बाद आपको भी अगर अपना कोई स्किल है, कोई आर्ट है, कोई सिंगर अच्छा है, जैसे आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, किसी को लगता है मैं फ्यूचर में जर्नलिज्म में अपना फ्यूचर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा टूल है टू यूज टूवर्ड्स द करियर। बट अगर हम फ्री बैठे हैं, हम और कोई एक्टिविटी पिकअप नहीं कर रहे और हमें लग रहा है कि ये खाली समय में हम सोशल मीडिया यूज करके, या जस्ट फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे दोस्त यूज करते हैं तो मैं भी करूं, मेरे दोस्त रील्स डाल रहे हैं, देख रहे हैं तो मैं भी देखूं, वो देखा देखी में अपना समय बेकार नहीं करना चाहिए। उससे ज्यादा जस्ट फोकस ऑन द ह्यूमन कनेक्शन, नेचर से कनेक्ट कीजिए, बिल्कुल यूज कीजिए सोशल मीडिया। मैंने यूज नहीं किया इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज नहीं करना चाहिए। तो वी शुड यूज सोशल मीडिया बट फॉर प्रोडक्टिव वर्क, ओकेजनली यूज करना चाहिए, इट शुड नॉट बिकम द सेंटर पीस ऑफ आर पर्सनैलिटी और लाइफ। और इसी तरह से सोशल मीडिया एडिक्शन इज नॉट डिफिकल्ट टू गेट ओवर, बट वॉट यू डू आउट ऑफ सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट। और मैं होप करता हूँ कि

0: का जो यूथ है प्रोडक्टिवली सोशल मीडिया को यूज करेगा.
1: Right, Hiteshwar, that's really incredible. Now that we are heading towards the end of this interview, just one last question. See, there are many students out there जो बहुत talented हैं, बहुत hardworking हैं, लेकिन अपने direction को लेकर बहुत confused हैं. एक कोई ऐसा suggestion या advice जो आपने देना चाहते हैं before we end the interview?
0: आपने शुरुआत की थी ये पूछकर कि talent matter करता है या luck. मैं इसमें एक और चीज जोड़ता हूँ. Talent, luck, hard work. तीन चीजों पे बात करते हैं. जो प्रतिभा है, टैलेंट, प्रतिभा आपको एक दरवाजे तक लेकर जा सकती है, और शायद किस्मत, तकदीर जो है, एंड प्रतिभा, ये दोनों चीजें मिलकर शायद वो अपॉर्चुनिटी को पॉसिबल बना सकती हैं, या उस एक उपलब्धि को पॉसिबल बना सकती है. आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, हकीकत में ये चीज हो सकती है. लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? प्रतिभा होना, कहाँ पैदा हुए, क्या स्किल आपने डेवलप किया, और इनफैक्ट लक होना, किस्मत होना, कि किस्मत मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, मैं आगे क्या करूंगा, क्या ये चीज संभव है या नहीं है. ये दोनों ही हमारे नियंत्रण में नहीं है. जो चीज हमारे हाथ में है वो है मेहनत, हार्डवर्क. सो इवन इफ लक मेक्स यू रीच अ पर्टिकुलर डोर, इट इज योर हार्डवर्क दैट हेल्प्स यू एंटर दैट डोर एंड रीच योर डेस्टिनेशन. तो मैं यही मानता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी क्या है? मेहनत करना. हमें सपने बड़े रखने चाहिए, अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, टीचर्स से सीख लेनी चाहिए. सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित अगर हम रहेंगे, बड़े सपने देखेंगे, तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी पॉसिबल है.
1: थैंक यू सो मच हितेश्वर फॉर ज्वाइनिंग अस. इट वॉज रियली एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन दैट वी जस्ट हैड विद यू. एंड फॉर यंग लिसनर्स, दिस वॉज हितेश्वर शर्मा इन कॉन्वर्जेशन विद आंचल पुंडीर साइनिंग ऑफ.
2: अभी हमने सुनी हितेश्वर शर्मा की सक्सेस स्टोरी. आशा करते हैं ये आपके लिए प्रेरणादायक रही हो. आइए अब हम सुनते हैं लक्ष्य फिल्म का टाइटल ट्रैक.

0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, आज का इतिहास। ईशा, आज 29 सितंबर है, तो कला और साहित्य की दुनिया से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं आज के दिन की, बताएं।
1: आज ही के दिन 1547 में स्पेन में मिगेल डी सर्वांतेस का जन्म हुआ था, जिन्हें दुनिया डॉन कोहोती के लेखक के रूप में जानती है। और 1912 में आज ही के दिन इटालियन फिल्म मेकर माइकलांजेलो एंटोनिनी का जन्म हुआ था। उन्होंने सिनेमा में मॉडर्न लाइफ, अकेलेपन और इंसानी रिश्तों को एक अलग अंदाज में दिखाया।
0: अगर ईशा हम भारतीय सिनेमा की बात करें, तो आज ही के दिन 1932 में महमूद अली यानी हमारे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन महमूद का जन्म हुआ था,
1: जिन्होंने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई।
0: और 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट भी मनाया जाता है,
1: यानी ये याद करने का दिन भी है कि हमारी थाली के खाने के पीछे किसी किसान की मेहनत, पानी, जमीन और बहुत सारे लोगों का श्रम है।
0: बिल्कुल सही कहा ईशा, कला हमें संवेदनशील बनाती है और यही संवेदनशीलता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखने को मिलती है।
1: इतिहास की बातों से आगे बढ़ते हैं कुछ सुफियानी माहौल की तरफ, तो सुनिए दमादम मस्त कलंदर।

0: दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर, यानी क्विक बज़। तो ईशा, आज बताएं हमें कि क्विक बज़ के पिटारे में क्या है।
1: दीपांशु, सबसे पहले तो सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल। हमने आज अक्टूबर जंक्शन की बात की, पर क्या आपको पता है कि दिव्य प्रकाश दुबे की और कौन कौन सी किताबें मशहूर हैं?
0: दोस्तों, मुसाफिर कैफे, मसाला चाय, आको वाको में से किसी एक के बारे में अपने विचार लिखकर हमें जरूर बताइए।
1: और अगर आप दिल्ली में हैं और आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है। डीएजी गैलरी, 22A विंसर प्लेस, जनपथ में फ्रीडम टू फॉर्म नाम की एक आर्ट एग्जिबिशन चल रही है।
0: इसमें बड़ौदा की आर्ट स्कूल की समृद्ध विरासत को पेंटिंग और आर्केलेबल मटेरियल के जरिए दिखाया गया है। यह प्रदर्शनी 24 अक्टूबर तक चल रही है।
1: रोज सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है और एंट्री बिल्कुल फ्री है।
0: वाह, ये तो सच में देखने लायक होगा। और अगर आपको हिंदी कविता और साहित्यिक चर्चाओं का शौक है तो साहित्य अकेडमी का कवि सम्मेलन कार्यक्रम अक्सर रविंद्र भवन में होता रहता है।
1: आप उनकी वेबसाइट sahityakademy.gov.in पर आने वाले कार्यक्रमों का शेड्यूल चेक कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तौबा, तुम्हारे ये इशारे।

0: तो दोस्तों, उम्मीद है युववाणी का आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें आपकी फीडबैक्स का हमेशा इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvanifeedback@gmail.com पर। yuvvanifeedback@gmail.com।
1: तो कल फिर मिलेंगे नए जोश और नई चर्चाओं के साथ। तब तक ख्याल रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।
0: हमें दीजिए अनुमति। मैं ईशा
1: और मैं दीपांशु।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की डेल्टाएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 243 अंक गिर कर 72,529 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The second meeting of the Joint Parliamentary Committee examining the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 is currently underway at Parliament Annex in New Delhi. The officials from the Ministries of Home Affairs and Law and Justice are expected to brief members on various provisions of the proposed legislation. The committee has been tasked with examining the provisions of the bill and submitting its report to Parliament by the last day of the first week of the winter session 2026. Defence Minister Rajnath Singh said that the Indian Navy is acting as a strategic anchor in realising India's resolve of becoming a developed nation by 2047. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. External Affairs Minister Dr.

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सभी को।
1: नमस्कार।
0: और साथियों, हम और आप कितनी दूर दूर बैठे हैं, हमारे विचार आपसे बिल्कुल थोड़े से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, थोड़े अलग हो सकते हैं। कुसुम जी, आपके विचार भी थोड़े से अलग हैं ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल वीरेन भाई, आपने सही कहा कि हम सबकी सोच अलग हो सकती है, पसंद अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं। जो आपके विचार होंगे वो मेरे नहीं हो सकते, जो मेरी पसंद है शायद वो आपकी पसंद ना हो
0: जी, लेकिन फिर भी हम दोनों इस कार्यक्रम को एक साथ लेकर आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ताल मेल होगा ही।
1: बिल्कुल, यहाँ तो हमारी पसंद बिल्कुल एक है और हम कार्यक्रम लेकर आए हैं लोक रंजनी का। और दोस्तों, कहते हैं ना कि साथियों की पसंद अलग अलग होती है। वीरेन भाई, लोगों के रहने का तरीका, बात करने का तरीका, जैसे पहले के टाइम में लोगों का रहन सहन, खान पान सब कुछ अलग था और आज के टाइम पे भी बिल्कुल अलग हो गया है, लेकिन फिर भी सब लोग उस पसंद के हिसाब से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ते रहते हैं
0: जी। तो ऐसा ही एक प्यारा सा लोकगीत आपको सुनवाने वाले हैं हम। इसमें चौधरी चंदू सिंह कुछ ऐसी ही बात बता रहे हैं।
1: बिल्कुल।

0: साथियों आप सुन रहे थे चंदू सिंह को।
1: जी हाँ वीरेन भाई, अभी हमने बात की, मन की बात की, अपनी पसंद की बात की। तो देखिए, जब हम कहते हैं कि ये जो पसंद होती है पहले, तो पहले जो ये हवा होती थी, पहले भी जमाने की हवा पहले कुछ और थी और आजकल कुछ और ही हो गई है
0: जी।
1: तो सही, आपको नहीं लगता कुछ?
0: बिल्कुल लगता है मुझे। तो मैं भी बता देता हूँ आपको कि बहती हवा ने किया इशारा, तुमरे बिन है कौन हमारा। हवा भी बातें करती है, आपको बता दूं मैं। हैं हाँ, जब तुमसे कुछ कहना होता पत्तों को मैं हिला जाती हूँ, तुम्हारे लिए मैं अपने मन के भाव इस तरह कह जाती हूँ।
1: बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत वीरेन भाई। कहते हैं ना कि ठंडी सी हल्की सी हवा जब बयार बहती है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें कुछ कहना चाहती है। हवा का हर झोंका, फिजाओं की ये महक, सब कुछ कितना खूबसूरत एहसास दे जाता है। और कुछ ऐसी ही बात
0: लेखराज कहने वाले हैं, तो सुनवा दें।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, अभी आप लेखराज के गाए इस रागनी के साथ ही तुलसीदास की वो जीवन वृतांत सुन रहे थे जिसने उनके जीवन में परिवर्तन कर दिया।
1: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, जीवन में एक दीपक जला दिया, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए, यानी तमसो मां ज्योतिर्गमय,
0: ज्ञान का दीपक। और कहते हैं ना कि दीपक ने सांझ को पुकारा है, सांध्य गीत तुम्हारा है, तुम मुझ में खो जाओ ना, बस मेरी हो जाओ ना। शायद तुलसीदास भी यही कहना चाहते थे।
1: तो आइए सुनते हैं ओमपाल रतोलवी को।

0: अभी आप सुन रहे थे ओमपाल रतोलवी से ये देवीय गीत।
1: और साथियों, इसी के साथ लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। जाने के बाद आने का सिलसिला जारी रहेगा। दिल शुक्रगुजार है तुम्हारा, मन तुम्हारा आभारी रहेगा।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारा आज का लोकरंजनी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।

0: अब से कुछ ही देर में यानी शाम के 5:30 पर आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल, और आज मेरे साथ हैं।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं रीमा यादव।
0: और आज क्या है खास कार्यक्रम में, सबसे पहले ये नज़र डाल लेते हैं एशियन गेम्स 2026 में आज के हुए मुकाबले और अब तक के हुए मुकाबलों के बारे में तो आपको हम बताएंगे ही, साथ ही साथ भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच के बारे में भी बातचीत होगी। साथ ही साथ WPL रिटेंशन, कौन से खिलाड़ी रिटेन किया गया और कौन से खिलाड़ी जो है वो नहीं रखे गए, उनके बारे में भी आपको एक रिपोर्ट सुनवाएंगे। साथ ही साथ वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ चैम्पियनशिप शुरू होने वाली है 22 अक्टूबर से, उस पर भी खास बातचीत होगी। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक और सुनते रहिए कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

अब बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 में आज और अब तक हुए मुकाबलों के बारे में। जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में आज खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया। निशानेबाजी में नीरू डांडा का स्वर्णिम निशाना, बॉक्सिंग में प्रवीण और अंकुश का फाइनल में प्रवेश और भारी वजन वर्ग में नरेंद्र का कांस्य। 5,000 मीटर में गुलवीर सिंह की पदक हैट्रिक और स्क्वाश और तीरंदाजी में शानदार जीत, इसके बारे में आज हम

बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं शूटिंग से, महिलाओं के ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की नीरू डांडा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरू ने फाइनल में शानदार निशानेबाजी करते हुए 30 में से 28 निशाने सटीक लगाए और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह एशियन गेम्स 2026 में भारत का 5वां स्वर्ण पदक रहा और खास बात यह रही कि इस संस्करण में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण है। यानी जहां एक और भारतीय टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं, वहीं नीरू डांडा ने व्यक्तिगत स्तर पर भी तिरंगा सबसे ऊपर पहुंचाया है। और शूटिंग में बात यही खत्म नहीं हुई, महिलाओं के ट्रैप टीम स्पर्धा में नीरू डांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टीम ने रजत पदक हासिल किया। और इस तरह आज शूटिंग रेंज से भारत को एक स्वर्ण और एक रजत पदक मिला। पुरुषों की ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत की शपथ भारद्वाज, कायनान चिनाई और अहवर रिजवी की टीमें छठे स्थान पर रही। शपथ भारद्वाज ने व्यक्तिगत फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब बॉक्सिंग के रिंग की ओर चलते हैं और महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में भारत की प्रवीण हुड्डा ने चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के साथ प्रवीण ने अपना रजत पदक पक्का कर लिया और अब उनकी नजर स्वर्ण पदक पर है। पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में भारत को बड़ी सफलता मिली। अंकुश पंघाल ने उज्बेकिस्तान के फजलीद्दीन को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। यानी बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दो फाइनलिस्ट सामने आए, प्रवीण और अंकुश, दोनों के पास अब स्वर्ण पदक जीतने का मौका है। हालांकि पुरुषों के 90 किलोग्राम के से अधिक वर्ग में भारत के नरेंद्र बरवाल को कजाकिस्तान के ऐबक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र सेमीफाइनल मुकाबला हार गए, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण उनके नाम कांस्य पदक दर्ज हुआ। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत को एक कांस्य मिला, जबकि दो मुक्केबाजों ने फाइनल का टिकट कटाया। बात कर लेते हैं 5000 मीटर दौड़ की। भारत की लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों के 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इस एशियन गेम्स में अपनी पदक संख्या 3 कर ली। गुलवीर के लिए यह कोई खास उपलब्धि है, क्योंकि उन्होंने प्रतियोगिता में इससे पहले भी पदक जीते थे और आज 5000 मीटर में कांस्य के साथ उन्होंने पदक की हैट्रिक पूरी की। गुलवीर की यह उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए महत्वपूर्ण है। और अब तीरंदाजी की ओर चले तो पुरुषों के रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में धीरज बोमदेवरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर में जगह बनाई। वहीं नीरज चौहान ने भी अपने मुकाबले में जीत दर्ज की और आगे का रास्ता तय किया। दिन के दौरान धीरज ने फिलीपींस के गिरविन गार्सिया और चीनी ताइपे के चैंग सियोंग सुई को हराया और नीरज चौहान ने इंडोनेशिया के रियाग एगा अगाता के बाद दक्षिण कोरिया के किम जेडॉक को भी मात दी। रिकर्व तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों की है प्रगति आने वाली नॉकआउट मुकाबलों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। और अब स्क्वाश के कोर्ट की ओर चलते हैं। महिला टीम स्क्वाश में भारत ने ईरान को 3-0 से हराया। भारतीय टीम की अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और तन्वी खन्ना ने अपने मुकाबले जीतकर भारत को शानदार टीम जीत दिलाई। 3-0 की इस जीत से भारतीय महिला टीम ने अगले दौर में अपनी जगह मजबूत की। और अब टेनिस की बात करें तो टेनिस कोर्ट से भी भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। सुमित नागल ने दक्षिण कोरिया के हॉन्ग को हराकर पुरुष एकल के अगले दौर में प्रवेश किया। पुरुष युगल में अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने भी नेपाल की जोड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। यानी टेनिस में भी भारतीय चुनौती बरकरार है और आने वाले दौर में पदक की उम्मीदें बनी हुई हैं। ट्रैक साइकिलिंग और कैनो स्लालम की बात करते हैं। पुरुषों की टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में रोजित सिंह, डेविड बैकम और रोनाल्डो सिंह की भारतीय टीम 7वें स्थान पर रही। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में भारतीय टीम 6ठे स्थान पर रही। महिला टीम परस्यूट में भी भारतीय टीम ने हिस्सा लिया और 5वां स्थान हासिल किया। कैनो स्लालम में पुरुषों की एक कायक स्पर्धा में हितेश केवट 8वें और प्रद्युम्न सिंह राठौर 10वें स्थान पर रहे। महिलाओं में पल्लवी जगताप 7वें और रीना सेन 9वें स्थान पर रहीं। सर्फिंग और कुराश पर नजर डालें तो सर्फिंग में पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल में भारत के किशोर कुमार अनबरासू को फिलीपींस के टॉबी
के हाथों हार मिली और उनका अभियान समाप्त हो गया। कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम वर्ग में विपिन कुमार को दक्षिण कोरिया के यूएन होनुस से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन खेलों में जीत और हार दोनों होती हैं और भारतीय खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में भी अपना पूरा जोर लगाया। और क्रिकेट की बात करें तो एशियन गेम्स में लगातार बारिश ने क्रिकेट कार्यक्रम को प्रभावित किया। 29 सितंबर को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश मलेशिया के पुरुष क्वार्टर फाइनल मुकाबले भी बारिश के कारण बिना

0: गेंद फेंके रद्द हो गए। उच्च रैंकिंग के आधार पर श्रीलंका और बांग्लादेश को सेमीफाइनल जगह मिली और अब सेमीफाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से और बांग्लादेश का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब एक नजर पदक तालिका पर अगर हम डालें तो अब तक भारत के कुल 48 पदक हो चुके हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। शूटिंग की रेंज से नीरज ढांडा का स्वर्णिम निशाना, महिला ट्रैप का टीम रजत, बॉक्सिंग में प्रवीण और अंकुश का फाइनल प्रवेश, नरेंद्र का कांस्य, 5000 मीटर में गुलवीर की पदक हैट्रिक, स्क्वाश और तीरंदाजी में जीत और टेनिस में आगे बढ़ी भारतीय चुनौती, ये है आज का खेलों का एशियन गेम्स में लेखा जोखा। और खास बातचीत करी हमने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जी राजा रामन से, आइए जानते हैं वो क्या बताते हैं अभी तक के प्रदर्शन पर।
1: उम्मीद के अनुसार तो नहीं है, क्योंकि अगर आप निशानेबाजों की बात करें सबसे ज्यादा बात उन्हीं की होती है। पिछली बार 22 मेडल आए थे, अब के बार शायद खत्म होते हुए 15 मेडल भी नजर नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा निराशा जरूर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा भी परेशान नहीं होना चाहिए खिलाड़ी को, फैन को। थोड़ा सा चिंतन जरूर करना चाहिए सबको, और अगर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है तो क्यों हुआ है, ये वजह खोजनी होगी सबको, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। 4 अक्टूबर को एशियन गेम्स खत्म होंगे, उसके बाद करना है। हम बहुत जल्दी निशाना टांग देते हैं हमारे एथलीटों पे, थोड़ा सा सबर हम सबको दिखाना होगा।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि कई जगह जहां उम्मीद थी पदकों की वहां नहीं आए, और कुछ खेल ऐसे भी होंगे, खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जिन्होंने अचंभित भी किया होगा।
1: ऐसे खेल में बिल्कुल खुशी होती है, अगर कुछ खेल में मेडल आए हैं जहां पे उम्मीद नहीं था तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ खिलाड़ियों से उम्मीद कम थी वो उनका पदक आ गया तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्या हम चाइना के करीब पहुंचे हैं। अगर हमारा देश चाहता है कि हम दुनिया के टॉप 10 देशों में हो ओलंपिक खेलों में, या फिर टॉप 5 की भी बात करते हैं हम कभी कभी, अगर इतना बड़ा हमारा लक्ष्य है, क्या हम उस रास्ते पे सही चल रहे हैं, ये सोचना होगा हम सबको। लेकिन आज के अभी तक का जो एविडेंस है उसमें हम शायद थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, थोड़ा सा स्लिप हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। 2036 ओलंपिक गेम्स की हम बात करते हैं, 2032 की अगर बात करते हैं तो उसकी तैयारी जरूर हो सकती है, और फिर हम अच्छा प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं। अगर हम इस एशियन गेम से सबक लेते हैं 2028 वाले गेम में और 2032 वाले गेम में, ओलंपिक गेम में प्रदर्शन सही होगा और 2036 के लिए हमारी तैयारी और सही हो सकती है।
0: सर, आपने भी कहा कि हाँ हम पिछड़ चुके हैं पिछले हांगझो गेम से, अब के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो सर क्या वजह लगती है आप?
1: बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि कई हमारे खिलाड़ियों पे हमने दबाव डाला है, लगातार वो खेलते आए हैं। मन को और शरीर को फ्रेश रखना होता है ऐसे कॉम्पिटिशन से पहले, शायद उतने फ्रेश नहीं थे जितने होने चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटिशन खेलते आएंगे तो थकान जरूर होगी, ये इसका एहसास शायद खिलाड़ी को नहीं होगा, इसका एहसास शायद प्रशिक्षक को नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाकी देश जब आगे बढ़े हैं हम वहीं के वहीं रह गए। थोड़ा सा और हमको सुधार लाना चाहिए हमारे सिलेक्शन सिस्टम में, और एथलीट के मन को और एथलीट के शरीर को फ्रेश रखना चाहिए। अगर हम ये करते हैं तो अच्छे नतीजे और जरूर आएंगे।
0: और अब एक नजर डाल लेते हैं एक नेशनल रिकॉर्ड अलर्ट पर, जो मेंस पोल वॉल्ट में देव मीना ने सेट किया है। 5.50 मीटर के मार्क तक उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा जो 5.46 मीटर का था, और अब उनका नेशनल रिकॉर्ड है 5.50 मीटर का। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे होने वाले मुकाबलों पर नजर डालते हैं, और कल से गोल्फ के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं और गोल्फ में भी शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी अब तक करते आए हैं, और क्या उम्मीदें हैं गोल्फ से ये हमने जाना जनरल सेक्रेटरी चंपिका सयाल से, एशियन गेम्स में क्या उम्मीदें हैं गोल्फ के खिलाड़ियों से, आइए सुनते हैं।
2: तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, मेरे को लगता है विमेन टीम है जिसमें अदिति अशोक, वो तो एलपीजीए प्लेयर है, तो दैट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर यू नो प्लेइंग। और दो बाकी जो हमारे प्लेयर हैं दीक्षा दागर और प्रणवी उर्च, वो दोनों यूरोपियन टूर में खेलते हैं। हमारे महिलाएं की टीम है इससे बेहतर कभी हुई नहीं है, इट्स द बेस्ट टीम पॉसिबल दैट हैज गॉन टू एशियन गेम। सो मैं ड्रॉ देख रही थी, मैंने देखा है कि हमारे प्लेयर्स पहले ही में कोरिया और चाइनीज टाइपे के साथ ड्रॉ हुआ उनका। सो देखो अब लोकल हालात डिपेंड करते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज होम साइड को होता है ना, जैपनीज प्लेयर्स को है। सो बाकी वहाँ पे जो प्लेइंग कंडीशन है, आपको पता है ये आउटडोर गेम है, तो आई थिंक प्लेइंग कंडीशन बहुत ही देखने पड़ेंगे नेक्स्ट 4 डेज क्या निकलेगा। पर आपको पता है कि अदिति अशोक ने गोल्ड छोड़ते छोड़ते पिछले साल 2022 में शी गॉट सिल्वर मेडल, तो उसके भी अंदर से यू नो इच्छा तो ज़रूर होगी कि वो गोल्ड लेके आए, और बाकी टीम का हम तो चाहते हैं कि वो पोडियम फिनिश करें।
0: और अब बात कर लेते हैं भारतीय पहलवान जो मैट पर उतरने को तैयार है, यानी कि कुश्ती की। इस बार फ्री स्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन तीनों वर्गों में मुकाबले होंगे। पदकों की संख्या के लिहाज से कुश्ती एशियन गेम्स में भारत का तीसरा सबसे सफल गेम है। और हांगझोउ 2022 की बात करें, यानी कि पिछले एशियन गेम्स की बात करें, तो 6 पदक आए थे कुश्ती में, जिसमें दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था, जबकि अमन सरावत, अंतिम पंघाल, सोनम मलिक, किरण और सुनील कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किए। यानी पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 6 पदक जीते और नागोया में इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। महिला कुश्ती पर नजर डालते हैं तो इस बार नई पीढ़ी पर नजर होगी। 50 किलोग्राम भार वर्ग में 53 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम पंघाल, 57 किलोग्राम भार वर्ग में मनीषा भानवाला, 62 किलोग्राम में मानसी अहलावत, 68 किलोग्राम में निशा दहिया और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक चुनौती पेश करेंगी। महिला कुश्ती में भारत की विरासत अब काफी मजबूत हो चुकी है। 2018 में विनेश फोगाट ने इतिहास रचा था और 2022 में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीत कर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था, और अब अंतिम एक बार फिर 53 किलोग्राम में चुनौती पेश करेंगी। इस बार 50 किलोग्राम में दीपांशी के सामने जापान की यूई सुसाकी जैसी बड़ी चुनौती मौजूद है, जबकि 57 किलोग्राम में जापान की विश्व चैंपियन अकारी भी मैदान में है। यानी भारतीय पहलवानों को शुरुआत से ही एशिया की शीर्ष खिलाड़ियों से मुकाबला करना होगा। पुरुष फ्री स्टाइल की बात करें तो 57 किलोग्राम में अमन सरावत, 63 में सुजीत कलकल, 74 में सागर जगलान, 97 में दीपक पुनिया, 125 में रजत रूहल। अमन सहरावत के नाम पहले ही ओलंपिक पदक है, पेरिस 2024 में उन्होंने 57 किलोग्राम में कांस्य जीता था, और 65 किलोग्राम में सुजीत कलकल भारतीय चुनौती में प्रमुख नामों में है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इन्हें एशियाई चैंपियन और 2026 एशियन गेम्स में प्रमुख पहलवानों में शामिल किया है। 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पुनिया का अनुभव महत्वपूर्ण रहेगा और अब वे इसकी चुनौती स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे पहले वो 86 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक हासिल कर चुके हैं। ग्रीको रोमन में भी भारत तैयार है। 60 किलोग्राम में सुमित दलाल, 77 में अमन, 87 किलोग्राम में सुनील कुमार, 97 किलोग्राम में नितेश कुमार होंगे। इनमें सुनील कुमार पर विशेष नजर होगी। हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और वे एशियन चैंपियन भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर भारत की कुश्ती के पास एक समृद्ध इतिहास है। 1954 से लेकर अब तक कुल 65 पदक, 2014 में योगेश्वर दत्त का स्वर्ण, 2018 में बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के स्वर्ण, और हांगझोउ में 6 पदक। मैट पर ताकत होगी, दांव पेच होंगे, संघर्ष होगा, साथ ही साथ अमन सहरावत की फुर्ती, सुजीत कलकल की तकनीक, दीपक पुनिया का अनुभव, अंतिम पंघाल की चुनौती और भारतीय महिला पहलवानों का दमखम नागोया में सबकी परीक्षा होगी। और कुश्ती से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम भारत ने पूल बी में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 5 मुकाबले जीते और शीर्ष स्थान हासिल किया। आखिरी पूल मैच में भारत ने सिंगापुर को 7-0 से हराया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना दक्षिण कोरिया से होगा। बॉक्सिंग की बात करें तो सेमीफाइनल में रिंग में भी भारत की नजरें पदक पर होंगी। कल 55 किलोग्राम भार वर्ग में जादूमणि सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगे। महिलाओं में 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 60 किलोग्राम में प्रिया घनघस और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहन सेमीफाइनल में भारत की चुनौती पेश करेंगी। सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सभी मुकाबलों का कम से कम एक कांस्य पदक पक्का हो चुका है और अब लक्ष्य होगा फाइनल में पहुंचकर स्वर्ण या रजत की लड़ाई करना। तीरंदाजी की बात करें तो कंपाउंड वर्ग के टीम और मिश्रित टीम मुकाबलों के में पदक के लिए भारतीय तीरंदाज मैदान में होंगे। महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वैनम, चिकिता तनी पार्थी और पृथिका प्रदीप भारत की चुनौती संभालेगी। पुरुष टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम।

थिरुमुरु उतरेंगे और मिश्रित टीम वर्ग में भी भारत की पदक उम्मीदें रहेंगी। साइकिलिंग यानी कि ट्रैक पर रफ्तार, ट्रैक साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी महत्वपूर्ण मुकाबलों में नजर आएंगे। पुरुषों के स्प्रिंट और टीम स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह, लेतुनजम सहित भारतीय साइकिलिस्ट चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं के कीरिन और टीम परस्यूट में भी भारत की भागीदारी रहेगी। गोल्फ नई पदक दौड़ की शुरुआत, और गोल्फ जो है एक शानदार गेम है, और अभी हमने कुछ ही देर पहले अभी आपको सुनवाई चीफ सेक्रेटरी की क्या उम्मीदें हैं और कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं वो पदक के दावेदार माने जा रहे हैं, अभी आपने सुना। और बात करते हैं, पुरुष और महिलाओं के व्यक्तिगत टीम स्पर्धा का पहला राउंड खेला जाएगा और भारत की ओर से पुरुष वर्ग में युवराज संधू, वी रैलावत और सप्तक तलवार, जबकि महिला वर्ग में अदिति अशोक, दिशा डागर और प्रणवी उर्स मैदान में होंगी। कुश्ती के मैट पर पदक की जंग, बॉक्सिंग रिंग में फाइनल की लड़ाई, तीरंदाजी के पदक के मुकाबले और हॉकी मैदान पर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल। भारत के लिए हर तरफ चुनौती भी है और पदक की उम्मीद भी है।

एक और बड़ी खबर आई है, दूसरा गोल्ड आज के दिन का। पहला गोल्ड हमने जीता था आज सुबह, और शाम होते होते दूसरा गोल्ड भारत की झोली में आ गया है। यानी कि कुल मिलाकर 6 गोल्ड मेडल भारत की झोली में आए हैं, और वो आए हैं 4x400 विमेन्स रिले में। किरण प्राची पुवान्ना और विद्या रामराज ये खिलाड़ी थे इसमें, और इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

0: से चलते हैं क्रिकेट की ओर, क्योंकि खेला जा रहा है 3 मैचों का एक दिवसीय सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच। और आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी रीमा यादव की तैयार की गई ये रिपोर्ट दूसरे ओडीआई इंटरनेशनल पर।
1: इन दिनों भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें भारत पहला मैच जीत चुका है। दूसरा मुकाबला बुधवार 30 सितंबर को गुवाहाटी के बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। पहले वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में अब टीम इंडिया की नजर सीरीज अपने नाम करने पर होगी, जबकि वेस्टइंडीज के सामने सीरीज को बराबरी पर लाने की चुनौती होगी। अगर पहले मुकाबले की बात करें तो भारत के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कई सकारात्मक बातें सामने आई। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 295 रन बनाए थे। शुरुआत में उसके सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैंपबेल ने पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े। ग्रीव्स ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया और 101 रन की पारी खेली, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने मैच का रुख बदल दिया। कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 40 रन देकर 4 विकेट हासिल किए और वेस्टइंडीज को 300 के आंकड़े तक पहुंचने से रोक दिया। जवाब में भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने 110 रन की शानदार पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने नाबाद 139 रन बनाए। दोनों के बीच 151 रन की साझेदारी ने वेस्टइंडीज की वापसी की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। खास बात यह रही कि विराट कोहली ने इस पारी के दौरान वनडे क्रिकेट में 15,000 रन भी पूरे किए और सचिन तेंदुलकर के बाद इस मुकाम तक पहुंचने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। अब बात दूसरे मुकाबले की। गुवाहाटी का बारसा पारा क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, इसलिए दर्शकों को एक बार फिर रनों से भरपूर मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में कुछ मदद मिल सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले परिस्थितियों को समझते हुए फैसला लेना चाहेगी। भारत के लिए सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष उसकी टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी है। शुभमन गिल कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और पहले मैच में उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया। उनके साथ रोहित शर्मा की मौजूदगी भारत को अनुभव देती है, जबकि विराट कोहली ने पहले मैच में दिखा दिया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय उनका अनुभव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिलाकर गुवाहाटी में होने वाला यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अलग अलग मायने रखता है। भारत के पास सीरीज 2-0 से अपने नाम करने का मौका है, जबकि वेस्टइंडीज के लिए यह करो या फिर सीरीज गंवाने की स्थिति वाला मुकाबला है।
2: की बात को ही आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं विमेंस प्रीमियर लीग रिटेंशंस पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में, सुनते हैं क्या है खास।
1: आइए अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की सबसे चर्चित T20 लीग यानी विमेंस प्रीमियर लीग 2027 की। पांचों टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। रिटेंशन का काम 28 सितंबर 2026 को पूरा हुआ। WPL 2027 के लिए कुल 63 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है, जिसमें 23 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। अब टीमों के पास अपनी स्क्वाड पूरी करने के लिए 27 स्लॉट बाकी हैं, जिनमें 7 विदेशी खिलाड़ियों के स्लॉट हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली ने 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इनमें जेमिमा रॉड्रिक्स, शफाली वर्मा, मारीजाने कैप और एनाबेल सदरलैंड जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। गुजरात ज्वाइंट्स ने सबसे ज्यादा 15 खिलाड़ियों को अपने साथ बरकरार रखा है। टीम की रिटेन की गई खिलाड़ियों में एशले गार्डनर, बेथ मुनी, सोफी डिवाइन, रेणुका सिंह और यास्तिका भाटिया जैसे नाम शामिल हैं। अब बात मुंबई इंडियंस की। मुंबई ने 11 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ अमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, निकोला कैरी और शबनीम स्माइल जैसे बड़े नाम टीम में बने हुए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो इसमें 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। टीम में स्मृति मंधाना, ऋचा घोष, पूजा वस्त्राकर, राधा यादव और श्रेयंका पाटिल जैसे भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं एलिस पेरी, जॉर्जिया वोल और लॉरेन बेल जैसे विदेशी खिलाड़ी भी टीम के साथ बने हुए हैं। और आखिर में यूपी वॉरियर्स यूपी ने 11 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। टीम में दीप्ति शर्मा, मेग लैनिंग, हरलीन देओल, सोफी एक्लेस्टोन और शिखा पांडे जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं। रिटेंशन के साथ कुछ बड़े नाम टीमों से अलग भी हुए हैं। आरसीबी ने ग्रेस हैरिस को रिलीज किया है, दिल्ली कैपिटल्स ने स्नेह राणा और लीजल ली जैसे खिलाड़ियों को रिलीज किया, जबकि यूपी वॉरियर्स ने किरण नवगिरे और डिएंड्रा डॉटिन को रिलीज किया है। मुंबई इंडियंस ने साइका इशाक और जी कमालिनी समेत 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। अब अगली नजर रहेगी WPL 2027 की प्लेयर ऑक्शन पर। ये नीलामी 28 अक्टूबर 2026 को कोची में होगी। इसके बाद WPL 2027 का सीजन 14 जनवरी से 7 फरवरी 2027 तक खेला जाएगा।
2: और अब बात कर लेते हैं विमेन इंडियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप की, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होने वाली है। और सबसे पहले सुनते हैं सेक्रेटरी जनरल गोल्फ एसोसिएशन की चंपिका सयाल को, क्या बताती हैं और कितनी तैयारी है, खिलाड़ी कौन कौन है और कितनी संभावनाएं हैं इस बार इस चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ियों की।
3: ये हमारा जो विमेन इंडियन ओपन है विश्व में एक बड़ा अच्छा माना जाता है इवेंट है। इसमें $500,000 का प्राइज मनी रखा गया है। इसमें 114 प्लेयर्स खेलेंगे और हमारे कम से कम 25-26 कंट्री से प्लेयर्स आ रहे हैं ये खेलने के लिए। हमारे इंडिया की लीड चार्ज करेंगे ईशा दागर, रणवी उर्ज और हिताची बख्शी है और वानी कपूर जी है। तो अभी जो हमारा एशियन गेम में टीम गई हुई है वहाँ पे खाली आदित्य अशोक एक दूसरा इवेंट खेल रही है, बट बाकी सारे जो प्लेयर हैं वो यहाँ पे। हमारा जो ये टूर्नामेंट है 22 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक है, 4 डेज, और बहुत कंडीशंस टफ हैं और इसमें हमारे प्लेयर्स की मेहनत बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू गेट द टॉप ऑनर्स। हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे प्लेयर्स को तैयार कर सकें।
2: आपने सुना इंडियन गोल्फ एसोसिएशन की सेक्रेटरी जनरल चंपिका सयाल को, और गोल्फर से खास बातचीत करी है हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने। तो आइए सुनते हैं हिताशी बख्शी क्या कहती हैं अपनी तैयारियों को लेकर।
4: जैसे कि हम सब जानते हैं लास्ट ईयर में 3rd आई थी एंड अब पूरे 10 ईयर्स हो जाएंगे जब कोई भी एक इंडियन ने इंडियन सॉइल पे नहीं जीता है। तो काफी लोगों का ये मानना है कि क्या ये इतना लंबा टाइम जो निकल चुका है, क्या प्लेयर्स की आग खत्म हो गई है, क्या प्लेयर्स को और प्रेशर लग रहा है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जितना लंबा टाइम खींचेगा उतना प्लेयर की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी इन अ गुड वे, इन अ वे कि हम ये चाहते हैं कि अब तो पिछली बार हम 3 इंडियंस थे जो top 5 में आए थे, इस बार हम चाहते हैं कि top 3 के 3 इंडियंस ही रहे। ऐसी आग के साथ हम लोग वापस आ रहे हैं एंड अगर आप पूछो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन जीतना है। मैं हर दिन जब भी प्रैक्टिस में जाती हूँ इसी मकसद से जाती हूँ कि कोई भी मैच खेलूँ वो जीतूंगी एंड इंडियन ओपन जो इतना करीब है मेरे दिल के, मेरे होम क्लब DLF में होता है, उसको तो नहीं छोड़ना है, उसके लिए पूरी जान लगा देनी है। रिजल्ट ऑफ कोर्स हाथ में नहीं है पर मेहनत तो हाथ में है ना अपनी, तो मेहनत के साथ जाएंगे और देखेंगे क्या होता है।
5: गोल्फ कोर्स के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा पिछले बार थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, क्या बात है उसके बारे में बताएंगे।
4: सो DLF गोल्फ कोर्स खुद ही बहुत एक हार्ड गोल्फ कोर्स बनाया गया था फ्रॉम द स्टार्ट। ऐसा नहीं है कि रातों रात खड़ा हो गया और सबको एकदम से लगा कि ये क्या है। जब ये बना ही था 10-12 साल पहले नया DLF, तो ये बना ही इस मकसद से था कि हम कुछ अलग लाएंगे इंडिया में, कुछ ऐसा लाएंगे कि बाहर के लोग आके भी बोले कि क्या गोल्फ कोर्स बनाया है। काफी टाइम से हमारे इधर इंडिया में ये रहा है कि जब भी फॉरेनर्स आते थे उनको लगता था अरे तो बहुत सिंपल सा गोल्फ कोर्स है, पतला पतला से बनाया है, खुला खुला से बनाया है, कुछ ऐसा खास दिखा नहीं उनको। तो DLF ने की एक कोशिश लाई और इतनी अच्छी तरह से लाई है कि अब बाहर के प्लेयर भी डरते हैं आने से, बोलते हैं कि कितना टफ है ये गोल्फ कोर्स। एंड अगर आप बोलो ये टफ क्यों है, हमारा जो ग्रीन स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है, नॉर्मली इंडिया में इतना फास्ट कोई देखता नहीं है। हमारे जो स्लोप होते हैं, जो ढलाने होती है गोल्फ कोर्स पे, काफी फ्लैट था पहले इंडिया में। बाहर हम जब भी खेलते थे बहुत ऊपर नीचे खेलते थे, DLF ने उसको ऊपर नीचे ही नहीं बहुत ऊपर नीचे कर दिया ताकि हम बाहर वालों को भी कॉम्पिटिशन दे। हम जब इंडिया से यूरोप जाते हैं बाहर खेलने तो हमें बहुत बाहर जैसा फील होता है कि अरे ये कहाँ आ गए, कौन सी कंट्री में आ गए, कैसा सब कुछ चल रहा है। बट जब ये लोग यहाँ आए तो इनको भी तो ऐसा फील हो, इसलिए DLF ने जिस तरह बनाया है वो बनाया है।
5: पिछली बार 3रा स्थान था, 3रा नंबर था, पहले नंबर पे जाने के लिए जाहिर सी बात है तैयारी की होगी, कितना पसीना बहाया है।
4: मैंने इतना बहाया कि मतलब मेरे हाथ में खून आते हैं अभी। हम रोज को टेप लगाते हैं, रोज मारते हैं और मेरा जो कोच अनित्य चांद सर है जो पिछले 17 साल से मेरे कोच हैं, वो जब भी मेरा हाथ देखते हैं और जब भी देखते खून भरा, वो ये नहीं बोलते कि बैठ जाओ, बोलते हैं अच्छा है कल दूसरे हाथ में भी होना चाहिए ये बैंडेज, इतनी मेहनत।
2: तो इतनी मेहनत करते हैं हमारे खिलाड़ी, तब जाकर कहीं गोल्ड मेडल और ट्रॉफी हमारे हाथ लगती है। तो एशियन गेम्स 2026 चल रहे हैं, मेडल टैली पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहले नंबर पर बरकरार है चाइना 254 मेडल्स के साथ, जिसमें 143 गोल्ड हैं, 62 सिल्वर हैं और 49 ब्रॉन्ज मेडल है। दूसरे नंबर पर है जापान जिसके 181 मेडल्स हैं कुल, जिसमें 44 गोल्ड हैं, 71 सिल्वर हैं, 66 जो हैं ब्रॉन्ज मेडल है। कोरिया तीसरे स्थान पर है 95 मेडल्स के साथ, 24 गोल्ड, 27 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज। और उज़्बेकिस्तान चौथे स्थान पर है, 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और भारत 11वें स्थान पर है 5 गोल्ड मेडल्स के साथ और 6 गोल्ड मेडल्स हो चुके हैं अभी तक और 21 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। और आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को, रीमा यादव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
6: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की ब्लू वाटर नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है।
8: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
7: विदेशी

0: अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में आज हुई। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी दी। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित करने की बात कही। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से शिष्टाचार भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष बल दिया गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। जापान एशियाई खेलों में महिला 4x400 रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं 4x400 पुरुष रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स्ड वर्ग में भारतीय टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister also emphasized that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The second meeting of the Joint Parliamentary Committee examining the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 was held at Parliament Annex in New Delhi. The committee has been tasked with examining the provisions of the bill and submitting its report to the Parliament by the last day of the first week of the winter session 2026. The committee comprises 21 members from the Lok Sabha, nominated by the Speaker, and 10 members from the Rajya Sabha, chaired by Lok Sabha MP Sanjay Jaiswal. The bill seeks to amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010 with the objective of making the use of foreign contributions more transparent and accountable. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers

0: उद्भूतमस्ति, अथ च विश्वस्य तृतीयं बृहत्तमं विमानयान विपणि भवितुं कार्यं कुर्वन्नस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां 27-अधिक-2000तमवर्षस्य रूट्स एशिया इत्यस्मिन् विषये पूर्वावलोकन वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीनायडुः अवदत् यत् भारतस्य लक्ष्यमस्ति यत् 27-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तं वर्तमानस्य 24 कोटितः 30-100 कोटि यावत् यात्रिणां संख्या षड्गुणितं वर्धयेदिति। देशे प्रचाल्यमान विमानस्थानकानां संख्या 14-अधिक-2000तमे वर्षे 74 वर्तमानकाले 66-अधिकैकशततः अधिका जाता इति मंत्री अवधानं दत्तवान्। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान इत्यस्य विषये प्रवदन् श्रीनायडुः अवदत् यत् अनया योजनया संपूर्णे देशे विमानयात्रा सुलभतरा जाता। मंत्री अवदत् यत् आगामि वर्षस्य मार्च मासस्य 16 दिनांकात् नवदिल्ल्यां 27-अधिक-2000तमवर्षे रूट्स एशिया इत्यस्य 23तमस्य संस्करणस्य आतिथ्यं भारतं करिष्यति। ऐषमः एशियन क्रीडासु नीरुढांडा इत्येषा महिलानां ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धायां स्वर्णपदकं प्राप्तवती, प्रथमा भारतीया शूटर भूत्वा इतिहासं निर्ममे। इतः प्राक् सा आशिमा अहलावत मनीषा कीर इत्येताभ्यां सह महिलानां ट्रैप दल स्पर्धायां रजत पदकं प्राप्तवती। बॉक्सिंग इति मुष्टामुष्टि क्रीडायां परवीन हुड्डा अंकुश पंघालः च अद्य निशियो इत्यत्र क्रीडायां उपान्त्यचक्रीय विजयैः स्वस्व भारवर्गेषु स्वर्णपदक स्पर्धायां प्रविष्टवन्तौ। एथलेटिक्स क्रीडायां पुरुषाणां जैवलिन थ्रो स्पर्धायां भारतं 2 पदके विजितम्। यशवीर सिंह रजत पदकं प्राप्तवान्, रोहित यादव कांस्य पदकं च विजितवान्। पुरुषाणां लॉन्ग जंप इत्यस्मिन् श्रीशंकर मुरली इत्यसः रजत पदकं प्राप्तवान्। 26-अधिक-2000तमे वर्षे एशियन क्रीडासु भारतमाहत्य 50 पदकानि समर्जितानि इति वार्ताः।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है शाम के 6:30 और 15 सेकंड। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम, राम।
1: और साथियों, जिस कार्यक्रम में गांवों की बात हो, देश दुनिया की बात हो, आपके काम की बात हो, उसे कहते हैं ग्राम संसार। और आज के इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं आपके दो साथी, मैं वीरेंद्र पाल सिंह
0: और मैं हूं कुसुम।
1: और कुसुम, आज एक बड़ा ही खास दिन है। हमारी जो मुख्य आवश्यकताएं हैं ना, उनमें से भोजन भी एक है, और भोजन के प्रकार हमारे पास भिन्न भिन्न हैं। उसमें अनाज भी हैं, दालें भी हैं, उसमें फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, और दुग्ध उत्पाद भी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कुसुम बहन कि हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या है और फिर भी हमारे देश में कोई भी खाद्य संकट नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, क्योंकि सरकारें और हमारे यहाँ के लोग बहुत ही प्रबुद्ध हैं और बहुत ही अच्छे से अपने अन्न का संरक्षण करते हैं।
0: बिल्कुल वीरेंद्र भाई, और आज हम ये दिवस मना रहे हैं, खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि खाद्य हानि यानी कटाई और उत्पादन के दौरान होने वाले नुकसान, और खाद्य बर्बादी यानी रिटेल और घरों में होने वाली जो बर्बादी होती है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना और उसका समाधान खोजना।
1: जी, और इसी से

0: जुड़ा हुआ सरकार का एक और प्रयास है कुसुम बहन
1: जी
0: के 28 और 29 सितंबर को पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026। और इसका भी मुख्य उद्देश्य ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा रबी के फसलों के तहत उत्पादन हो और हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों। तो
1: बिल्कुल
0: क्यों ना,
1: आइए फिर हम सुनवाते हैं रेडियो रिपोर्ट इसके प्रति, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 पर सुनते हैं ये रेडियो रिपोर्ट।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा रबी अभियान 2026 कृषि क्षेत्र में रबी सीजन की तैयारियों को गति देने और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान का आयोजन पूसा स्थित भारत रत्न सी सुब्रमण्यम सभागार नास कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें देश भर के कृषि मंत्री, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिक तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन एवं समापन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। उन्होंने रबी सीजन की तैयारी पर जानकारी देते हुए विस्तार से कहा,
3: कल से लगातार हमारे रबी अभियान के लिए बैठक जारी है, लेकिन इसके पहले रबी की तैयारी के लिए मुख्य रूप से पहले जिला स्तर की बैठकें हुई, फिर राज्य स्तर पर राज्यों ने चर्चा की। कृषि वैसे भी राज्य का विषय है और काम जमीन पर राज्यों में ही होता है, तो राज्य स्तर की बैठकें हुई। इस रबी अभियान के लिए राज्य भी निरंतर 15 दिन से तैयारी कर रहे थे। रबी के हर पहलू पर और खेती के हर पहलू पर राज्यों के बीच में चर्चा हुई। कल सभी राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, एबीएसबी और उनके अधिकारियों की बाकी टीम आई है। कल दिनभर सवेरे 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक राज्यों के अधिकारियों की टीम से व्यापक विचार विमर्श हुआ। अलग अलग योजनाओं की समीक्षा भी राज्यपाल ने हुई और आज कृषि मंत्रीगण राज्यों के इस बैठक में उपस्थित है। आपको जानकारी देना चाहता हूं, एक तो भारत में अगर कृषि विकास की दृष्टि से देखने का अध्ययन हुआ है, अगर 3 हिस्सों में भारत की कृषि विकास यात्रा को बांट दिया जाए तो वो 3 चरण होंगे, 1967 से 1995, 1996 से 2014 और फिर 2015 के बाद का दौर। खाद्यान्न उत्पादन में जो औसत वार्षिक वृद्धि की दर है वो 67 से 95 के बीच में अगर आप देखें, 4.1 मिलियन टन रही और 96 से लेकर 2014 के बीच में 3.9 मिलियन टन रही और 2015 के बाद ये बढ़ के 8.4 मिलियन टन हो गई। 2015 के बाद कृषि की औसत विकास दर ये 4.5% रही है, 4.5%, जबकि 1967 से 95 तक और 96 से लेकर 2014 तक ये लगभग 3% रही है। मतलब औसत विकास दर में 50% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसमें अलग अलग अनाज है उसमें डिटेल में, लेकिन कृषि की विकास दर लगातार हमारी उसमें वृद्धि लगातार जारी है। अभी इस साल अलमीनों का संकट उसकी आशंका थी और अलमीनों से निपटने का व्यापक प्रयत्न अप्रैल से ही हमने प्रारंभ कर लिया था। अभी इस बीच में जो वर्षा की स्थिति है, लगभग 12% वर्षा की कमी है। पहले ये 24-25 साल तक 14% की कमी थी, लेकिन अब ये पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है तो घटके 12% रह गई है, लेकिन वर्षा भी आसमान हुई है, कुछ जगह सामान्य से कम हुई है, लेकिन कई जगह सामान्य से ज्यादा वर्षा भी हुई है। कम वर्षा के कारण अलनीनो के संकट के कारण जो आशंका थी कि खरीफ की फसल में जो एरिया होता है सोयाबीन का, बोनी का, वो काफी कम हो जाएगा, लेकिन मुझे ये कहते हुए संतोष है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसानों की मेहनत, आईसीआर और बाकी सबके साथ मिलकर हमने जो कंटेनमेंट प्लान बनाए थे उसके कारण जो कमी बोनी के एरिया में रही है वो केवल 1% रही है, कम तो हुई 1% कम रही है लगभग, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 30 सितंबर तक खरीफ की बोनी का समय लगभग समाप्त हो गया, कुछ राज्यों में थोड़ी बहुत बोनी चलती है, लेकिन उसके बावजूद भी एरिया हमारा ज्यादा नहीं घटा। क्षेत्रफल में जो गिरावट आई है वो सबसे ज्यादा आई है धान के क्षेत्रफल में, लगभग 16.32 लाख हेक्टर की कमी धान के क्षेत्र में हुई है, कुछ हद तक मक्का सोयाबीन और कपास के क्षेत्रफल में भी कमी है, लेकिन एक सकारात्मक बात यह है कि उड़द बाजरा ज्वार तिल सूरजमुखी और तुअर में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, मतलब दालों में और मोटे अनाजों में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। राज्यवार अगर देखें जहां एरिया कम हुआ है मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात है, इनमें कुल मिला के भारी वर्षा और बाढ़ के कारण भी कुछ दिक्कतें पैदा हुई और उसके कारण लगभग 6,11,000 हेक्टर क्षेत्र में फसल प्रभावित होने की सूचना मिली है, नुकसान का भी आकलन हो रहा है। लेकिन विशेष बात यह है कि अलिनो के संकट के बाद बावजूद भी हम लगभग पिछले साल के बोनी के आसपास हम लोग पहुंच पाए हैं। मित्रों, खाद की पर्याप्त उपलब्धता इस साल भी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी पर्याप्त उपलब्धता है, कीमतें फर्टिलाइजर की बढ़ के लगभग दुगनी के आसपास पहुंच चुकी है, रोज कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन आज इस रबी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी खाद की हमारे देश में कोई कमी नहीं है और पर्याप्त उपलब्धता उर्वरक की हमारे रबी के लिए रहेगी। मैं संक्षिप्त आग्रह के ऊपर बताना चाहता हूं कि 2026 और 27 की तैयारी की दृष्टि से राज्यों की तरफ से जो डिमांड आई थी उसको ध्यान में रखते हुए कुल आकलित आवश्यकता है 380 लाख मीट्रिक टन, जिसमें अलग अलग डीएपी और यूरिया सब सम्मिलित है। अभी जो हमारी उपलब्धता है संतोष की बात यह है कि 163 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उर्वरक का स्टॉक हमारे पास स्टॉक मौजूद है, ओपनिंग स्टॉक, जबकि पिछले साल इसी समय रबी की शुरुआत में केवल 122 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, तो पर्याप्त स्टॉक हमारे पास है, हमारे पास कोई कमी उर्वरक की नहीं है। हमने जो टारगेट्स अभी तय किए हैं रबी की फसल के लिए उसके बारे में भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। रबी की जो उत्पादन के लक्ष्य हैं हमारे 25 और 26 में 365.60 मिलियन टन हमारा टारगेट था, हमने उससे बढ़ के 376 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा उत्पादन 376.56 मिलियन टन उत्पादन किया। 26 और 27 में अलिनो के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई उसको देखते हुए भी जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो 373 लाख मीट्रिक टन 373.93 मिलियन टन यह हमने रखा है, जिसमें अकेली रबी के लिए 177.72 मिलियन टन टारगेट रखा गया है। हमने हिम्मत से ये कोशिश की है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम क्रॉप पैटर्न चेंज करके पानी पानी की उपलब्धता, मिट्टी मिट्टी में जो नमी है उसको देखते हुए राज्यवार चर्चा करके हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और हमारी कोशिश है कि जिन इलाकों में बारिश कम हुई है या जिन में पानी कम है, मिट्टी में नमी कम है, वहां हम ज्यादा पानी की फसलों से बचे, हम दलहन तिलहन इस तरह की फसलों की तरफ हम जाए, उसको ध्यान में रखते हुए ये टारगेट हमने तय किए हैं। मित्रों, फर्टिलाइजर की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी एक और मैं संतोष की बात बता रहा हूँ, इस साल हमने कोशिश की थी प्रमुख राज्यों में दो दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से के मिट्टी और बाकी पोषक तत्वों की जो स्थिति उसको देखते हुए कितना फर्टिलाइजर धान लगना चाहिए, तो किसान को इसके लिए जानकारी दी गई एक राज्य में दो जिले कि अगर आप ये फसल बो रहे हैं तो कितना फर्टिलाइजर आपको लगना चाहिए। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि उन जिलों उर्वरकों की जो कमी है, उन उर्वरकों की जो खपत है उसमें 27% कमी आई। किसानों ने उसको माना और उसके कारण उर्वरकों की खपत में कमी भी आई, मतलब बैलेंस यूज हुआ यूरिया का, डीएपी का, और 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की उसके कारण बचत हुई। इस बात भी हमने फैसला किया है कि खाद की कोई कमी नहीं, लेकिन मिट्टी या धरती को कितना खाद चाहिए, बैलेंस यूज जरूरी है, संतुलित उपयोग जरूरी है। इसके लिए हमने खरीफ में भी खेत बचाओ अभियान चलाया था, अब रबी के लिए भी खेत बचाओ अभियान हमारा 22 अक्टूबर से प्रारंभ होगा और 22 अक्टूबर से ये 30 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस बीच हम किसानों के बीच जाएंगे, राज्यों की टीम जाएगी, केंद्र के लोग जाएंगे, आत्मा की टीम जाएगी, राज्य के अधिकारी कर्मचारियों की टीम जाएगी, हमारे आईसीआर के वैज्ञानिकों के बीच जाएंगे और कई जगह मंत्रीगण जाएंगे, केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे और हम आज की आवश्यकता के अनुसार खाद की जरूरत कितनी है उसके बारे में किसान भाइयों बहनों से चर्चा करेंगे। खेत बचाओ अभियान में जो मैंने पहले बताया कि पानी की उपलब्धता के आधार पर कौन सी फसल और फसल की कौन सी किस्म हमको लगानी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसमें हम केसीसी का बेहतर उपयोग करके निवेश के लिए भी हो तो केसीसी में भी सब किसानों के बने इसकी चर्चा भी करेंगे। तो रबी की फसल से संबंधित जितने पक्ष होंगे उनकी किसान भाई और बहनों के साथ चर्चा और बातचीत की जाएगी। एक और संतोष की बात यह है कि राज्यों ने जो आरकेबीवाई कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत हम राज्यों को अलग अलग योजनाओं के लिए धनराशि यहाँ से रिलीज करते हैं लगभग 11,000 करोड़ रुपए। मुझे कहते हुए खुशी है कि कई बार ये होता था कि ईयर एंड में ज्यादा पैसे खर्च होते थे, लेकिन राज्यों ने समय पर खर्च किया है और आज भी हमने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की राशि पहले जारी की थी, 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अभी जारी की, 7,000 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी कर चुके हैं और समय पर खर्च हो रहा है। तो योजनाओं का लाभ पूरा हमारे किसान भाइयों और बहनों को मिल रहा है, ये मुख्य तथ्य थे। एक बात और हमने तय किया है कि FTA के जो फायदे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अलग अलग देशों के साथ हमारे हुए हैं, उनकी ठीक और सही जानकारी हर एक राज्य किसान को जानकारी देना और उस हिसाब से उस स्तर की मापदंड की फसलों का उत्पादन, फलों और सब्जियों का उत्पादन वो करना एक्सपोर्ट क्वालिटी का, उसके लिए भी किसानों में खेत बचाओ अभियान के तहत एक जागरण का अभियान चलाया जाएगा। राज्यों के साथ हमने FTA के जो लाभ हो सकते हैं भारत के किसानों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए, प्राकृतिक खेती को भी आगे बढ़ाने के समय हमारे पास अवसर है, उस पर भी हम काम करेंगे। फार्मर ID बनाने का काम भी बहुत तेजी से हमारे किसान कर रहे थे, एग्री स्टैक का बेहतर उपयोग अत्याधुनिक खेती के लिए कैसे किया जा सकता है उस पर भी व्यापक रूप से चर्चा की है।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 पर यह रेडियो रिपोर्ट। स्वर एवं संकलन मंजीत कौर, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर, संयोजक शिवनंदन लाल।
1: तो वीरेन भाई, अभी हम सुन रहे थे 28 और 29 सितंबर को पूसा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2026 पर एक रेडियो रिपोर्ट।
0: जी, और साथियों, सेवा से संकल्प एक ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐसी महाअवधि है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा समर्पण और विकास को समर्पित ये माह समाज में सेवा भाव को बढ़ावा दे रहा है। और सेवा चाहे कोई भी हो कुसुम बहन, उससे आनंद ही आता है और भलाई ही होती है। और हम एक ऐसे गांव की बात बताने वाले हैं, मतलब ऐसे गांव नहीं, ऐसे तो बहुत सारे गांव हैं, जीवंत गांव कार्यक्रम की बात करने वाले हैं,
1: यानी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, जीवंत गांव कार्यक्रम। भारत सरकार की एक राजनीतिक सीमा विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के सीमावर्ती गांवों को बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़कर उन्हें खुशहाल और मजबूत बनाना है। यानी सरकार द्वारा चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत इस योजना को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है, जिसका संदेश है सीमा पर बसे गाँव देश के आखिरी नहीं बल्कि पहले गाँव है।
0: जी, कहीं से तो शुरुआत होती है कुसुम, उधर से देखेंगे तो पहले है और इधर से जाएंगे तो भी हमारे लिए पहले ही हैं।
1: बिल्कुल। तो और वीरेन भाई, आज विश्व हृदय दिवस भी है।
0: क्या बात कर रहे हो
1: जी,
0: दिल संभाल लूं।
1: हाँ बिल्कुल, और हम सभी को अपने दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी, तभी तो किसी ने कहा है कि दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ, तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम क्या सावधानियां रख सकते हैं ये तो एक विशेषज्ञ ही बता सकते।

0: सकते हैं कुसुम बहन?
1: तो वीरेंद्र भाई सुनवाते हैं अपने साथियों को युवा ये बातचीत। युवाओं में बदलता बढ़ता हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज पंडित, इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं।
2: कहता है कि वो स्वस्थ रहे लेकिन फिर भी किसी न किसी बीमारी से उसका सामना हो ही जाता है, और आजकल नई नई बीमारी आ जाते हैं जिसका पता भी नहीं चलता। और अभी तक सुनने में आता था कि ये काफ़ी पुराने लोगों को होती है, लेकिन आज हमारे जो युवा साथी हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। एक बहुत बड़ी समस्या युवाओं में आती है हृदय संबंधी। ग्रामीण युवाओं में हृदय संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, इसकी जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरज पंडित जी को। डॉक्टर नीरज पंडित जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। तो युवाओं में जो हृदय रोग की समस्या है, वो डॉक्टर साहब उसका लोग कैसे जाने कि ये हृदय रोग की समस्या है?
3: युवाओं में हृदय रोग दो प्रकार से हो सकता है, एक तो जन्मजात हृदय रोग की बीमारी हो
2: जी,
3: या दूसरा रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो वाल्व की बीमारियां होती हैं, हृदय रोग, हृदय के अंदर जो वाल्व होते हैं उनकी रुकावट, सिकुड़न वगैरह, जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। और तीसरी जो हृदय रोग आजकल जो ज्यादा देखा जा रहा है युवाओं में, ग्रामीण युवाओं में भी, वो है हार्ट की, दिल की नसों में रुकावट बन जाना, जिससे हृदय घात या हार्ट अटैक, इस प्रकार की संभावना अधिक होती है। और हाई ब्लड प्रेशर, जो कि एक, जिसको हाई बीपी बोलते हैं कॉमन आम भाषा में, वो एक प्रकार की उससे मालूम नहीं पड़ता, पर जब वो अगर कंट्रोल ना हो तो धीरे धीरे तो और सारे शरीर के अंगों पे उसका दुष्प्रभाव पड़ता है।
2: तो डॉक्टर साहब, ये जो हृदय की बीमारियां होती हैं, ये इसके कारण क्या क्या रहते हैं?
3: जो नसों की रुकावट होती है और हार्ट की नसों की रुकावट, हृदय आपको मालूम है खून पंप करता है, पूरे शरीर में संचार करता है, पर उसको खुद को काम करने के लिए नसों से खून की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। 2 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे शरीर की नसों में चर्बी का जमाव शुरू हो जाता है और वो जाके बाहर सामने आता है 40 वर्ष और उसके अधिक उम्र में। पर जो लोग बहुत कम व्यायाम करते हैं और बहुत ज्यादा तला और इस प्रकार खान पान का ध्यान नहीं रखते और धूम्रपान वगैरह करते हैं, तो उनमें ये हृदय रोग कम उम्र में सामने आ सकता है। इसलिए इसके मुख्य कारण तो कहेंगे कि जिनके अंदर संभावना है हृदय रोग की, परिवार में किसी और को हृदय रोग हो चुका है और उनके अंदर ये हार्ट अटैक होने के रिस्क भी हैं, जैसे कि धूम्रपान करना, शुगर की बीमारी होना, व्यायाम नहीं करना, मोटापा होना, उनमें हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और वो भी कम उम्र में।
2: जी, अगर डॉक्टर साहब किसी को होता है तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसको हृदय संबंधी परेशानी है?
3: सबसे पहले तो ये है कि अगर परिवार में किसी को हृदय रोग है तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर संभावना औरों से अधिक है। और अगर किसी को ऐसे पारिवारिक ऐसा हिस्ट्री नहीं है हार्ट डिजीज की, तो 35-40 वर्ष की उम्र के बाद एक बार उनको अपना सब जांच कराना चाहिए, जिसमें आता है खून की जांच, शुगर है क्या, कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार है, ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। अगर किसी को हृदय रोग हो जाता है, हार्ट की नस की रुकावटें हो जाती हैं, तो उसके लक्षण होते हैं कि काम काज करने में, परिश्रम करने में छाती पे भारीपन आता है, और अगर वो रुक जाएं, आराम करें तो वो ठीक हो जाता है, कुछ मिनट के लिए रहता है, इसको हम एंजाइना कहते हैं। ये नस की रुकावट के कारण होता है, जब जरूरत ज्यादा होती है खून के प्रवाह की हार्ट को, तब वो हो नहीं पाता क्योंकि वो रुकावट है, और जब वो रुक जाते हैं, आराम करते हैं, तो धड़कन कम हो जाती है और वो रुकावट के अंदर भी जो सप्लाई हो रहा है खून का, उससे उनका काम चल जाता है। यही रुकावट धीरे धीरे अगर बढ़ती जाती है और वो हार्ट की नस को टोटल बंद कर देती है, तो वो हार्ट अटैक में परिवर्तित हो जाता है, जिसके लक्षण है कि बहुत वही दर्द बहुत तेज होता है लेफ्ट साइड में और वो बाह में भी निकलता है। साथ में मरीज को घुटन, पसीना, कमजोरी, उल्टी, इस प्रकार के लक्षण, सांस फूलना, बेहोशी भी आ सकती है, और वो मरीज को मालूम पड़ता है कि ये कोई एक बहुत सीरियस सी बात है, ये आमतौर पर पहले कभी ऐसा उनको महसूस नहीं हुआ।
2: डॉक्टर साहब, अगर किसी को जो आपने लक्षण बताए ये प्रतीत होते हैं, तो उस स्थिति में तुरंत उसे क्या करना चाहिए?
3: अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो शुरू के 3 घंटे बहुत ही, उनको गोल्डन पीरियड कहते हैं, सुनहरी क्षण है, उनको अगर हम जितना समय वेस्ट करेंगे उतना ही हार्ट के मसल को डैमेज करते जाएंगे। तो अगर दूर दराज के इलाके में रहते हैं और बड़ा अस्पताल नज़दीक नहीं है, तो कोई भी नज़दीकी अस्पताल में जाकर के एक खून को पतला करने की दवा होती है, ये जैसे एस्पिरिन होती है जो दर्द की दवा भी है, वो ले सकते हैं अगर घर में ही कहीं उपलब्ध हो, किसी और को कोई हृदय रोग का मरीज हो। नहीं तो नज़दीकी अस्पताल में जाएं और वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लें, और ECG करना पहला कदम है। और ECG करके अगर उसमें दिखता है कि हार्ट अटैक है, तो खून के चक्के को घोलने की दवा तुरंत देनी चाहिए, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मिल सकती है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे बड़े अस्पताल में जहां पे तार जांच या एंजियोग्राफी करने की सुविधा हो, वहां पे पहुंचना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, कोई ऐसी भी स्थिति होती है कि तुरंत अस्पताल नहीं जा सकता और मरीज को पता नहीं है कि उसको अटैक आया हुआ है, तो दूसरे जो परिवार के लोग हैं उस स्थिति में वो क्या कर सकते हैं?
3: उनको ये सीधा बड़े शहर में बड़े अस्पताल में आने में और समय उसमें आने में नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, पर एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक पहुंच सकते हैं। हार्ट अटैक का घर पे इलाज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारी है। तो बेहतर हो कि जो भी सीने में दर्द हो रहा है उसको एक बार डॉक्टर की सलाह से ECG के द्वारा ये रूल आउट करवा लें कि हार्ट अटैक है कि नहीं है।
2: डॉक्टर साहब, घर पे इलाज की बात नहीं है, बात यह है कि घर से अस्पताल तक जाने में समय लगता है, उस बीच क्या वो उसका कुछ कर सकते हैं?
3: उस बीच जो एस्पिरिन नाम की दवा है, जो सिर दर्द की दवा, या वो भले ही अगर घर में उपलब्ध हो तो दे सकते हैं। और ऐसे और कुछ हार्ट अटैक के लिए घर पे कोई घरेलू नुस्खा इस प्रकार नहीं है।
2: और डॉक्टर साहब, एक और दूसरी आपने जो बीमारी बताई हृदय से संबंधित, जो जन्मजात होती है, वो क्या होती है?
3: जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि कोई नवजात शिशु नीला, ब्लू बेबी, नीले उसके नाखून और जीभ वगैरह नीले थे, क्योंकि गंदा खून और साफ खून जन्म से ही आपस में मिल रहे हैं। जैसे हार्ट में कोई, हृदय में कोई छेद होते हैं, कोई दो राइट और लेफ्ट साइड के हार्ट के चेंबर के आपस में बीच में छेद है, जन्मजात बनावट में खराबी है, तो वो नीले होके पैदा होते हैं, सांस में दिक्कत आती है। और कुछ होते हैं जो ऐसे नीले नहीं होते, पर उनको साफ खून और गंदा खून आपस में मिलता है, और इस कारण से उनको सांस फूलता है, और बच्चे जो हैं माँ का दूध नहीं पी पाते, उनका दूध पीने में सांस फूलने लगता है, बार बार उनको इन्फेक्शन होता है छाती में, निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो जब वो डॉक्टर की नज़र में आते हैं तो डॉक्टर बता सकते हैं कि इनको जन्मजात हृदय का रोग है या नहीं, और अगर है तो उसका आगे क्या इलाज करना चाहिए।
2: तो डॉक्टर साहब, उसका इलाज संभव है पूरा?
3: बिल्कुल संभव है, पर वो निर्भर करता है, कई हृदय में जो छेद होते हैं वो स्कूल जाने की आयु तक, यानी कि लगभग 5 वर्ष तक बंद हो सकते हैं अपने आप से। कुछ जो बंद नहीं होते उनको ऑपरेशन द्वारा, और आजकल तो बिना ऑपरेशन के हम लोग छतरी द्वारा एक इलाज करते हैं, एक प्रकार की छतरी बनी आती है जो कि बिना ऑपरेशन के हम छेद पे लगा देते हैं, जो कि बंद हो जाता है, और फिर वो बच्चा नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करता है।
2: अच्छा, एक बार बच्चे का जो छिद्र वगैरह होता है वो बंद होने के बाद फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आती?
3: फिर दिक्कत नहीं आती, पर उसको डॉक्टर को फिर भी 6 महीने 4 महीने में दिखाना जरूरी है, कि ये नहीं कि वो बिल्कुल ही ना दिखाए और फिर कोई और कुछ प्रॉब्लम आने लगे तो बाद में बहुत बिगड़ने के बाद पहुंचे।
2: डॉक्टर साहब, हम तो ये चाहते हैं कि किसी को हृदय संबंधी बीमारी ना हो, तो उसके बचाव के लिए सभी को क्या करना चाहिए?
3: दूसरा एक और, इससे पहले मैं एक और ये कहना चाहूँगा कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो रूमेटिक हृदय रोग, बहुत ही एक हमारे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अभी भी है
2: जी।
3: जो कि गला खराब होने पे जो कीटाणु गला खराब करते हैं, वो कुछ लोगों में, कुछ बच्चों में कम उम्र में 15 वर्ष की आयु तक वो जोड़ों को असर करता है, बड़े जोड़ जो शरीर के हैं उसको बोलते हैं रूमेटिक डिजीज। उसका एक असर हार्ट के ऊपर भी पड़ता है और हार्ट के वाल्व सिकुड़ जाते हैं, जो कि मरीज को उसका ऑपरेशन द्वारा या बैलून द्वारा वो वाल्व खोलना पड़ता है। ये रूमेटिक की बीमारी, जो कि इन्फेक्शन के कारण, कीटाणुओं के गला खराब होने के, हमारे गला खराब होने के कारण होती है, जबकि स्कूल में बच्चे जाते हैं या भीड़ में बच्चे रहते हैं या बहुत ही कंजेशन होता है, उसमें ये होने की संभावना अधिक है। इन सब बीमारियों के बचाव, जो आपका प्रश्न था
2: जी,
3: उसके लिए ये है कि हम अपने खान पान और रहन सहन को सही रखें, और आज के भागदौड़ के जीवन में मानसिक तनाव को कम रखें। और वो किस प्रकार कम रखें? योगासन करके, मेडिटेशन करके, और अपनी जो भी आपकी हॉबी हैं, जो भी आपको जो शौक हैं, जो अच्छा लगता है, खेल कूद, उन सब में ध्यान लगाएं, ना कि केवल बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और वजन बढ़ता जा रहा है, व्यायाम नहीं कर रहे, और ये जो धूम्रपान करना और ये शुगर वगैरह अगर की चीजें, जंक फूड जिनको कहते हैं, जैसे

0: बर्गर, पिज्जा और इस प्रकार की चीजें हैं, या कोल्ड ड्रिंक आते हैं, इन सबको, ये सबसे मोटापा बढ़ता है और कोई शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो ये तो एक तो जीवन शैली को बदलें, जिसमें आता है कि तरह तरह के अनाज खाएं, उनकी
1: जी
0: मिश्रित आटे को बना के रोटियां खाएं, तरह तरह की सब्जियां, मौसम की, रंग की, विभिन्न रंगों की, गाजर, मटर, टमाटर जो भी हैं, विभिन्न सब्जियों को दिन में 2 या 3 बार तो प्रयोग करें, कम से कम 200 ग्राम 250 ग्राम की हेल्पिंग होनी चाहिए एक उसमें 2 3 बार, और मौसम के फल खाना भी बेहतर है। इस प्रकार जो मलाई युक्त और तला हुआ और ये इनको घी वगैरह का कम प्रयोग करना बेहतर है। खासकर जो वनस्पति घी है जो जम जाता है, उसमें एक तत्व होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रांस फैटी एसिड,
1: जी
0: ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये हार्ट की बीमारी और तरह की बीमारियां करते हैं। तो दोबारा तला हुआ और वनस्पति घी में तला हुआ, जो हमारे मिठाई और नमकीन और ये सब बनाते हैं पूरियां, दोबारा तला हुआ, बार बार तला हुआ, उसका प्रयोग करना बहुत ही खतरनाक।
1: जी डॉक्टर साहब, हम तो यही कहेंगे कि हमारे युवा साथी और जो भी ग्रामीण भाई हैं, किसी बीमारी से पहले बचाव जरूरी है, और अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो निश्चित तौर पे अपने पास के अस्पताल में जाएं और विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं और जल्दी से जल्दी उसका इलाज करा लें। अपनी जो दिनचर्या है उसको बदलें, योगा करें, दौड़ लगाएं और खान पान का सही ध्यान रखें, तो निश्चित तौर पे आप हृदय संबंधी बीमारी से दूर रहेंगे। डॉक्टर नीरज पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और युवाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे युवाओं में बढ़ता हृदय रोग, इस विषय पर ये बातचीत। विशेष विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज पंडित। और इसी के साथ आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वाले साथियों को
3: राम राम, राम। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 7 बजने को है, कुछ ही पलों में अब हिंदी में समाचार होंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
6: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया, तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें, जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
5: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक

0: आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। INS तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 7:05 और 15 सेकंड। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। अमित, जब भी हम अपने अन्नदाताओं यानी किसान भाई बहनों की बात करते हैं तो मन गर्व से भर जाता है। हमारे किसानों की मेहनत, लगन और नई नई जानकारियों के साथ अब अधिक गुणवत्तापूर्ण और कृषि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर खेतीबाड़ी का कार्य पूर्ण समर्पण के साथ हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं।
4: बिल्कुल आपने सही कहा, कार्यक्रम किसान वाणी का उद्देश्य भी प्रतिमा यही है कि जो हमारे भाई बहन खेतीबाड़ी कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिक सोच हमारे किसान भाई बहनों तक पहुंचे, उसका खेती खलिहानी में उपयोग करें, अच्छा उत्पादन लें और देश की इस आर्थिक रीढ़ को मजबूत करें। और हमारी कोशिश होती है कि जो किसान के लिए हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं वो हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और ऐसी ही बात

0: बातचीत हम अपने कार्यक्रम में साझा करते हैं किसान भाई बहनों के
1: लिए। तो आज हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर।
0: देश के युवाओं और हमारे किसान भाई बहनों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकार की एक नई दिशा है, नई दृष्टि है, नई सोच है। भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक केंद्रीय प्रायोजित योजना जिससे निरंतर हमारे देश के युवा बढ़ रहे हैं और बागवानी का उत्पादन बढ़ रहा है।
1: जी, और राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य देश में बागवानी क्षेत्र, फल, सब्जियां, फूल, मसाले, सुगंधित एवं औषधीय पौधों आदि का समग्र और टिकाऊ विकास करना है। वर्तमान में ये व्यापक रूप से मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत संचालित होता है।
0: बिल्कुल प्रतिमा, और जो हमारे देश के युवा किसान भाई बहन राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए चाहे पौधों की नर्सरी तैयार करने की बात हो, नए बगीचे लगाने हो, संरक्षित खेती हो, सिंचाई के उपकरण हो, इसके लिए हमारी सरकार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी प्रदान करती है।
1: और साथ ही मिशन के प्रमुख उद्देश्यों की हम बात करें तो किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है, नए फल एवं सब्जी बागानों की स्थापना को बढ़ावा देना भी है।
0: तो भाई हम क्यों पीछे रहें, केवल आवश्यकता है जागरूकता की। मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का हम हिस्सा बने, सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ लें और निश्चित रूप से अपनी भागीदारी सिद्ध करें।
1: बिल्कुल सही कहा, और किसान के लिए इसका महत्व बागवानी फसलों में अच्छी तकनीक, गुणवत्तापूर्ण पौध, सिंचाई और कटाई के बाद उचित प्रबंधन अपनाने से भी है।
0: और भाई इसकी अधिक जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों से भी मिल सकती है।
1: बिल्कुल अमित, और देखिए हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सभी यही चाहते हैं कि हर मिशन के द्वारा किसान भाइयों को लाभ पहुंचे।
0: तो साथियों, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में समय है एक ऐसी बातचीत का, ऐसी जानकारी का जो हमारे किसान भाई बहनों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान बहन भाइयों, राम राम। किसान बहन भाई, अमरूद की बागवान की शुरुआत कैसे करें, या हमारे जिन किसान बहन भाइयों के पहले से ही अमरूद के बाग लगा रखे हैं, तो कौन कौन सी समसामयिक कृषि क्रियाएं करें ताकि उनको आने वाले समय में अच्छा फसल उत्पादन मिले। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले आपका स्वागत है, नमस्कार।
3: सभी किसान भाइयों को राम राम।
2: डॉक्टर साहब, अमरूद है काफी लोकप्रिय फल माना जाता है, तो क्या वजह है, क्यों लोग इसको इतना पसंद करते हैं?
3: देखिए, अमरूद की लोकप्रियता के पीछे कोई एक वजह नहीं है
2: जी।
3: एक ऐसा ये बहुआयामी और इसमें इतने सारे औषधीय गुण हैं कि अमरूद अब फलों की जगह ना एक औषधीय फल की तरह प्रचलित हो रहा है। इसके पीछे कुछ मूल कारण है। एक तो आप अपनी जीवन शैली देखिएगा, हमारी जीवन शैली में, भोजन पद्धति में इतना बदलाव आया है कि हम पेट संबंधी विकारों से बहुत ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, और अमरूद एक ऐसी रामबाण औषधि है कि जो पेट संबंधी विकारों के लिए एक ऐसा फल है जो कि आसानी से उपलब्ध है, बहुत ज्यादा महंगा फल नहीं है। इसकी जो जलवायु है इसकी खेती के लिए, देश के 25 राज्यों में अमरूद का कमर्शियल उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ 150 से ऊपर इसकी प्रजातियां हैं। अमरूद को हम सघन बागवानी में लगा सकते हैं। अमरूद की जो फलन शुरू हो जाता है वो तीसरे साल से इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू हो जाता है। अमरूद खाने से आपकी विटामिन सी का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, मतलब जो अमरूद में विटामिन सी उपलब्ध है वो आप सोचेंगे कि सिट्रस वर्गीय फलों से भी ज्यादा है, यानी हमारे संतरे से ज्यादा विटामिन सी अमरूद में उपलब्ध है। अमरूद में फाइबर होता है 5 से 6%, तो जो हमारे गट के बैक्टीरिया है उसके लिए हमें फाइबर बहुत अच्छे से चाहिए होता है, तो हमें अमरूद के जो मिनरल्स अमरूद में उपलब्ध हैं, सो आप सोचिए कि 150 के ऊपर ऐसी बीमारियां एक प्रकार से चिन्हित की गई हैं जिसमें कि अगर अमरूद का सेवन करें तो उनका निदान या उनका रोकथाम संभव है। सो एक तरफ तो मानव के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर इसका औषधि बहुत अच्छा है, और दूसरी बात रही किसानों की, तो जब किसान भाइयों ने देखा कि अमरूद की डिमांड बढ़ रही है तो इसलिए इसका अमरूद का दिन पर दिन रकबा बढ़ने लगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पिछले 20 सालों में अमरूद का पूरे देश में जो टोटल रकबा है वो 4 गुना बढ़ चुका है। सो इसमें 4 गुना रकबा बढ़ चुका है और 5 गुना इसका उत्पादन भी बढ़ चुका है, इसलिए क्योंकि इसकी जल्दी से आय शुरू हो जाती है, इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, और इसकी हम क्योंकि साल में 2 बार फलन आता है तो किसान भाइयों को एक अच्छी हैंडसम इनकम इससे प्राप्त होती है।
2: बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब आपने बताई है कि कितना गुणकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ आमदनी के तौर पर देखें तो हमारे किसान भाइयों के लिए भी बड़ा लाभकारी है। अब बात आती है कि जो भी हमारे किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो किस तरह से वो शुरुआत करें, पहले तो खेत के चयन की बात आती है कि किस तरह से उनको कहाँ पे लगाना चाहिए।
3: सबसे पहले तो जो भी किसान भाई सुन रहे हों इसको कि अब अमरूद के अगर आपको बाग लगाने हैं तो खरीफ की फसल कटने के बाद में अब ये बाग लगाए जाएंगे फरवरी में, या फिर अगर आप रबी की फसल भी लेना चाहें तो अप्रैल के महीने के बाद आप खेत की तैयारी से शुरुआत

0: करें, अप्रैल के महीने के बाद आप ऐसे खेत का चयन करें जिसमें कि पानी नहीं भरता हो। मेरे किसान भाई बड़े गौर से इस बात को जाने कि अमरूद में अगर आप ऐसे खेत का चयन करते हैं जिसमें पानी भरता है तो उकठा संबंधी बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें कैसे खेतों का चुनाव करना है जिसमें बलुई दोमट मिट्टी हो या जो भी आपके क्षेत्र की मिट्टी हो उसमें पानी नहीं भरता हो। दूसरा, हमें ध्यान रखना है कि अमरूद की प्रजातियों की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। आप सोचें कि पूसा संस्थान से विकसित पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा का एक भी पौधा इस समय बचा नहीं है। सो किसान भाइयों को पहले से ही निर्धारित करना है कि वो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से एक्रेडिटेड नर्सरी या अपना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसको राज्य की कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं या कोई केंद्र की पोषित कोई परियोजना से जो नर्सरी चल रही है उनमें हम पहले से ही संपर्क करें। मैं कुछ प्रजातियों के नाम ले रहा हूँ, उन प्रजातियों की बहुत अच्छा उत्पादन भी है, उसके साथ साथ उनकी प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता भी ज्यादा है। जैसे हम पूसा आरुषि, पूसा प्रतीक्षा, हिसार सफेदा, हिसार सुरखा, ललित, श्वेता, धवल, ये कुछ उत्तर भारत के लिए उपलब्ध प्रजातियां हैं जिनकी अधिक मात्रा में उपलब्धता भी रहती है। और अगर आप पहले से बुकिंग कर देंगे, जैसे कि अभी ही किसी ने मन बनाया कि हमको अगले साल से अमरूद की बागवानी में जाना है, तो आप अभी से ही इन संस्थानों के पास में अपनी बुकिंग पहले से कर दें जिससे कि आपको पौधों की उपलब्धता हो जाएगी। एक हो गया स्थल का चुनाव, दूसरा हो गया प्रजाति का चयन, तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है कि किसान भाइयों को कितनी दूरी पे पौधे को लगाना है। और पौधा लगाने के पहले हमें अप्रैल के महीने में गड्ढा खोद लेना है 1x1x1 मीटर या कम से कम 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर बाई 75 सेंटीमीटर। इनको 3x3 मीटर या 4x4 मीटर की दूरी पे आपको अच्छे से इन गड्ढों को खोद के सूरज की रोशनी से अच्छे से सिक जाएं वो गड्ढे, तो जितने भी फंगस होते हैं या जो ऐसे कीट होते हैं उनका सोलराइजेशन बड़े अच्छे से हो जाता है। उसके बाद किसान भाइयों को क्या करना है, सड़ी हुई गोबर की खाद, उसके साथ साथ आपको उसमें थोड़ा सा अगर आपके पास में उपलब्धता हो सके तो बर्मी कंपोस्ट भी साथ में उसमें मिक्स करके, और जो नीचे वाली मिट्टी है उसको ऊपर करना है, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे करना है। क्या होता है, ऊपर की जो मिट्टी होती है बहुत प्रोडक्टिव होती है और जब जड़ें जाती हैं जड़ें नीचे जाती हैं, तो हमने ऊपर का पोषण तो हम कर ही रहे हैं बाहर के सोर्स से, सड़ी हुई गोबर की खाद से, बर्मी कंपोस्ट से, नीचे भी हमारे पास में जो ऊपर वाली उपजाऊ मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। एक तो आपके अंदर कोई पत्थर है, कोई कचरा है या कोई ऐसी फंगस है या कुछ ऐसे रोग कीट, वो खत्म हो जाते हैं और हमारा पूरे पोषण की साल भर की उसकी व्यवस्था भी उस गड्ढे से कर देते हैं। तीसरा, 15 जुलाई के बाद में जब 1-2 पानी गिर जाए उसके बाद में दोपहर के बाद पौधारोपण करेंगे तो इसमें पौधे के सर्वाइवल के चांसेस 90% के ऊपर रहते हैं। बस इतनी सी बातों का ध्यान रखना है। अमरूद में एक नियम है कि अमरूद में नई प्ररोहों पर, नए कलनों पर फलन आता है। तो अगर किसान भाई अपने पौधे का आकार, पौधे का विन्यास ठीक से रखेंगे तो हर साल जब वो प्रूनिंग करेंगे तो उनको रेगुलर फसल मिलती रहेगी, उनका पोषण कम लगेगा और पोषित फल उनको मिलते रहेंगे।
1: बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया किस तरह से हमारे किसान भाई जो नए बाग हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी किसान भाई कोई फसल लगाते हैं तो अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं, तो क्या बाग लगाने के लिए भी मिट्टी की जांच करवाना जरूरी होता है?
0: देखिए, ये ऐसे ही है जैसे कि हमें बुखार आया तो हमारा डॉक्टर बोलता है कि एक बार अपन ब्लड टेस्ट करा लें, उससे क्या पता चलता है कि हमारे अंदर के स्वास्थ्य के पैरामीटर कैसे हैं। तो मिट्टी लाइव है, मिट्टी जीवित है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की उपलब्धता है, वो हमें जानकारी हो तो हम आगे हमारे पौधों को क्या देना है उसका बहुत अच्छे से हम एक मूल्यांकन कर सकते हैं। मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है और मिट्टी की सैंपलिंग का तरीका, किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने जो सबसे पास में जो सबसे अच्छा एक जानकारी का स्रोत होता है वो होता है कृषि विज्ञान केंद्र, और मृदा की जाँच के बाद में उसके हिसाब से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसको हम नेचुरल फार्मिंग में बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। सो किसान भाइयों को इसके रेट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर हम बोलेंगे कि हम नेचुरल फार्मिंग से ग्रो करके उत्पादन करके इस अमरूद का उत्पादन कर रहे हैं, तो रेट भी अच्छा होगा और उसका स्वाद भी अच्छा होगा, इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होगी।
1: सब आपने बताया किस तरह से बाग लगाना है, फिर मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी लागत कम हो, फायदा ज्यादा हो, तो जब नर्सरी लग जाती है अमरूद की तो फल 3 वर्ष के बाद उनको मिलता है, तो 1-3 साल का गैप भी रहता है, तो उस दौरान वो कौन कौन सी फसल कर सकते हैं साथ में ताकि उनको फायदा भी हो और जो अमरूद की फसल है उसको भी कोई नुकसान ना हो?
0: देखिए, उत्तर भारत के इन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ अमरूद का उत्पादन होता है वहाँ वहाँ फूलों की भी खेती बहुत अच्छे से हो सकती है। अमरूद के अंदर कभी कभी निमेटोड की समस्या आती है और निमेटोड के लिए हम लोग कई बार संशोधित करते हैं कि हम गेंदे की खेती करें, तो ऊपर से गेंदे के फूल मिल जाएंगे और उसको जड़ों के साथ ले लें, तो निमेटोड जो होता है उसमें जो गेंदे की जड़ें होती हैं उसमें वो अट्रैक्ट करते हैं, उनको आकर्षित करते हैं निमेटोड, तो हमें निमेटोड से भी निपटारा हो जाता है और गेंदे की जो फसल है वो आपको 3 महीने में सारा लाभ दे जाती है। जैसे हमारे संस्थान से ऐसी प्रजातियां निकली हैं गेंदे की जैसे दीपावली के टाइम पर जिसकी फ्लावरिंग आएगी, आप सोचिए कि अब तो मंदिरों में, मार्केट में,

0: मैरिज में, हर जगह फूलों की खेती की जरूरत पड़ती है। सो एक तरफ तो आपका अमरूद के बाग में भी साथ में काम चलता रहेगा, और इसके साथ साथ अगर आप फूलों की खेती करें, स्पेशली गेंदे की खेती करें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ साथ आप जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, आप उनकी भी खेती कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप एक बात का ध्यान रखें, अमरूद के बागों में कभी गहरी जुताई नहीं करते, क्योंकि अमरूद की जो पोषक तत्व वाली जड़ें होती हैं वो ऊपर की 25 सेंटीमीटर के नीचे तक ही होती हैं। और अगर हमने अपने ट्रैक्टर के माध्यम से इन जड़ों का नुकसान किया तो हमें बाद में बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सो हमको ऐसी फसल उगानी है जो कि ऊपर टॉप सॉइल में ही होती हो, हमको कोई जिसकी जड़ें बहुत गहरी जाती हों, ऐसी फसलों को बिल्कुल चयन नहीं करना है।
1: बिल्कुल। तो हमारे जो भी किसान बहन भाई अमरूद के बाग लगाएं तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। अब डॉक्टर साहब, बात आती है कि जिन किसान बहन भाइयों के हमारे अमरूद के बाग पहले से ही लगे हुए हैं, तो वो इस समय कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं या समसामयिक कार्य हैं वो करें, ताकि आने वाले समय में उनको फसल का अच्छा उत्पादन मिले और दाम भी अच्छा मिले।
0: देखिए, इस समय ना बरसात की फसल खत्म हो चुकी है, तो इस समय आप देखेंगे कि अमरूद में कुछ सड़े गले फल नीचे पड़े होंगे, उनको सबसे पहले इकट्ठा कर लें। फिर कुछ शाखाएं सूख रही होंगी, उन शाखाओं को भी निकाल दें। कुछ शाखाएं एक दूसरे से रगड़ खा रही होंगी, उन शाखाओं को भी निकाल दें। उसके बाद में या तो हम बोडेक्स पेस्ट बना लें, या हम अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे, बोडेक्स पेस्ट बनाना भी बहुत सरल सा काम होता है। इसमें नीला थोता और चूने का प्रयोग होता है, जिसको आपको ये जहाँ पे सीमेंट वगैरह और लोहे वगैरह मिलता है वहाँ पे नीला थोता आसानी से मिल जाता है। तो अगर बोडेक्स पेस्ट नहीं बना पा रहे हैं तो फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप लेप बनाएं, और जमीन से ऊपर 1 फुट तक तने में इसके लेप का वो करें। उसके बाद हम अगर तने के पास मिट्टी नहीं चढ़ी है तो मिट्टी चढ़ा लें, और आप देखेंगे अभी सर्दियों वाले फल सेट हो गए होंगे। तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, अगर उसके साथ में आप कुछ ट्राइकोडर्मा का भी पाउडर मिक्स करके डाल सकें, तो एक तो जमीन के नीचे माइक्रोबियल पॉपुलेशन पूरी बढ़ जाएगी, और जब जमीन में माइक्रोब्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं अच्छे सूक्ष्म तत्व होते हैं, अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन में तापमान आपका बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटी चलती रहेगी, तो आपकी जो सर्दियों वाली फसल है वो बहुत अच्छी मिलेगी। इन सब बातों का किसान भाई अभी जिनकी फसल लगी है वो ध्यान दें, और सर्दियों की फसल का अच्छा सा उनका लाभ मिलेगा। और
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कीट की, रोग की, तो उनका भी प्रबंधन करना जरूरी है, क्योंकि जो कीट हैं, कीड़े हैं, वो भी फसल को बर्बाद करते हैं।
0: आपने शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था कि अमरूद की पॉपुलैरिटी के पीछे कारण क्या है। उसके पीछे एक कारण है कि अमरूद में रोग एवं कीट व्याधियां कम आती हैं अपेक्षाकृत दूसरे फलों की फसलों से। फिर भी इसमें एक बहुत खतरनाक बीमारी आती है जिसको हम उकठा रोग कहते हैं। उकठा रोग में क्या सबसे बड़ा कारण होता है कि किसान भाई इन जनरल अभी भी अमरूद में गहरी जुताई कर रहे हैं, अमरूद में खुला पानी दे रहे हैं, और इसके साथ साथ अमरूद में अगर हमने शुरुआत में जड़ों में डैमेज किया तो फिर उकठा की बीमारी बढ़ने लगती है। इसके 3 तरीके से हम प्रबंधन करते हैं। सबसे पहले हमें खुली सिंचाई नहीं करनी है। दूसरा, हमें ध्यान देना है कि अगर आपके पास मान लीजिए ड्रिप इरिगेशन नहीं है, या जिसको हम लोग बोलते हैं टपक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो आप इसमें थाला बनाइए और थाले के बगल में इसमें लाइन खींचिए, इसको नाली कहते हैं, आप थाले वाले विधि से इसकी सिंचाई कीजिए। और तीसरा, अमरूद के जो क्राउन पोर्शन, जो उसको तने का जमीन से जुड़ा हुआ जो जगह है, उस पर हम मिट्टी चढ़ा के रखेंगे, जिससे कि डायरेक्ट उस जगह पे पानी ना लगे, अदरवाइज उससे भी अमरूद सूखने की संभावना हो जाती है। दूसरा, जो अमरूद में सबसे बड़ा जिससे पूरा देश परेशान है, वो है फल मक्खी की समस्या। तो फल मक्खी की समस्या के 2 निदान है, क्योंकि बरसात में फसल बहुत अच्छी आती है, बरसात की फसल जो होती है उसमें 95% अमरूद का फलन हो जाता है, 5 से 10% फलन हमें सर्दियों का मिलता है। तो हमें इसमें 2 तकनीकें अपनानी। किसान भाई, इसमें आप सोचेंगे अगर आपने वो विधियां अपना ली तो आपको बहुत अच्छी इनकम मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे फूल सेट हो जाते हैं, फल लग जाते हैं अमरूद में बरसात में, तो हमें सबसे पहले फलों को तोड़ना, यानी हमें फ्रूट थिनिंग करनी है। हम देखेंगे अमरूद के तीन तीन जो फल हैं वो एक साथ लगे रहते हैं, साइड के हमें 2 फल निकाल देने हैं और 1 फल रखना है, और हमें कोशिश करनी है कि एक पेड़ में करीब हम 75 से 80 फल, उससे ज्यादा ना रखें, क्योंकि एक फल के लिए हमें 25 से 30 पत्तियां चाहिए होती हैं उसके पोषण को पूरा करने के लिए। जब हम बहुत ज्यादा फलन लेते हैं तो हमारी गुणवत्ता भी कम होती है, और उसके साथ साथ हमारे फलों का साइज भी छोटा रह जाता है। आप देखेंगे आजकल अमरूद का बड़ा अच्छा साइज आ रहा है, देसी अमरूद का भी बहुत अच्छा साइज आ रहा है, क्योंकि किसान अब फ्रूट थिनिंग करना शुरू कर दें। दूसरा, अमरूद जब बेड़ के आकार का हो जाए तो उसमें आजकल एक पॉलीथिन बहुत अच्छी टाइप की आने लगी है, जो बैगिंग में आप उपयोग कर सकते हैं, इससे इसका कलर भी अच्छा होगा, और इसके साथ साथ फल मक्खी अपने अंडे नहीं दे पाएगी। अगर आपने इन 2 चीजों का ध्यान रख लिया तो किसानों की बहुत अच्छी आय मिलेगी और लागत कम से कम रहेगी। और तीसरा, जो मैंने अपनी बातों में आपसे बताया कि जो नेचुरल फार्मिंग है, जिसको हम कहते हैं कि बगैर किसी केमिकल की कोई खेती हो सकती है, तो अमरूद की खेती बहुत अच्छे से हो सकती है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे बाजार में जब भी अमरूद आता है तो लोग साफ सुथरा अमरूद जो फल है अमरूद का वही पसंद करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं अमरूदों पर, उनसे कैसे बचाया जा सकता है?

0: है फसल
1: हाँ,
0: को।
1: उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकें तो जैसे मैंने बोडेक्स पेस्ट बताया, ऐसी बोडेक्स का पेस्ट अगर नहीं कर पा रहे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप 6 ग्राम प्रति 5 लीटर के हिसाब से आप उसमें घोल बनाएं और इसको छिड़काव करें तो उस बैक्टीरिया का प्रबंधन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप प्रयाग से अमरूद आ रहा है, कहीं और से आ रहा है ना, पत्ते चिपके रहते हैं, कई कई अमरूद में जैसे हम चित्तीदार बोलते हैं, तो वो एक वैराइटल ट्रेट होता है। बट दूसरे के लिए आप अगर एंथ्रेक्नोज वगैरह की

0: योजनाएं भी चल रही हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं, जहां उनको अच्छा लगता है फसल का भाव वहां बेच सकते हैं। तो ऐसे में अगर हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसल को एक शहर से या एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं बेचने के लिए, तो खास कर किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है?
1: देखिए, हमको जब भी हमें ट्रांसपोर्ट करना है कहीं भी, तो हमको देखना है किस स्टेज पे हमें उसकी तुड़ाई करनी है। हम इसको बोलते हैं जब हरापन पूरा खत्म हो जाए, उसको कलर टर्निंग स्टेज कहते हैं। उस कलर टर्निंग स्टेज पे जब किसान भाई इसकी तुड़ाई करते हैं, और उसके बाद में हमें सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करने के बाद में उसको अच्छे से हमें कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स, या ऐसा लगे कि कोई ट्रे है, प्लास्टिक ट्रे, और आजकल बड़ी स्मार्ट पैकिंग होती है, नीचे उन्हीं पत्तियों को नीचे डाल दिया जाता है, तो वो पैडिंग का काम करते हैं, ऊपर अमरूद रख दिए जाते हैं। और अमरूद की जब तुड़ाई करते हैं, तो आप देखते हैं दो लीफ साथ में जुड़ी रहती है। आप सोचो, उसको छू के आदमी बोलता है कस्टमर कि इस अमरूद को लेते हैं, जरा फ्रेश लग रहा है। तो इन थोड़ी छोटी चीजों का किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जिससे ट्रांसपोर्ट में उसको जर्क नहीं लगे, तो इसके ध्यान रखना है।
0: तो डॉक्टर साहब, जो अभी जाड़ों में हमारे किसान भाई फसल लेंगे अमरूद की, तो उसके लिए खाद पानी के प्रबंधन पर भी हम बात कर लेते हैं, किस तरह से उनको करना चाहिए।
1: जब हम सारी साफ सफाई कर लें अपने बाग की, तो उसके बाद में हमें सड़ी गोबर की खाद, अगर उसमें हम ट्राइकोडर्मा मिक्स कर सके तो ट्राइकोडर्मा, और ट्राइकोडर्मा की अगर हमने कल्चरिंग गोबर की खाद में पहले से कर ली, उसके साथ साथ एक एजोटोवेक्टर नाइजर, जैसे अपन AN17 करके स्ट्रेन आता है, अगर वो हमने साथ में अपने गोबर की खाद में डाल लिया और उसका फिर प्रयोग हमने अमरूद के बागों में किया, तो अमरूद के पोषक तत्वों की जो मुख्य जरूरत है वो पूरी हो जाएगी।
0: बिल्कुल डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने दी है हमारे किसान बहन भाइयों के लिए। जरूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जैसा आपने बताया उसी तरह से अपनी फसल का प्रबंधन करेंगे और उन्हीं कृषि क्रियाओं का वो उपयोग करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे सभी किसान भाई बहन सुन रहे थे ये खास बातचीत। और अमित, देखिए ना, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं या हमारी सरकारें हैं, समय समय पर किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो साझा करते हैं, चाहे वो सम्मेलन हो या संगोष्ठी हो या किसी भी मेला हाट के द्वारा हो। अभी देखिए, रबी अभियान 2026 को लेकर दो दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन 28 और 29 सितम्बर को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी एवं कृषि विशेषज्ञ शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं।
3: आज रवि की कॉन्फ्रेंस के लिए मित्रों हम यहाँ उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि कृषि, अनाज, फल, सब्जियां, ये भारत जैसे विशाल देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उत्पादन में जो वृद्धि हुई है वो अभूतपूर्व है। कृषि विकास दर में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन काम करने की जरूरत और है। अब रबी की जब हम बात करते हैं, तो खरीफ जिसमें बहुत चिंता थी मन में, क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव है, एक तरफ महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तेलंगाना से, बड़े हिस्सों में सूखे का संकट है। तो अभी कल खबर आई कि यूपी में कई मौत इसलिए हो गई कि भारी बारिश के कारण हो गई। क्लाइमेट चेंज के असर साफ नजर आ रहे हैं। अल नीनो के प्रभाव के कारण हम चिंतित थे, लेकिन मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा आप सबको, पूरी टीम को, लगभग खरीफ की बुआई का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। हाँ, फसलें जरूर प्रभावित है कई जगह। मैं आज इस बैठक में ही आपको आग्रह करना चाहता हूँ, खरीफ की फसल का कुछ जगह खराब होने के खतरे पैदा हुए हैं। कर्नाटक ने भी सूखा डिक्लेयर किया है, महाराष्ट्र ने भी, लगभग दो तिहाई राज्य में उन्होंने अपने यहाँ राज्य के स्तर पर सूखा घोषित किया है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ राज्यों को, केंद्र सरकार आपके साथ डट के खड़ी है। जहां संकट है वहां मिलकर मुकाबला करना है, और रबी की तैयारी भी करनी है। और रबी की तैयारी की जो कुछ प्रमुख चीजें हैं, कुछ जगह बारिश बहुत अच्छी हुई है, कुछ जगह एवरेज से कम है, लेकिन पानी बहुत इतना गिरता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोनी पर। उन राज्यों के मित्रों को भी मेरा कहना है कि आप रबी की प्लानिंग पूरे साइंटिफिक तरीके से कीजिए। जिन हिस्सों में देश के कम पानी है, कितना पानी की उपलब्धता है, नमी कितनी है, सिंचाई के पानी के लिए अभी से प्रबंध करें। मुझे लगता है कि इस समय जल बजट बनाने की जरूरत है। पानी सीमित है, उस पानी का उपयोग कैसे करें, उस पानी को देखते हुए कौन सी फसलों की हम सलाह दें, प्लानिंग करें। और तैयारियों में मैं समझता हूं कि देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम रबी की बुआई के मुहाने पर खड़े हैं। एकदम रेनफेड इलाके में तो जल्दी अब बोनी शुरू हो जाएगी, और जो रेनफेड नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था है उसकी तैयारी हम अलग से रखें। दूसरे जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए पानी के बाद, मिट्टी में हम नमी कैसे बचाएं और समय पर बुआई कैसे करें। फिर जर्मिनेशन ठीक नहीं होगा, उत्पादन ठीक नहीं आएगा, और इसलिए समय पर सारी तैयारी कर लीजिए। और मैं ये मानता हूं कि तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है बीज। और बीज की तैयारी उपयुक्त बीज, उपयुक्त किस्म, पानी।

0: को देखते हुए, यहाँ भरपूर पानी है वहां आप देखिए कौन सी किस्म, यहाँ पानी की कमी है वहां कौन सी किस्म का बीज आपको चाहिए। कई बार मुझे तकलीफ होती है कहते हुए कि कुछ राज्य पर्याप्त मात्रा में ना तो बीज की डिमांड करते हैं ना बीज उठाते हैं, और कई जगह बीज का वितरण इतनी देरी से होता है कि जब तक वो बीज आते हैं तब तक बोनी हो जाती है, फिर वो बीज जो बहुत उपयोगी है, और इसके बाद आप अभी से ये तैयारी भी करिए। अब हमने दलहन में तय किया है कि तुअर मसूर उड़द पूरी खरीदेंगे, लेकिन कई जगह खरीद की तैयारी ढंग से होती नहीं, इसलिए तैयारी परफेक्ट और पूरी करें। बीज की उपलब्धता, उसका उठान, उनका वितरण, इसका पूरा रोड मैप बनना चाहिए समयबद्ध। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा राज्य में आप एक मजबूत टीम एग्रीकल्चर बनाइए। केवीके को जोड़ने की बात हुई है, एफपीओ को जोड़िए। एक जो बात अभी डाइवर्सिफिकेशन की कही थी, अब डाइवर्सिफिकेशन करना तो ये राइस फैलो पे काम अभी से करना पड़ेगा हर एक राज्य, विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य। मेरा आग्रह है राइस फैलो में आप दलहन की बोनी की पूरी रणनीति बनाइए उपलब्ध नमी की आवश्यकता को देखते हुए। तो मुझे लगता कि हमारे सम्मेलन परिणाम मूलक हो पाएगा, और एक मुझे लगता है हर सप्ताह हमने एक सिस्टम यहाँ विकसित करने की कोशिश की है कि एक साप्ताहिक समीक्षा करते हैं हम, जिसमें फसलों की क्या स्थिति उसकी जानकारी लेते हैं, फसलों की स्थिति, मार्केट के रेट, बीमारी का अटैक, रियल टाइम में सारी चीज पता चलनी चाहिए। एक और अपनी ड्यूटी है कि उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल, लेकिन संतुलित उपयोग हो, ये हमारी राज्य की भी ड्यूटी है भाई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग क्यों नहीं होना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। खेत बचाओ अभियान हमने खरीफ की फसल में चलाया था, रबी की फसल के लिए भी खेत बचाओ अभियान चलना चाहिए। माटी भी बचाना है, मित्र कीटों को भी बचाना है, इसलिए संतुलित इस्तेमाल कैसा हो इसकी कोशिश आप कीजिए। इसलिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है। प्राकृतिक खेती के लिए भी एक मौका है, हम इस समय रबी में प्राकृतिक उत्पादों के लिए रुझान बहुत तेजी से बढ़ा है, किसान भी आगे आए, लेकिन राज्यों को अपने प्राकृतिक उत्पाद की मार्केटिंग ब्रांडिंग करनी पड़ेगी।
1: मित्रों, अब कार्यक्रम में समय है मौसम का, और कोशिश रहती है कि मौसम को ध्यान में रखकर ही अपने कृषि कार्य करें। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के मौसम की बात करें तो सुबह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस और शाम का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
2: तो ये थी मौसम की जानकारी।
1: अब कार्यक्रम में समय है कृषि सलाह का।
2: बिल्कुल अमित, और हमारे कृषि वैज्ञानिक भी समय समय पर बहुत से अनुसंधान और शोध कार्यों द्वारा ये कृषि सलाह निकालते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे और वो जागरूक हो सके। और हम बताना चाहेंगे अपने सभी किसान भाई बहनों को कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव न करें तथा खड़ी फसलों जैसे कि दलहनी फसलों, मक्का आदि में सब्जी नर्सरियों में जल विकास का उचित प्रबंधन रखें।
1: बिल्कुल प्रतिमा, और वहीं जो धान की कृषि हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं, अगेती और मध्यम अवधि की धान की फसल इस महीने पककर तैयार हो जाती है। दानों में नमी 17-18% होने पर ही कटाई करें, और कटाई के बाद विशेषतः ध्यान रखें फसल अवशेषों का, क्योंकि भाई ये जलाने नहीं है, अपितु जलाने के बजाय पूसा डीकम्पोजर का उपयोग करें ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे।
2: तो ये थी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि सलाह। तो अब इंतजार है हमारे सभी किसान भाई बहनों का कि आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव क्या रहे। तो अमित, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कुछ सब्जियों के भाव। अगर हम आलू की बात करें तो इसका मूल्य रहा लगभग 12-18 रुपए प्रति केजी। प्याज की अगर बात करें तो ये 35-40 रुपए प्रति किलो रहा। टमाटर 35-40 रुपए केजी। बैंगन की बात करें तो ये 20-25 रुपए प्रति केजी किसानों को मिल रहा है।
1: बिल्कुल प्रतिमा, बात कर लेते हैं कुछ फलों के भाव की। यदि सेब की बात करें तो सेब का भाव रहा है 150 रुपया प्रति किलोग्राम से 175 रुपए प्रति किलोग्राम। अमरूद 100 रुपए से 120 रुपया प्रति किलोग्राम। और वहीं पपीता की बात करें तो पपीता का भाव रहा 40-50 रुपया प्रति किलोग्राम।
2: और अमित, इस तरीके से जब मंडी के भाव हमारे किसान भाइयों को पता चल जाते हैं तो वो अपना सामान बेचने और खरीदने में उन्हें बड़ी आसानी होती है। और अमित, देखिए हमारे सभी किसान भाई बहनों को इंतजार रहता है कि हमारा जो किसान वाणी कार्यक्रम है उन तक पहुंचे, और हमें भी इंतजार रहता है उनकी फीडबैक का।
1: जी,
2: हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com। अब वक्त है किसान भाइयों से विदा लेने का, और साथ ही हम तो यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई बहनों को उनके मन मुताबिक उत्पादन मिले, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा और गुणवत्तापूर्ण मिले। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाई बहनों से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गजल कबाली। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

0: इसी के साथ गजल कव्वाली का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। 7:45 होने को है। कुछ ही पलों में अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को 1941 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। श्री शाह ने बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी मिल, सावित्री सिनेमा, फ्लाईओवर और लोनी अंडरपास के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग से राजधानी में आधुनिक, मजबूत और नागरिक केंद्रित बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बारापुला एलिवेटेड रोड फेज 3 शुरू होने से मयूर विहार फेज 1 से सराय कालेखा होते हुए दक्षिण दिल्ली और एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि करीब 11 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड कॉरिडोर को मौजूदा बारापुला नेटवर्क से जोड़ा गया है। इससे पूर्वी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली और नोएडा से आने जाने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी।
3: मैं बधाई देती हूँ अपने सारे अधिकारियों को जिन्होंने न जाने कितनी बार यहाँ का दौरा किया, एक एक परमिशन के लिए विभागों को संपर्क लिया और संपर्क करने के बाद उन कामों को पूरा करवाया और आज साक्षात रूप में इस एलिवेटेड फ्लाईओवर को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं।
2: वहीं श्रीमती गुप्ता ने बताया कि मुकरबा चौक अंडरपास का निर्माण बाहरी रिंग रोड पर यातायात को अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से किया गया है। परियोजना में 2 वाहन अंडरपास और 1 पैदल यात्री अंडरपास शामिल है। दिल्ली के PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि बारापुला फेज 3 और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन तथा लोनी अंडरपास और सावित्री सिनेमा, मोदी मिल, फ्लाईओवर का शिलान्यास दिल्ली की कनेक्टिविटी बेहतर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवांग मिश्रा के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज दिल्ली मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें जमीनी स्तर पर सफाई व्यवस्था मजबूत करना और प्रदूषण के स्रोतों की वैज्ञानिक तथा त्वरित पहचान करना शामिल है। पहले निर्णय के अंतर्गत छोटी सड़कों पर भी मशीनीकृत सफाई व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए दिल्ली नगर निगम को 30 इलेक्ट्रिक वाहन आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। दूसरे

0: निर्णय के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से पीएम 2.5 और पीएम 10 के प्रदूषण स्रोतों की लगातार त्वरित पहचान और विश्लेषण की व्यवस्था विकसित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ईवी आधारित 30 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की व्यवस्था पर 10 वर्षों में लगभग 300 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत 10 मीटर से कम राइट ऑफ वे वाली लगभग 609 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल की गई हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार सड़कों की धूल, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक प्रदूषण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, परिवर्तन और जन भागीदारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। शिवांग के रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली मेट्रो ने आज हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग परियोजना स्थलों पर निर्माण श्रमिकों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इस पहल का उद्देश्य निर्माण कार्यों के दौरान श्रमिकों को उनकी दैनिक गतिविधियों से शहर की वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक करना था। सत्र के दौरान धूल नियंत्रण के व्यावहारिक उपायों पर विशेष बल दिया गया। श्रमिकों को ये भी सलाह दी गई कि वे खाली अवस्था में चल रही मशीनों को बंद रखें, पर्यावरण मानकों के अनुरूप उपकरणों का इस्तेमाल करें और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत रेलगाड़ी में यात्रा करने वालों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू की है। इसके माध्यम से नियमित यात्री पहले से ही अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। NCRTC ने बताया कि इस सुविधा से बार बार टिकट खरीदने या कार्ड चार्ज करने की जरूरत कम होगी और रोजाना के सफर में काफी समय की बचत होगी। दिल्ली नगर निगम द्वारा सुनियो 2.0 यानी 1+7 संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 की आज शुरुआत की गई। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत करदाता वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और इससे पूर्व के 7 वित्तीय वर्षों तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने आज स्वच्छता ही सेवा पहल के अंतर्गत आयोजित किए जा रहे राइजिंग लीडर्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान प्रतिभागियों को MCD के कार्यप्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और प्रमुख नागरिक दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत आज दिल्ली के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर सीलमपुर के डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज और पूर्वोत्तर दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में आयोजित किए गए। इसके अलावा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सत्यवती कॉलेज, मैत्री कॉलेज, केशव महाविद्यालय और छोटू राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी विशेष शिविर आयोजित किए। दिल्ली के उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राजधानी के नागरिकों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। श्रीमती पंत ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई, धूल नियंत्रण तथा स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा 70 नए मैकेनिकल रोड स्वीपर खरीदे जाएंगे। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की 6ठी कोर्ट बैठक की अध्यक्षता की। श्री संधू ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए शोध कार्यों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शोध केवल शोध पत्रों तक सीमित न रहे बल्कि उसके निष्कर्षों को दिल्ली की वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक रूप से लागू किया जाना चाहिए। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की अध्यक्षता में आज दक्षिणी जिला पुलिस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पुलिस ने राजधानी के सुनसान पार्कों में गश्त बढ़ाने और डार्क स्पॉट पर विशेष निगरानी रखने जैसे कदमों की

0: जानकारी दी। इस दौरान अनेक विधायकों ने पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर विशेष बल दिया। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण में सुविधा प्रदान करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय ने बताया कि वरिष्ठ लेखाकार और लेखाकार के पद पर कार्यरत इन दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर एक संस्था से संपर्क किया और उसके लंबित FCRA पंजीकरण में सहयोग करने के बदले रिश्वत मांगी। मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ से पता चलता है कि वे रिश्वत के बदले कुछ संस्थाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए उनसे संपर्क में थे। गृह मंत्रालय ने बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए इस मामले में उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। FCRA से संबंधित सभी सेवाएं FCRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है और किसी भी FCRA सेवा को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के विशेष योगदान की पहचान करना और सम्मानित करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहल शुरू की है। एक रिपोर्ट।
3: श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसमें बड़े शहरों, सांस्कृतिक महत्व वाले शहरों, प्रमुख पर्यटन स्थलों और आर्थिक केंद्रों को शामिल करना सुनिश्चित किया है। इस पहल का उद्देश्य तय समय सीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा के व्यवस्थित ढांचे के जरिए शहरी स्वच्छता, ठोस कचरा प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन, साफ सफाई और नागरिकों की भागीदारी में सुधार करना है। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से दुर्गापुर में स्वच्छ भारत टेस्ट बेड एंड इनोवेशन सेंटर भी शुरू किया गया। स्वच्छता ही सेवा 2026 के अंतर्गत श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के संकल्प भवन में रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सेंटर का भी उद्घाटन किया। ये पहल सरकारी कार्यस्थलों में टिकाऊ खपत, दोबारा इस्तेमाल संसाधनों की रिकवरी और सर्कुलरिटी को भी बढ़ावा देगी। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और उसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। नई दिल्ली में आज उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। एक रिपोर्ट।
5: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना से देश भर में हवाई यात्रा अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, पर्यटन प्राधिकरणों और संबंधित पक्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए हवाई मार्गों के लिए नेटवर्क रणनीतियां तैयार करने और भविष्य के नए मार्ग के विकास पर चर्चा के लिए मंच मिलेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्रीमती गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पुस्तिका सौंपी। इसमें पिछले 1.5 वर्ष में दिल्ली में किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जन कल्याणकारी पहलों का विवरण है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक अपने नाम किए हैं। महिला 4x400 मीटर रिले

स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप निशानेबाजी स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया है कि कल आसमान साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला के तीसरे चरण और मुकरबा चौक अंडरपास का उद्घाटन किया। दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दिल्ली में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए गए। और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम विड्थ 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोता हूँ, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति, फिल्म का नाम है जीत और गायक कलाकार हैं विनोद राठौड़ और अलका याग्निक।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में आगे सुनते हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू को। फिल्म का नाम है दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत रचना है आनंद बख्शी साहब की और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा। और कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टू स्टेट्स से एक गीत, जिसे आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्री प्रधाने, और गीत रचना है अमित भट्टाचार्य की, और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

इंद्रप्रस्थ चैनल पर श्रोता सुन रहे हैं गीत मालिका फिल्म संगीत चेतन के साथ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है सोलवा साल। गायक कलाकार हैं हेमंत कुमार।

गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, द ट्रेन फिल्म से एक गीत अभी आप मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं मोहब्बतें फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गीत। गायक कलाकार हैं उदित नारायण, जसपिंदर, उद्धव, ईशान, श्वेता और सोनाली।

0: श्रोताओं, इसी के साथ मोहब्बत फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का ये गीत मालिका फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करने की चेतन को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 होने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब

0: अर्दवान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को, ये तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं, हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज। अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6,000 रुपए मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews.hindi को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President

0: सदर रजब तैयब उर्दगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। कल अंदरूनी कर्नाटक, केरलम और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान है। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता है। खवातीन के ट्रैप इन्फिरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी, गैर यकीनी हालात और जोग्राफियाई इम्कानात से पैदा होने वाले चैलेंजेस के पेश नज़र भारत को जोग्राफियाई स्ट्रेटेजिक सोच और हंगामी मनसूबाबंदी को अपनी तैयारियों का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए। नई दिल्ली में भारतीय बहरिया के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क का हदफ वाजे है कि बहरान पैदा होने से पहले तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि किसी भी बहरान से निपटा जा सके। वजीर दिफा ने मजीद कहा कि जारी ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने एक बार फिर भारतीय बहरिया की पेशा वराना और अमली तैयारी को साबित कर दिया है, जो मुल्क की तवानाई की सप्लाई लाइनों और कौमी मफादात के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत बहरे हिंद के खित्ते में एक काबिल एतमाद और तरजीही सिक्योरिटी शराकत दार के तौर पर मजबूती से खड़ा है और एतमाद और भरोसे की इलामत बना हुआ है, जिससे मुल्क के महासागर के विजन को तकवीयत फराहम हो रही है। वजीर दिफा ने कहा कि जनूबी बहरे चीन, बहरे रोम, बहरे ओकियानूस में भारतीय जंगी जहाजों की मौजूदगी मुल्क की बहरी ताकत की सलाहियत का इजहार करती है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखे हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और माकूल कीमतें मिल सकें। इस हिकमत अमली में कटाई के बाद के बंदोबस्त, पैदावार को साइंसी तौर पर गोदाम में रखना और मार्केटिंग निज़ाम शामिल है। आज नई दिल्ली में रबी मुहिम 2026 पर कौमी ज़रई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन खिताब करते हुए जनाब चौहान ने तूर, उरद और मसूर की कम से कम इमदादी कीमत पर 100% सरकारी खरीद और 48 घंटे के अंदर अंदर अदायगी के इंतजाम की यकीन दहानी कराई।
1: राज्य सरकारों ने महाराष्ट्र में बड़े हिस्से पर और कर्नाटक में भी बड़े हिस्से पर सूखा घोषित किया है। भारत सरकार राज्यों के साथ डट के खड़ी रहेगी। कर्नाटक में भी 3 अक्टूबर को टीम बना के भेज रहे हैं वहाँ की स्थिति के आकलन के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात हुई है तो वहाँ भी हम टीम की तैयारी कर रहे हैं। मैं स्वयं भी उन राज्यों में जाके स्थिति देखूंगा और हम अपने किसानों के साथ, राज्य सरकारों के साथ पूरी ताकत से खड़े रहेंगे इस परिस्थिति का मुकाबला करने के।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत बैनुल अक्वामी आज़ाद तिजारती मुआहिदों के तवस्सुत से उभरने वाले बाजार के नए इम्कानात को भी बरूएकार लाएगा ताकि मुल्क की ज़रई पैदावार, फलों, सब्जियों और अनाज को आलमी बाजारों तक रसाई फराहम हो सके। जनाब चौहान ने कहा कि इससे किसानों को उनकी पैदावार की बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और भारत दुनिया के लिए खुराक के मामले में एक अहम मुल्क बन जाएगा। मकानात और शहरी उमूर के वजीर मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के तहत नए इकदामात के सिलसिले का आगाज किया, जिनका मकसद 50 शहरों के लिए इक्तसादी, सकाफती, विरासती, मजहबी, सयाहती और इंतजामी अहमियत के हामिल मिसाली शहर से मुतालिक तरीक़ाकार तैयार करना है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर ने जोर देकर कहा कि 24 रियासतों में ये 50 शहर मुल्क के बकिया हिस्से के लिए एक साफ सुथरे मिसाली शहरों के तौर पर उभरेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अहम शहरों, सकाफती अहमियत के हामिल शहरों, ज्यादा सयाहों वाले मकामात और इक्तसादी मराकज को इनमें शामिल करने को यकीनी बनाया है। इन इकदामात का मकसद एक मुकर्ररा मुद्दत के दौरान निगरानी और जायजे के एक मुनज्जम तरीक़ेकार के तहत शहरों की सफाई सुथराई, ठोस कचरे के बंदोबस्त, इस्तेमाल शुदा पानी के बंदोबस्त और शहरियों की शमूलियत के जरिए नुमाया बेहतरी लाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जनसेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि

0: की बरह रास्त मुंतकली के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूहे कार लाया जा रहा है।
1: 2014 में शुरू की गई फायदों की बराह रास्त मुंतकली की स्कीम के तहत फलाही स्कीमों की फराहमी के निजाम में इनकलाबी तब्दीली आई है। इसके जरिए हुकूमत की जानिब से फवायद की रकम बराह रास्त अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की जाती है। इस निज़ाम ने बिचौलियों के रोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और रुकूम में किसी भी तरह की खुर्द बुर्द को रोक कर शफाफियत पैदा की है। इस साल अगस्त तक फवायद की बराह रास्त मुंतकली के जरिए 320 स्कीमों के तहत 53 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम अहल मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल की गई है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फवायद की बराह रास्त मुंतकली सैकड़ों सरकारी स्कीमों के तहत की जा रही है और इस निज़ाम ने रकम की मुंतकली में किसी भी तरह की गड़बड़ के इम्कान को खत्म कर दिया है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
1: भानु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान तुर्की के सदर रजब तैयब उरुदगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले का ताल्लुक भारत की इलाकाई सालमियत और खुदमुख्तारी से है और किसी बैरूनी फरीक को इस मामले पर रायजनी का हक नहीं है। इप्सा बयान पर जनाब जायसवाल ने कहा कि न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर भारत, ब्राजील और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वज़राए खारजा सतह की एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग के बाद तीनों ममालिक ने एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया था जिसमें तीनों मुल्कों के जामे नुक्ते नज़र को शामिल किया गया था। जनाब जायसवाल ने कहा कि इसमें मुख्तलिफ इक्तसादी, तरक्याती मामलात और मुतालिका सियासी मामलात की अक्कासी की गई। सरहद पार दहशतगर्दी पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की रायजनी पर जनाब जायसवाल ने इस बात को उजागर किया कि वजीर खारजा की रायजनी ने सरहद पार दहशतगर्दी को एक अहम तशवीश की वजह करार दिया है और ये कि इस आलमी लानत से निमटने के लिए ममालिक को एक साथ आना चाहिए।
3: विदेश मंत्री ने साफ किया है कि किस प्रकार का रुख और समझ भारत का है। आतंकवाद, खासकर सीमा पार आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है।
0: 100% महसूल पर वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमरीकी कांग्रेस के वफद के साथ एक मीटिंग की।
3: अमरीकी कांग्रेस के जो यहां पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके, इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: खलीज फारस में भारतीय बहरी जहाजों पर तर्जुमान ने मुतला किया कि खलीज फारस में भारत के परचम बरदार 6 कमर्शियल बहरी जहाज हैं। उन्होंने कहा कि वहां 6 गैर मुल्की परचम बरदार बहरी जहाज हैं जो भारत सामान लेकर आ रहे हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि जहाजरानी की वजारत मुसलसल इन जहाजों की नकलो हरकत की निगरानी कर रही है और सभी मल्लाहों की सलामती पर नजर रख रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान भारत दरियाए गंगा आबी मुहिदे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत और बांग्लादेश का दरिया का एक मुश्तरका कमीशन है और दरियाओं से मुतालिक सभी मामलात पर इस कमीशन के तहत तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत के ताल्लुकात गुज़श्ता बरस के मुकाबले अब बेहतर हैं। न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सरहद पर तातुल के हल के बाद ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हुए। उन्होंने कहा कि भारत काफी वक्त से चीन से कहता रहा है कि बाहमी ताल्लुकात में किसी भी तरह की कमी किसी भी मुल्क के लिए मददगार नहीं होगी और तवील वक्त से तातुल भी किसी मुल्क के मफाद में नहीं है। इंतखाबी कमीशन ने आज राज्यसभा की 11 सीटों के लिए 2 साल में एक बार होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। बीजेपी लीडर और मरकजी वुजरा हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी रहनुमा राम गोपाल यादव, बीएसपी के रामजीत और 6 दीगर की मुद्दतिकार 25 नवंबर को मुकम्मल हो रही है। कमीशन ने मगरबी बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर जिमनी चुनाव के लिए भी नोटिफिकेशन जारी की है। टीएमसी रुकन पार्लियामेंट रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। आज से कागजाती नामजदगी का सिलसिला शुरू हो गया है और पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। शहरी हवाबाजी के वजीर के राम मोहन नायडू ने कहा है कि भारत शहरी हवाबाजी के शोबे में एक अहम आलमी मरकज के तौर पर उभरने और मुतालिका मार्केट में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज बनने की जानिब काम कर रहा है। आज नई दिल्ली में रूट्स एशिया 2027 से मुतालिक एक तारफी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नायडू ने कहा कि भारत का 2047 तक

0: आज ढाका में बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर ममलिकत जनाब हुमायूं कबीर से एक खैर सगाली मीटिंग की। हाई कमिश्नर ने वजीर ममलिकत का ओहदा संभालने पर जनाब कबीर को मुबारकबाद पेश की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बाहमी सूदमंद नतायज पर मरकूज मुसलसल तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। मुतअद्दिद कश्मीरी सियासी लीडरों, बैनुल अक्वामी हुकूक इंसानी के हामियों, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और समाजी कारकुनों ने जेनेवा प्रेस क्लब में मुनक्किदा एक बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इंसानी हुकूक की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जेनेवा में जारी अक्वामे मुत्तहिदा हुकूक इंसानी काउंसिल के 63वें इजलास के मौके पर यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने किया था। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कल अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, माहे, क्राइकल और शिमाल मशरकी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक अगले 3 से 4 रोज के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मौसमियात के महकमे ने आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा और त्रिपुरा में भी कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। जापान के नागोया में एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 8 तमगे जीते, जिनमें रिले, शूटिंग, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग में सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 5 तमगे शामिल है। भारत ने खवातीन के 4x400 मीटर दौड़ 3:29.69 में मुकम्मल करके सोने का तमगा जीता। भारत ने मर्दों की 4x400 मीटर दौड़ और मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले में भी कांसे का तमगा जीता। इससे पहले नीरू धांडा ने जापान में खवातीन के इंफरादी ट्रैप मुकाबले में सोने का तमगा हासिल करके पहली भारतीय खातून शूटर बनकर तारीख रकम की। कुल 53 तमगे जीतकर भारत एशियन गेम्स 2026 में 10वें मकाम पर आ गया है। अब तक भारत सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे जीत चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स में खवातीन के ट्रैप टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीतने पर मनीषा कीर, नीरू धांडा और अशिमा अहलावत को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने उनकी कारकर्दगी की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने पूरी टीम को मजीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दिफाही तैयारी के सिलसिले में जोग्राफियाई अहमियत की हामिल सोच और हंगामी सूरत हाल से निमटने की मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हुकूमत एक कसीर रुखी हिकमत अमली पर काम कर रही है ताकि किसानों की पैदावार की माकूल कीमतों को यकीनी बनाया जा सके। प्रगति 50 के तहत इकदामात के नए सिलसिले का आगाज किया गया है, जिसका मकसद मुल्क भर में 50 मिसाली शहर तैयार करना है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असम्बली से अपने खिताब में तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान के जम्मू कश्मीर पर गैर जरूरी तस्करे को मुस्तरद कर दिया है। और एशियन गेम्स 2026 में भारत ने खवातीन की 4x400 मीटर रिले में सोने का तमगा जीता। खवातीन के ट्रैप इनफरादी मुकाबले में नीरू धांडा ने सोने का तमगा जीता। भारत के तमगों की कुल तादाद बढ़कर 53 हो गई है, जिनमें सोने के 6, चांदी के 21 और कांसे के 26 तमगे शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक, दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम मनी टॉक नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन UPI एंड MDR, बैलेंसिंग डिजिटल पेमेंट्स, मर्चेंट कॉस्ट्स एंड कंज्यूमर इंटरेस्ट्स। द पार्टिसिपेंट्स आर दीपशिखा सिकरवर, इकोनॉमिक एनालिस्ट, एंड राजेश लेख, एंकर।
2: नमस्कार एंड वेलकम टू मनी टॉक। टुडेज टॉपिक हिट्स ऑलमोस्ट एवरी इंडियन वॉलेट, UPI and the new merchant discount rate or MDR. From October 15, most person-to-merchant UPI payments above 2,000 will attract 0.4% charge paid by merchants, not consumers, with some sectors on a flat 5 rupee fee. But will this really stay off your bill? Will small shops push you towards cash? And what does this mean for the future of India's free digital payments revolution? To unpack all of this, we have with us Deepshikha Sikarwar, economic analyst who has been closely tracking payments policy, merchant economics and consumer impact. Deepshikha, welcome to Money Talk.
3: Thank you, Rajesh.
2: So let's, Deepshikha, dive straight into the questions that matter to listeners and as consumers, shopkeepers and small business owners. For the average listener paying

0: मंथन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में पशु बीमा पोर्टल के बारे में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि विशेषज्ञ एसपी सिंह मौजूद हैं। एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: एसपी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं, जो कल ये पशुधन बीमा पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो ग्रामीण पशुधन क्षेत्र में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप समझते हैं?
3: देखिए, इस देश में पशुओं की संख्या और किसानों की समस्याएं, एक तरह से समझिए कि जितनी ज्यादा संख्या है और पशुओं की देखभाल और जो उनकी सुरक्षा का प्रबंधन और किसानों की समस्याओं का निदान, एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराने की यह एक व्यवस्था है। और ये डिजिटल व्यवस्था होने से पशुओं का पंजीकरण ऑनलाइन होने लगा है, बीमा कवरेज आसानी से मिल जाएगा, सभी प्रक्रियाएं एक ही जगह पर पूरी हो जाएंगी। पारदर्शिता और प्रक्रिया

0: तेज हो जाएगी, बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी, बिना दावों के क्लेम और निपटान तेजी से होगा, धोखाधड़ी की गुंजाइश कम होगी, रियल टाइम निगरानी की जा सकती है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो योजनाओं की वास्तविक समय पर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से और किसान की ओर से मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सकती है, डेटा प्रबंधन की कार्यप्रणाली में सुधार करने में सहूलियत होगी, सरकार और विभागों को सही स्थिति से समझ में आएगी। जो पूरा पोर्टल बनाया गया है, कह सकते हैं कि पशुपालकों के अनुकूल, उनकी सुविधा को, उनकी सहूलियत को देखते हुए इस तरह का बनाया गया है। इस देश के एक छोर से दूसरे छोर के जो बहुभाषी लोग हैं, किसी भी भाषा में वो उस पर अपनी जानकारी लेना चाहें या देना चाहें, तो हिंदी अंग्रेजी समेत करीब अन्य 13 क्षेत्रीय भाषाएं भी उपलब्ध हैं उस पोर्टल पर। आप जिस भी भाषा में जाकर अपनी बात कहना चाहें या अपनी जानकारी या अपना आंकड़ा उस पर डालना चाहें, ये सब आपको उपलब्ध हो जाएगा
1: जी।
0: सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है किसानों को, वो बीमारी या दुर्घटना से जो होने वाले नुकसान होते थे किसानों को भारी स्तर पे, पशुपालकों को इससे निजात मिलेगी, मुश्किलें नहीं होगी और उनके जो आर्थिक झटका लगता था, मुश्किल आती थी, वो एक तरह कह सकते हैं एक रक्षा कवच मिल जाएगा, जोखिम से बचाव हो जाएगा। दूसरी चीज की पशुपालकों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन होते थे पशु, उनसे वो सुरक्षा जब उन्हें मिलेगी तो उनकी भी सुरक्षा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी,
1: जो पशुपालकों को इस तरीके से जो सुरक्षा कवच की आपने बात की है, ये उनकी आर्थिक स्थिति को कितना सहारा दे पाएगा या सहयोग कर पाएगा?
0: ऐसी व्यवस्था है कि किसान इस देश में, आप समझिए कि 70% जो पशुपालक हैं, उनके पास देश का 80% जो पशु हैं उनके पास हैं। इसका मतलब सीधा सीधा है, जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, मझोले किसान हैं या भूमिहीन किसान हैं, जिनके पास कुछ भी और साधन नहीं है गांव में, वो रोजी रोटी और लोगों के यहाँ मजदूरी, खेतिहर मजदूर जिन्हें आप कह सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। और अगर मान लीजिए आजीविका के इस साधन पर कोई संकट आता है या उस पर कोई मुश्किल पेश आती है, उनका पशु बीमार होता है, उनमें दूध देने की क्षमता घट जाती है या पशु दुर्घटनावश किसी बीमारी से या कैसे मृत्यु हो जाती है, ऐसे में तो उसके बेचारे की सारी रोजी रोटी ही खत्म हो जाएगी। सरकार ने जो ये रक्षा कवच उन्हें दिया, मैं इसलिए उसे रक्षा कवच कहूंगा, उससे उनको बहुत फायदे होंगे, उनकी मुश्किलात कम होंगी।
1: इस बीमा से, जिस तरह से आपने बताया कि बीमारी, क्या इसमें प्राकृतिक आपदा को भी शामिल किया गया है या जो महामारी से संबंधित दिक्कतें आती थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है?
0: देखिए, ऐसा है कि पशुओं को किसी भी तरह से हानि पहुंचती है, ये सबका सारा कुछ एक साथ जोड़ दिया गया है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सरकार ने इसका सारा भार खुद उठाने का दायित्व लिया है, अपने कंधे पर लिया है, सरकारी खजाने से ही सब कुछ दिया जाएगा। यानी पशुपालक को किसी भी स्तर पर कहीं भी किसी भी तरह की मुश्किलात पेश न आए, संकट उसके ऊपर न आए, जोखिम से उसको बचाव हो, इसके लिए सरकार ने बाकायदा सारी सुविधाएं दी हैं। अब आप समझिए, यहाँ तक जितने का पशु होगा उसके जो आधार बनाया गया है, किस तरह से पशुओं का बीमा किया जाएगा, पशुओं का बीमा किया जाएगा उनके मूल्य के हिसाब से, वो कितनी उनकी बाजार का उनका मूल्य क्या है, मूल्य के हिसाब से जो उनका बीमा बनता है, बीमे पर जो प्रीमियम बनता है, प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी, मात्र 15% बहुत नॉमिनल होगा, बहुत कम धनराशि होगी प्रीमियम के तौर पर जो किसान को देनी होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसान की सुरक्षा का पूरा प्रबंध हर तरीके से, चाहे वो प्राकृतिक तौर से हो या कृत्रिम तौर पर से, कैसे भी अगर दुर्घटना बस की मौत होती है या उसको कोई प्राकृतिक ऐसी कोई आपदा आती है जिसमें बीमारी कोई लग जाती है, सामूहिक संक्रामक तरह की ढेर सारे रोग पशुओं में आते हैं। अभी एक हाल के वर्षों में आपने देखा, एक बड़ा रोग संक्रामक चल रहा है लंपी, जिससे उनकी क्षमता घट जाती है, दूध देने की क्षमता घट जाती है, उत्पादकता घट जाती है। तो ऐसे में अगर पशुओं की सुरक्षा का प्रबंध नहीं होगा, उनको इस तरह का बीमा का कवच नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो सबसे बड़ा संकट उन किसानों पर आएगा, उन पशुपालकों पर आएगा जिनके पास रोजी रोटी का एकमात्र साधन है पशुपालन।
1: आपने बताया कि जो इसका प्रीमियम आएगा, उस प्रीमियम का 85% हिस्सा सरकार वहन करेगी और 15% हिस्सा ही पशुपालकों को या पशुधन रखने वाले किसानों को वहन करना होगा। इसमें लाभार्थी का सत्यापन करना या ये जो इस तरह की जो पॉलिसी ली जाएगी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह, कितना आसान होगा या उसके लिए कौन से प्रयास करने होंगे एक पशुधन इस्तेमाल करने वाले को या किसानों को?
0: देखिए, इसके लिए

0: सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक के जितने कमजोर कड़ी थी, जहां जहां से मुश्किलें पेश आया करती थी, उन सबको किसी भी तरह के घपलेबाजी, किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह का मुश्किल ना आए, इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है पशुपालकों की, देखिए क्या है, इसमें पशुपालक किसान, पशुपालन विभाग, बीमा कंपनियां और पशु चिकित्सक जो लोकल लेवल पे हर ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक में क्या पंचायत स्तर पर वेटरनरी के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, ये सबका एक मिला जुला मंच है। इस मंच पर हर तरह की सुविधा दी गई है, जैसे हर पशु के कान में एक टैगिंग की जाती है, ईयर टैगिंग बोलते हैं, उनके कान में एक टैग लगता है, 12 डिजिट का होता है, 12 डिजिट का ईयर टैगिंग जो लगाया जाएगा वो धोखाधड़ी रोकने और पशुओं की सटीक पहचान के लिए इसे भारत पशुधन डेटाबेस के तौर पर से इसे लिंक किया गया है, ताकि कोई गड़बड़ी ना करे किसी भी तरह का, कोई और पशु दिखाकर, किसी और पशु के मरने की सूचना देकर किसी तरह की बीमा कंपनियों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। सरकार ने यह पुख्ता प्रबंध किया है और इसकी जो क्लेम लेने की है, मान लीजिए किसी का पशु मरता है तो उसे कोई मुश्किल पेश ना आए तो उसे ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करना पड़ेगा, और ये निपटान की प्रक्रिया इतनी जल्दी होगी कि 21 दिनों के अंदर ज्यादातर दावे पूरे कर लिए जाएंगे, यानी उनके क्लेम का पैसा जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा, क्योंकि उनके साथ पशु के मरने की सूचना कौन देगा। ये उसी प्लेटफॉर्म पर जो वेटरनरी का डॉक्टर जो उसका स्टेक होल्डर है, जो उसका एक पक्षकार है, जब बीमा होगा तो ये बीमा कंपनियां, किसान और पशुपालक और ये जितने भी पार्ट हैं, ये सब एक साथ मिलकर चल प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी डालेंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डालेंगे और उस पर डालेंगे उसकी डेथ सर्टिफिकेट, ये जारी करेगा वो डॉक्टर, जारी करने के 21 दिन के अंदर, हो सकता है इससे पहले भी उसका दावा मिल जाए।
1: आपने ये तो बात करी कि अगर किसी तरह से उसको बीमारी होती है, किसी तरह से दुर्घटना होती है, क्या प्राकृतिक आपदाओं से भी इन पशुधन को बचाने के लिए इस तरह की बीमा का सुरक्षा कवर मिलेगा?
0: सरकार द्वारा जो ये किया गया है, असमय मृत्यु से होने वाली आर्थिक, मतलब जो किसानों को मिलेगा, हाँ ये दोनों को मिलेगा,
1: मतलब इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी, अगर जैसे कि आजकल बहुत सारे भारतीय क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप,
0: बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, भूस्खलन हो जाए, कोई ऐसी मुश्किलात पेश आ जाए, तो ऐसे समय में भी ये इसका प्रबंध किया गया है कि उसके उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के थ्रू सरकार करेगी।
1: पशुधन का मूल्यांकन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दे सकेंगे?
0: देखिए क्या है, इसके लिए भी सरकार के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर पशु की खरीद बिक्री भी होती है। एक प्लेटफॉर्म और है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पशुपालन मंत्रालय के पास, विभाग के पास, और हर डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं, हर स्टेट में कह सकते हैं, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां से, क्योंकि पशुओं की खरीद बिक्री का एक बड़ा मुश्किलात होती थी कि अगर मान लीजिए हम 500 किलोमीटर दूर से कोई पशु खरीदते हैं और उसको हम कहीं और ले जाना है तो जो उसका ढुलाई और बहुत मुश्किलें पेश आती थी, तो उस पशु के स्वास्थ्य के बारे में, उस पशु की प्रोडक्टिविटी के बारे में, उस पशु के क्वालिटी के बारे में, वो किस ग्रेड का है, वो किस प्रजाति का है, ये सारी चीजें वेटनरी का डॉक्टर प्लस वो जो किसान के यहाँ दूध देने की क्षमता कितनी है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितनी बार वो बच्चा दे चुकी है, ये सारी डेटा बेस ऑलरेडी होगा, उसके आधार पर बाजार मूल्य तय किया जाता है और उसी मूल्य को आधार बनाया जाएगा।
1: इस पोर्टल का उपयोग किस तरह की किया जा सकता है, क्या सिर्फ कंप्यूटर पे ही, या इसमें कहीं कोई मोबाइल ऐप भी है जिसके द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है?
0: भी स्टार्टिंग में इसको यार पोर्टल पर ही इसका उपयोग करेंगे
1: जी।
0: जो आपके सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं इस तरह के, CSC जिसको कहते हैं ना, उसके मार्फत आप जाकर के इसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपने पशु को आपको उस पर रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि जो बीमा कंपनी है बिना रजिस्ट्रेशन के तो देगी नहीं। आपके पशु का जो बीमा कंपनी है जो देगी आपको, क्लेम देने वाली है या जो बीमा देगी, जो प्रीमियम वसूलेगी सरकार से या किसान से, वो कंप्लीट जानकारी रखेगी और आपको अपने सामुदायिक CSC केंद्र से जाकर करके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, एक काम आपके यहाँ हो सकता है कि आपके ऐप अगर आप उस पर डाउनलोड कर लें, मुझे लगता है आने वाले दिनों में जल्दी ही इसे ऐप के थ्रू भी संचालित किया जाने की व्यवस्था की जाए जी।
1: किसानों की जो आय आपने सुनिश्चित करने की बात करी, तो क्या इसके लिए सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या कोई और भी उपाय किए हैं जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके और सभी पशु पालकों को या किसानों को इसका लाभ मिल सके?
0: सरकार के पास सारा डेटा है, क्योंकि जो सरकार लोगों को भेजती है तरह तरह की सूचनाएं मौसम के बारे में, खेती किसानों के बारे में देती है, तो ज्यादातर पशुपालक किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, उनके सबके डेटाबेस सरकार के पास है, उनकी इन्फॉर्मेशन लगातार जाती रहती है और अब उसी के थ्रू SMS के थ्रू सबको ये बराबर जानकारी दी जाएगी और दी जा रही है हमें लगता है। और इसके अलावा जो प्रचार और के संसाधन

0: जो हम और आप बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी के थ्रू, या हम और आप बैठ के जो चर्चा कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं उन्हें ये जानकारी देने के लिए ही, उन्हें जागरूक बनाने के लिए ही कि आपका जो बहुमूल्य पशु है, जो आपके पास ऐसे कीमती पशुओं की मौत हो जाने या उनके नुकसान हो जाने या उनकी उत्पादकता क्षमता घट जाने पर उन्हें नुकसान न हो, इस तरह की जानकारी किसान भाइयों को होनी चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि जैसे उनकी फसलों के लिए बीमा योजना है, अगर फसल पर कोई नुकसान आ जाता है तो उन्हें कैसे बीमा प्राप्त हो जाता है, ठीक ऐसे ही उनके पशुओं के बारे में सारी जानकारी, क्योंकि 12 डिजिट का टैग लगा है पशु के कान में, यह टैग के थ्रू उसको पता चल जाता है कि पशु की लोकेशन क्या है, पशु सच में मर गया है या नहीं मरा है, या किसके बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, तो ये सारी जानकारी किसान को उसी के थ्रू दी जाएगी, डिजिटली ही आसानी से पहुंचा जा सकता है किसान तक।
1: इसमें कुछ रियल टाइम मॉनिटरिंग या निगरानी व्यवस्था की भी सुविधा
0: के लिए ही जो 12 का यह टैगिंग की गई है, उसका मायने यही है, वो एक कह सकते हैं आर्यन टैग है, यही बैठ के आप पता कर सकते हो कि उस पशु की लोकेशन क्या है, उस पशु की बराबर आपको स्टेटस देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए पशु बीमार होता है तो इसकी जानकारी भी उसी टैग के थ्रू आपके अपने ऐप पर लगातार देनी पड़ेगी या CSC के थ्रू देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अचानक आपका पशु मर गया, आपने एक दिन बताया कि अभी आज मर गया, जबकि वो मान लीजिए 15 दिन से 20 दिन से महीने से 2 महीने से बीमार चल रहा है, उसकी क्षमता घट रही है, उसका इलाज नहीं हो रहा, नहीं, ये सब आपको लगातार करना पड़ेगा, इसकी सूचना देनी पड़ेगी और वेटनरी डॉक्टर को लगातार संपर्क में रहना होगा, उसको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट को ही आधार बनाया जाएगा, रियल टाइम तभी तो पता चलेगा कि पशु की स्थिति क्या है, किसी भी बीमा कंपनी को जो भुगतान करेगी क्लेम वो कैसे दे पाएगी, इसलिए किसान बराबर जानकारी देता रहेगा, अगर उस पशु किसी तरह के संकट में है तो इसकी भी जानकारी आपको उसको देनी पड़ेगी।
1: आमतौर पर काफी जटिल व्यवस्था लगती थी कि उम्मीद करते हैं कि जो पशुपालक हैं या जो किसान हैं या सीमांत किसान हैं जिनका मुख्य आय का स्रोत पशुपालन है, तो उनके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था इस बीमा पोर्टल के माध्यम से हो सकेगी।
0: ये जो व्यवस्था की गई है, लाभार्थी जो अभी दिया जा रहा है कि प्रीमियम का सिर्फ 15% ही देना पड़ेगा पशुपालक को, बाकी सरकार वहन करेगी, इसके लिए एक सीमा तय की गई है, इसकी सीमा यह है कि अगर आपके पास गाय या भैंस, अधिकतम 5 मवेशियों का ही आप ये करा सकते हैं,
1: अधिकतम संख्या भी इसमें निर्धारित की गई है,
0: अधिकतम सीमा इसकी तय की गई है, और इसका जो भुगतान की व्यवस्था की जाएगी वो 60% केंद्र सरकार देगी और 40% हिस्सा राज्य सरकार देगी, तो ये व्यवस्था की गई है।
1: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे सभी श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में देने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में पशुपालन बीमा के डिजिटलीकरण की पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी

0: भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: एंड नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकार खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों ये तय किया। तुअर मसूर उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
2: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थ यात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। संस्कृति मंत्रालय और वर्चुअल भारत ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते का उद्देश्य सिनेमाई कहानी कथन, डिजिटल अनुभव और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है। संस्कृति मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एमओयू का आदान प्रदान संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल और प्रसिद्ध फिल्मकार भारत बाला ने किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने सुश्री सुमन देवगन की आवाज में गजल सुनी। पहला कलाम लिखा था अहमद फराज ने और दूसरे कलाम के लिखने वाले थे गालिब साहब। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे भव्या सरस्वत का राग केदार में ध्रुपद गायन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना सुश्री भव्या सारस्वत का राग केदार में ध्रुपद गायन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी

0: मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दें किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, उड़द एंड मसूर एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
1: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी।
3: इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर दैट फार्मर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस। वी नीड टू कनेक्ट फार्मर्स विद द मार्केट थ्रू बोथ सिस्टम्स विद MSP एंड विदाउट MSP। इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द गवर्नमेंट विल परचेज 100% ऑफ तूर, मसूर एंड उड़द। हाउएवर, वेदर इट इज अ खरीफ और अ रबी क्रॉप, द प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट शुड बी मेड प्रॉपरली इन एडवांस सो दैट फार्मर्स रिसीव पेमेंट विद इन 48 आवर्स।
1: 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
2: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade.

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

कारवां फिल्म का एक गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। और वाकई जब वादा किया जाता है तो उसे निभाना भी ज़रूर चाहिए। और वादे करते हुए कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने आप को रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन दिल जो होता है वो नहीं मानता है। अगला गीत कुछ ऐसा ही है।

बिल्कुल सही कहा। हम दिल को रोकते तो बहुत हैं, लेकिन दिल मानता नहीं है, और दिल मानता नहीं है कि वक्त आपसे विदा लेने का हो चुका है। लेकिन वक्त जब तक विदा लेने का होगा, उससे पहले हम आपके संदेश कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हमारे पास बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, रिमी, तनुश्री, नन्हे मुन्ने, अनिरुद्ध बाबू, बंसल लाल, हीरा मोती पन्ना और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से अक्षय कुमार सनातनी, शिवानी, प्रियंका, मुन्नी, रिया, जिया, टिस्सू, आरुषि, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, ये सब हमें संदेशा भेज रहे थे। मुकेश बत्ता जी का भी हमें संदेशा मिला है। भूषण कल्हेरा का हमें संदेशा मिला है। ये हमें लिखते हैं फाजिल्का पंजाब से, खेड़ा से लिखा है इन्होंने। पूरा खेड़ा परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। मोहम्मद कमर का हमें ये संदेशा मिला है, गुन्नौर से, आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली का साथ है हमारे। ये है प्रोग्राम, अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से हमें संदेशा भेजा है फारूक अली खान और फैजी फरहाना और इनके पूरे परिवार ने। बसंत कुमार सिन्हा का भी हमें संदेशा मिला है। इसके अलावा हमारे पास महसूल सीतामढ़ी बिहार से संदेशा आया है, तलत जहानाज का और इनके पूरे परिवार का, और सभी बहनें कार्यक्रम को सुन रहे हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल और पूरे सपकाल परिवार के साथ है ये हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से अजहर मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक का संदेशा मिला है। संदेशा हमें सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मिला है। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा और बिट्टा बजाज का मिला है। श्रोता हैं ये हमारे पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल और साथ है डी के अलवी और सचिन अग्रवाल। सतीश अनेजा जी जो कि बिमला अनेजा जी के साथ चंडीगढ़ सिटी से हमें संदेशा भेज रहे हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। संदेशा हम तक पहुंचा है ये लिखकर भेजा है हमें, लिखने वाले हैं सुदर्शन मुखी और अनीता मुखी और सिमरन मुखी, ये शांति नगर सोनीपत से संदेशा भेज रहे हैं। तो फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से ये हैं नासिर शेख और उनका पूरा परिवार। संदेशे के साथ हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, ये हमारे संदेशा हमें मिला है महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं भगवान पाटिल और इनके साथ पूरा पाटिल परिवार। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी और बोधराज खोरवाल का संदेशा मिला है। भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल भी हमें कार्यक्रम में सुन रहे हैं। राजेंद्र जाजूरिया का और उषा जाजूरिया का संदेशा मिला है हमें। साथ हमारे पास ये आया है राजेंद्र जटोलिया और उषा जटोलिया का संदेशा। भाई आपके नाम कितने सिमिलर हैं, आपने हमें नांगलोई से संदेशा भेजा है। संदेशे के साथ हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं ये हैं हमारे साथ, भाई एक ही संदेशा कई बार आ चुका है तो अब ये संदेशा हम तक पहुंच रहा है जो कि इस कार्यक्रम का आखिरी संदेशा है। लिखा है हमें गांव तहसील मगरूल पीर और ये वशिम पश्चिम विदर्भ से संदेशा मिला है, योगी राज मस्के का संदेशा और उनके पूरे परिवार का। इसी संदेशे के साथ फिलहाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। आपको छोटे से प्यारे से गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। इस समय रात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी है। रात्रि के 12 बजने को है, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: No external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। भूमि संसाधन विभाग ने कल नई दिल्ली में नदियों के पुनर्जीवन पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में नदी क्षेत्रों के विकास और जल संरक्षण के लिए जल ग्रहण क्षेत्र के विकास के जरिए प्रस्तावित पायलट परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने कहा कि नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए उन क्षेत्रों का भी विकास जरूरी है जहाँ से नदियों में पानी पहुँचता है। निर्वाचन आयोग ने कल दिल्ली के अलग अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में

0: विशेष शिविर लगाएं। इन शिविरों का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना है। आयोग के अनुसार बड़ी संख्या में छात्रों ने शिविरों में पहुंचकर SIR और फॉर्म लेने या जमा करने से जुड़ी जानकारी ली। आयोग ने बताया कि अगले दौर के विशेष शिविर 7 और 8 अक्टूबर को लगाए जाएंगे। आयोग ने युवाओं से इन शिविरों का लाभ उठाकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने असम अरुणाचल प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों राज्यों की 12 क्षेत्रीय समितियों की संयुक्त मैदानी यात्राओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने सभी समिति अध्यक्षों से असम के अपने समकक्षों के साथ मिलकर मैदानी दौरे जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि बातचीत और आपसी समझ के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों का जल्द और आपसी सहमति से समाधान किया जाना चाहिए। भारत की स्पिन गेंदबाजी श्री चरनी ने ICC महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्री चरनी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी है। एशियाई खेलों के फाइनल में 3 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरलम माहे कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make a geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026 in New Delhi yesterday, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price. The minister said,
2: "It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
1: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure their better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission has issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats yesterday. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, BL Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in one seat of Rajya Sabha in West Bengal.

0: Finance Minister Nirmala Sitharaman has met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha yesterday. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. The Election Commission has organized special camps at different colleges and universities of Delhi with the objective of maximizing the enrollment of young electors. The camps will continue till today. EC said that a large number of students visited the camps for queries related to SIR and obtaining or submission of forms. It added that block-level officers, BLOs, present at these camps guided the students to fill their forms, collected the filled-in forms and also resolved queries related to SIR. Another round of camps will be organized on 7th and 8th of next month. Special camps will also be held at all polling station locations on 4th and 11th of next month for enrollment of all categories of electors. The Commission said that new applicants attaining the age of 18 years on or before 1st of October this year should apply in Form 6 for inclusion of their names in the electoral roll. The Ministry of Labour and Employment has organised a Shram Samvad district-level capacity building and awareness programme in New Delhi. It was organised with the collaboration of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry and a private law firm. The programme aimed to build awareness among employers and industry stakeholders while highlighting the key provisions and compliance requirements under the new framework. In the Asian Games 2026, India delivered a strong performance, adding 8 medals including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है. आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, संगीत घर में था लेकिन रास्ता खुद बनाना था. दोस्तों, आज की हमारी संगीत यात्रा शुरू होती है दो ऐसे भाइयों से जिनके लिए संगीत कोई अचानक चुना हुआ करियर नहीं था. संगीत तो उनके घर की फिजाओं में पहले से ही मौजूद था. हम बात कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव की, यानी संगीत की दुनिया की मशहूर जोड़ी आनंद जी मिलिंद जी की. दोनों के पिता थे जाने माने संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी. चित्रगुप्त जी ने हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में लंबे समय तक संगीत दिया और उनके घर में संगीत की बारीकियों को समझने का माहौल था. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिता चाहते थे कि उनके दोनों बेटे पहले पढ़ाई करें, यानी संगीत की विरासत सामने थी. लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना कोई आसान या पहले से तय रास्ता नहीं था. आनंद जी और मिलन जी ने धीरे धीरे संगीत सीखा, वाद्य सीखे और सबसे बड़ी बात, अपने पिता के काम को बहुत ही करीब से देखा. यही अनुभव आगे चलकर उनके अपने संगीत की नींव बना. और आइए अब सुनते हैं आनंद जी मिलन जी के सफर की शुरुआत से जुड़ा ये गीत.

दोस्तों, किसी बड़े संगीतकार का बेटा होना और खुद एक सफल संगीतकार बन जाना, इन दोनों बातों के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। आनंद जी और मिलन जी ने यह फर्क अपने काम से मिटाया। जब उनके पिता चित्रगुप्त जी की तबीयत खराब रहने लगी, तब दोनों भाइयों ने उनके काम में सहयोग करना शुरू किया, यानी उन्हें फिल्म संगीत को बाहर से देखने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर रहकर उसे सीखा, और यही वो समय था जब उन्होंने संगीत की उन बारीकियों को समझा जो किसी किताब से सीखी ही नहीं जा सकती। गायक के साथ काम करना, धुन को फिल्म के दृश्य के मुताबिक ढालना और संगीत में अपनी पहचान बनाना। बाद में आनंद जी मिलन जी ने खुद स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अपना काम शुरू किया। उनकी पहली फिल्म थी 1984 की अब आएगा मज़ा, और इसी फिल्म के लिए लता जी और आशा जी, यानी लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी जैसे बड़े नामों के साथ काम करने का उन्हें मौका मिला। तो चलिए सुनते हैं लता जी की बेहद प्यारी आवाज़ में उनका ये गीत।

सो किसी भी कलाकार की तरह उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती थी अपनी अलग पहचान बनाना। पहली फिल्म मिल जाना मंजिल नहीं होती, असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। आनंद जी मिलन जी ने इसके बाद लगातार काम किया, लगातार शुरुआती वर्षों में उन्होंने अलग अलग फिल्मों के लिए संगीत दिया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी। 1986 में तन बदन, फिर 1987 में जलवा जैसी फिल्मों के ज़रिए उनका काम आगे बढ़ता रहा, लेकिन अभी वो मकाम आना बाकी था जिसके बाद लोग इस जोड़ी का नाम सिर्फ पहचानते ही नहीं बल्कि उनके संगीत का इंतज़ार करने लगे। जी हाँ, वो साल था 1988 और फिल्म थी कयामत से कयामत तक। लेकिन उस कहानी तक पहुँचने से पहले सुनते हैं उनके शुरुआती सफ़र का एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ फिल्म नहीं होती, वो अपने साथ एक पूरा पूरा का पूरा दौर लेकर आती हैं। 1988 में एक ऐसी फिल्म आई, कयामत से कयामत तक, आमिर खान जी और जूही चावला जी की नई जोड़ी, और मंसूर खान जी का निर्देशन और आनंद जी मिलन जी का संगीत। उस समय फिल्म संगीत में डिस्को और बड़े और ऑर्केस्ट्रेशन के दौरान था, वो दौर अलग ही था। लेकिन कयामत से कयामत तक का संगीत अपनी सरल, युवा और रोमांटिक धुनों के कारण बिल्कुल अलग सा महसूस हुआ। गजब का है दिन, ऐ मेरे हम सफ़र, पापा कहते हैं, जैसे गीत युवाओं की जबान पर चढ़ गए। और इस फिल्म में सिर्फ आमिर खान जी और जूही चावला जी को ही बड़ी पहचान नहीं दिलाई, आनंद जी मिलन जी भी इसी फिल्म के बाद बड़े संगीतकारों की कतार में मजबूती से आ गए। फिल्म के संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो चलिए, हम भी देर नहीं करते हैं और आपको सुनवा देते हैं वो प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों 1990 में आई फिल्म बागी और रिबेल फॉर लव, इस फिल्म में सलमान खान और नगमा जी मुख्य भूमिकाओं में थे और ये संगीत था आनंद जी मिलन जी का। और ये दौर हिंदी सिनेमा में नई पीढ़ी के सितारों के उभरने का समय था और आनंद जी मिलन जी उन संगीतकारों में से थे जिनकी धुनें इस नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर आनंद जी मिलन जी ने कई ऐसे कलाकारों की फिल्मों में संगीत दिया जिनके करियर की शुरुआती दौर को दर्शकों में इसी दौर को देखा, यानी उनका संगीत सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं था, वो 1990 के दशक में बदलते हुए बॉलीवुड की आवाज का भी हिस्सा बन गए। और अब एक प्यारा सा गीत आप सबके लिए और खासकर उनके लिए जो रात के इस वक्त भी AIR लाइव न्यूज 24x7 में हमारे साथ है और हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि

दोस्तों, एक हिट फिल्म किसी कलाकार को चर्चा में ला सकती है, लेकिन लगातार कई साल काम करना और उस काम के बाद अपनी अपनी पहचान बनाना किसी कलाकार के सफ़र को ख़ास बना देता है। कयामत से कयामत की सफलता के बाद आनंद जी मिलन जी के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं रही। 1969 में आई फिल्म जो उनकी थी, और उसके बाद भी काफ़ी सारी फिल्में चली उनकी, और 1989 में आई फिल्म उनकी लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म का संगीत भी खूब सुना गया और इनके गीतों ने आनंद जी मिलन जी की लोकप्रियता को और मज़बूत कर दिया। उसके बाद 90 के दशक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा दौर साबित हुआ उनके लिए। बागी, दिल, लव, बेटा, एक के बाद एक फिल्मों में उनकी धुनें सुनाई देने लगी, और इस सफ़र की एक ख़ास बात ये रही कि उनकी धुनों में रोमांस था, मस्ती थी, लोक रंग था, और सबसे बड़ी बात, आम श्रोता के दिल तक जल्दी से पहुंच जाने वाली सादगी थी। तो आइए सुनते हैं एक बेहतरीन सा गाना फिल्म लव से, SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा जी की आवाज़ में।

दोस्तों आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल आकाशवाणी दिल्ली पर। और दोस्तों अब बात करते हैं उस गीत की, और प्रोग्राम चल रहा है सुरों का सफ़रनामा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार जोड़ी आनंद जी और मिलन जी की। और बात करते हैं उस गीत की जिसकी धुन बजते ही 90 का दशक आंखों के सामने आ जाता है। साल था 1992 का, फिल्म थी बेटा, और पर्दे पर थे अनिल कपूर जी और माधुरी दीक्षित जी, संगीत आनंद जी मिलन जी का, और गीत थक थक करने लगा। उदित नारायण जी और अनुराधा पौंडवाल जी की आवाज में ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी उन 90s के संगीत की चर्चा हो और इस गीत का नाम ना आए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो फिर और दोनों की ही याद आ जाती है। और दोस्तों पता है इस गीत में ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस गीत में आनंद जी मिलन जी की वही खूबी दिखाई देती है, एक आसान याद रह जाने वाली धुन, मजबूत रिदम और ऐसा संगीत जिसे सुनते ही दृश्य और कलाकार दोनों ही याद आ जाए। माधुरी दीक्षित जी के नृत्य ने इस गीत को और यादगार बना दिया, और बेटा के संगीत के लिए आनंद जी मिलन जी को फिल्म फेयर में नामांकन भी मिला था। तो चलिए याद करते हैं दिलों की उस धड़कन को। रात के 12:52 हो रहे हैं 52 मिनट।

उनका काम 200 से ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों तक फैला। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में भी संगीत दिया और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये रही दोस्तों कि दोनों भाइयों ने अपनी संगीत जोड़ी को अलग नहीं किया। 2020 में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने साथ मिलकर नई धुनें बनाने की बात कही थी। एक तरफ पिता चित्रगुप्त से मिली संगीत की विरासत, दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की कोशिश। फिर 1984 की शुरुआत, 1988 की बड़ी कामयाबी और उसके बाद 90s का लंबा और यादगार सफर। शायद यही वजह है कि आनंद जी मिलन जी की धुनें सुनते ही किसी को अपना पहला प्यार याद आता है, तो किसी को कॉलेज के दिन, किसी को 90s का बॉलीवुड, तो किसी को बस वो पुराना रेडियो। तो आज की संगीत यात्रा को यहीं विराम देते हुए सुनते हैं एक ऐसी फिल्म का संगीत जिसमें आनंद जी मिलन जी की मस्ती भरी धुन और 90s का पूरा रंग समाया हुआ है। सुरों का सफरनामा का सफर आज बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी फिर किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए मैंने

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, और अब से बस कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नक्सलवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कल एक नई कृषि पहल की शुरुआत हुई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लद्दाख में उगाए गए लीलियम फूलों की पहली व्यावसायिक एयर कार्गो खेप को रवाना किया। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि यह लद्दाख के कृषि क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ठंडे रेगिस्तान के रूप में पहचाने जाने वाले लद्दाख में अब भी फूलों की खेती सफल हो रही है। प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की पहल पर फूलों की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़

और दोस्तों उस दौर के गीतों में जब हम जाते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि जब आप इन गीतों को सुनते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि कितना सुकून रहा होगा उस दौर में, कितनी शांति रही होगी आपस में, दिलों में कितना प्रेम रहा होगा, है ना। तो चलिए प्रस्तुत है अगली प्रस्तुति फिल्म सितारा से।

कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम केएल सहगल जी के नाम से भी जानते हैं, भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। 1930 और 1940 के दशक में उनकी आवाज़ और अभिनय का ऐसा जादू था कि लोग उन्हें भारतीय सिनेमा का तानसेन भी कहते थे। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, लता मंगेशकर जी और मुकेश जी जैसे महान गायक भी उन्हें अपना आदर्श और गुरु मानते थे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं अगली पेशकश उन्हीं की आवाज़ में, केएल सहगल जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दुश्मन।

सुमन कल्याणपुर 28 जनवरी 1937 को उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था। हिंदी सिनेमा की एक महान और सुरीली पार्श्व गायिका थी। उन्हें हिंदी संगीत के सुनहरे दौर 1950 और 1960 के दशक की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से गिना जाता है। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली, पंजाबी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में गाने गाए हैं। तो आइए इसी मीठी सी आवाज़ को हम सुनवाते हैं आपको लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, जो आकाशवाणी दिल्ली का है।

और दोस्तों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय ऐतिहासिक गीत माना जाता है कि इस सदाबहार गाने में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि लोग आज भी इस गाने को सुनकर प्रभावित होते हैं। ये गाना 1951 में आई मशहूर क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजी का है। इस फिल्म को महान निर्देशक गुरुदत्त जी ने निर्देशित किया था। इस गाने को फिल्माया गया था अभिनेत्री गीता बाली जी पर, जिसमें उनके साथ देवानंद जी भी नजर आए थे। और इस गाने को संगीत के जादूगर SD बर्मन यानी सचिन देव बर्मन जी ने संगीतबद्ध किया था। और इसके प्रेरक बोल लिखे थे मशहूर गीत कार साहिर लुधियानवी जी ने।

और दोस्तों अगली प्रस्तुति है सुरैया जी की आवाज़ में, जिनके सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गाने, उनकी बेहतरीन अभिनय और उनका उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। तो चलिए सुनते हैं गीता जी दत्त जी की आवाज़। तो आपने अभी सुनी, लेकिन अब हम सुनेंगे सुरैया जी की वो मधुर आवाज़ जो अपने दौर में बहुत बहुत बड़ी पहचान रखती थी।

ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि तब नानी दादी और अपनी माँ से बच्चे जिद क्या करते रहते कि माँ एक कहानी सुनाओ ना, नानी एक कहानी सुनाओ ना, दादी एक कहानी सुनाओ ना। तो वो दौर तो शायद नहीं आ सकता, लेकिन पुराने दौरों के गीत में हम उस भावना को, उस एहसास को महसूस ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसा ही एक प्यारा सा गाना अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। फिल्म है सीमा, फिल्म का नाम है सीमा और इसे आवाज़ दी है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने। और इस बोल के प्रसिद्ध गीतकार, इसके बोल के प्रसिद्ध गीतकार हसरत जयपुरी जी ने, और संगीतकार हैं खूबसूरत धुन को संगीत जो कार जोड़ी शंकर जयकिशन ने तैयार किया था, और पर्दे पर यह गीत महान अभिनेत्री नूतन पर फिल्माया गया था। आप भी सुनिए और अपने कानों से रेडियो को लगाकर इस प्यारी सी कहानी को अपने दिल के पास महसूस कीजिए। रात के 1:34 और 50 सेकेंड्स हो रहे हैं।

और दोस्तों अब तो सबके हाथों में मोबाइल है, इस वजह से ये वक्त हमें नहीं मिलता, लेकिन एक दौर था जब हम अपने बड़ों से कहानियाँ सुनते थे और

और दोस्तों, मैं उम्मीद है कि इस प्यारी सी कहानी को आपने भी ज़रूर ज़रूर प्यारी सी कहानी का आनंद उठाया होगा। और दोस्तों, अगली प्रस्तुति जो आपके लिए आ रही है वो 1955 की फिल्म बाप रे बाप का ये गाना है, जिसे आवाज़ दी थी आशा भोसले जी ने और जिसे संगीतकार थे जिसके ओपी नैयर साहब और गीतकार जान निसार अख्तर साहब।

दोस्तों, अब जिस फिल्म का गाना हम आपको तक पहुंचाने वाले हैं वो फिल्म है झनक झनक पायल बाजे। और इस फिल्म का जो प्रसिद्ध गीत है नैन सो नैन ना ही मिलाओ, संगीत जगत का एक अमर और शास्त्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत है। और इस गाने को आवाज़ दी थी हेमंत कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और संगीतकार थे वसंत देसाई जी और गीतकार थे हसरत जयपुरी जी। तो आइए रात के 1:44 पर हम आनंद लें इस मधुर से संगीत का।

और दोस्तों, अब जो संगीत आपके पास आने वाला है, क्योंकि अभी जो आपने गाना सुना वो बहुत ही मधुर संगीत था, और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में और हेमंत कुमार साहब जी की आवाज़ में, और अब जो गाना आपके पास आने वाला है वो भी बहुत ही प्यारा है और उस दौर का बहुत ही डांसिंग नंबर भी माना जा सकता है इसको। और पढ़ते पर यह गाना राज कपूर साहब और एक्ट्रेस नादिरा पर फिल्माया गया है, जबकि गाने के दृश्य में नरगिस जी भी दिखाई देती हैं इस गाने के। और गहरे और प्रेरणादायक बोल मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब ने लिखे हैं, और बॉलीवुड की दिग्गज जोड़ी शंकर जयकिशन जी ने इसका संगीत तैयार किया था। तो चलिए हम भी सुनते हैं। रात के 1:50 हो चुके हैं और आप इस रात में सुन रहे हैं कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे।

दोस्तों, हमें मनुष्य जीवन मिला है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जिनका हमें डटकर मुकाबला करना होता है। और फिल्म संगीत, अगर हम पुराने दौर के संगीत में जाएं तो कुछ गाने ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक ताज़ा हवा की तरह आते हैं और हमें जीने का नया जोश दिला कर जाते हैं। और कुछ गाने नहीं, पुराने गानों के दौर पे जब आप जाते हैं, पुराने गानों को सुनते हैं, तो उनमें आपको कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई उपदेश, कोई ना कोई ऐसी बात जो आपको ज़िंदगी जीने का हौसला देती है, आप ज़रूर सीख जाते हैं। ऐसा ये गाना हमारी आखिरी पेशकश है आज के इस गीत सुनहरे प्रोग्राम की, जिसमें जो फिल्म है मुनीम जी, और इसमें आवाज़ दी थी किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी ने, और इस फिल्म को बहुत ही खूबसूरत बोल इसके लिखे हैं साहिल लुधियानवी जी ने।

0: मेरा ही। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, तो समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है, और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का मकसद सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपायों तक पहुंचने में मदद करना है। देश भर से शहरी, स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने जायरोप्लेन के लिए पायलट लाइसेंस जारी करने से संबंधित नया सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट CAR जारी किया है। जायरोप्लेन के पायलट लाइसेंस के लिए ग्राउंड और फ्लाइंग ट्रेनिंग सिलेबस नामक इस CAR में DGCA से जायरोप्लेन श्रेणी का पायलट लाइसेंस हासिल करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जमीनी और उड़ान प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। देश के कई हिस्सों, खासकर पश्चिम नेपाल में लोगों को भारी नुकसान के बीच अपने घरों और बस्तियों में लौटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही

देखने को मिली। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मैग्दी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों केरला, माहे, कराईकल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसा पारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, और अब से कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में बहुसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: India rejects the unwarranted references.
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: And no external party has any locus standi on this issue.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशी लोगों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का थीम पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा है। भारत और उभरती आर्थिक व्यवस्था मंच के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री दास ने बताया कि 2021-22 से 2025-26 के दौरान भारत ने औसतन 7.9% की वार्षिक वास्तविक GDP वृद्धि दर्ज की है। श्री दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संबंध में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी का 8वां संस्करण ऑनलाइन चल रहा है। 2 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है।

जनाब अब्दुल हमीद आदम साहब का एक मशहूर कता पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कता है जिसमें आदम साहब ने रंग खुशबू और नाज की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की है। इसी अंदाज की एक नई गजल, एक ताज़ा तरीन गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले कतार से

इसी पेशकश के साथ फिलहाल गीत और गजलों का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: और अब प्रस्तुत है नूकल चिन्न सत्यनारायण के स्वर में नारायण तीर्थ की एक रचना।
1: श्री निलयं सखी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एआर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 होने को हैं। जिसे सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। संगीत दिया है त्यागराजा ने। निदंगम पर है रामानंद ईश्वरम। राग श्री रंजनी है जो कि ताल आदि में निबद्ध है।

अभी आपने सुना टी के जयराम अय्यर का वायलिन वादन। इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादवरम अब यहीं संपन्न होता है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर 2026। सुबह के 4:54

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। भैया, वह आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से आपको अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप आओ योग करें। आज आप सुनेंगे पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन के बारे में। पांच बजकर 20 पर देशभक्ति गीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आप सुन सकते हैं आज 6:10 पर। 6:40 का वक्त रहेगा कार्यक्रम चिंतन का। चिंतन कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बचत पर गांधी जी के विचार। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा 6:45 पर। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 64। प्रातः 7:10 का वक्त है कार्यक्रम संगीतिका का। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। 8:45 का समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर होगा कार्यक्रम साइंस मैगजीन मिट्टी दी महक, इसका आनंद ले सकते हैं आप 9:30 पर। 10:10 का समय है आपकी पसंद इस कार्यक्रम का। 11:10 पर आप सुनेंगे सबरस। 11:30 का वक्त है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: And no external party has any locus standi on this issue.
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह खत्म करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिमी नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। नदी के तेज बहाव के कारण 50 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार म्यागदी में 200 से ज्यादा परिवार विस्थापित हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। भारत के स्पिन गेंदबाज श्रीचरणी ने आईसीसी महिला T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड बनाया है। श्रीचरणी ने 817 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। वो पहले से ही T20 रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 गेंदबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा है। श्रीचरणी ने महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में भारत के अच्छे प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। वहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी T20 गेंदबाजी रैंकिंग में आगे बढ़ी है। एशियाई खेलों के फाइनल में T20 विकेट लेने के बाद उनकी रेटिंग 754 अंक हो गई है। इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टोन 723 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से शीर्ष 5 में शामिल हो गई हैं। उन्होंने एशियाई खेलों के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 79 रन बनाए थे। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया था। पहले मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने शतक लगाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi yesterday, Mr. Singh said, the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated that the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़ें, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आएं, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंड, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आए, यानी नितंब के पास लेकर आए। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को

0: ऊपर की ओर उठाएं और एक पुलनुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाए और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दे। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शवासन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 होने को है। नीचे सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे विदुषी डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का राग अहिर भैरव में गायन।